सुप्रभात। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 21वीं तिथि, तदनुसार 12 सितंबर सन 2026। सुबह के 7 बजने को हैं। आप सभी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आप सभी का दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ अब आज की प्रातःकालीन सभा का शुभारंभ करते हैं।

0: 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, 7:01 हुए हैं, आइए अब आपको हम जानकारी देते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। जीवन सौरभ कार्यक्रम आप सुनेंगे अब से कुछ ही देर के बाद। आज का शीर्षक, खुशियों के द्वार। अक्षय निधि कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं ऋग्वेद के द्वितीय मंडल से वाचन, आज आप सुनेंगे इसमें सूक्त 16। 7:20 का समय होगा भक्ति संगीत के कार्यक्रम का। प्रातः 8 बजे वतन का राग, ये कार्यक्रम आज केंद्रित रहेगा जोरावर सिंह बारहट की जयंती पर। इतिहास के पन्नों से इस कार्यक्रम का प्रसारण समय 8:30 पर। कार्यक्रम में आप सुनेंगे रानी दुर्गावती के युद्ध का इतिहास भाग 6। सुबह 9 बजे का समय होगा कार्यक्रम योग संवाद का, जिसमें आज आप सुनेंगे पुरुषार्थ की श्रेष्ठता और देववाद का निराकरण। 9:30 का समय होगा कार्यक्रम भारत विभूति का, जिसमें आज आप सुनेंगे के शंकर पिल्ले पर केंद्रित कार्यक्रम। टैगोर नाट्य समारोह पर आधारित कार्यक्रम रेडियो रिपोर्ट आप सुनेंगे दिन में 10 बजे और परिक्रमा कार्यक्रम। 10:30 पर होगा हिंदोस्तां हमारा, जिसमें आप सुनेंगे भारत रत्न राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन पर केंद्रित आज का ये कार्यक्रम। दिन में 11 बजे कार्यक्रम सुर सागर में आप सुनेंगे डॉक्टर रश्मि मिश्रा का गायन। 11:30 पर युग प्रवर्तक विवेकानंद कार्यक्रम का 43वां भाग आज हम प्रसारित करेंगे। तो श्रोताओं, आप सुनते रहिए हमारे केंद्र का प्रसारण 90.8 MHz पर, आपका अपना रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम जीवन सौरभ।
1: जीवन सौरभ। जीवन में अक्सर हम सोचते हैं कि खुशियाँ कहीं आगे हैं, भविष्य में हैं, अभी हम जीवन में कुछ कर लें फिर खुश होंगे। लेकिन खुश रहना कोई मुश्किल काम नहीं है, कुछ सूत्र हैं खुश रहने के, कुछ मंत्र हैं। महादेवी वर्मा की कविता में एक ऐसा ही सूत्र है प्रसन्न रहने का, आइए इन पंक्तियों से होकर हम गुजरते हैं। महादेवी वर्मा कहती हैं, आ गए तुम, द्वार खुला है, अंदर आओ, पर तनिक ठहरो, ड्योढ़ी पर पड़े पायदान पर अपना अहम झाड़ाना, मधुमालती लिपटी है मुंडेर से, अपनी नाराजगी वहीं उड़ेलाना, तुलसी के क्यारे में मन की चटकन चढ़ा आना, अपनी व्यस्तताएं बाहर खूंटी पर ही टांग आना, जूतों संग हर नकारात्मकता उतार आना, बाहर खेलते बच्चों से थोड़ी शरारत मांग लाना, वो गुलाब के गमले में मुस्कान लगी है तोड़कर पहन आना, लाओ अपनी उलझने मुझे थमा दो, तुम्हारी थकान पर मनुहारों का पंखा झुला दूं, देखो शाम बिछाई है मैंने, सूरज क्षितिज पर बांधा है, लाली छिड़की है नभ पर, प्रेम और विश्वास की मध्यम आंच पर चाय चढ़ाई है, घूंट घूंट पीना, सुनो इतना मुश्किल भी नहीं है खुश रहकर जीना। वास्तव में इस कविता की एक एक पंक्ति खुशियों के मंत्र की तरह है, जिनसे खुशियों के द्वार खुल सकते हैं। जीवन सौरभ।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जीवन सौरभ। आइए अब सुनते हैं अक्षय निधि।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि। अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 16वें सूक्त से वाचन। ऋषि हैं ग्रत्समद और भार्गव शौनक। देवता हैं इंद्र। छंद है जगति और त्रिष्टुप।
3: प्रवहसताम ज्येष्ठ तमाय सुष्टि तिमग्ना विव समिधाने हविर्भरे इंद्र मजुरियम जरयंत मुक्षितम सनाद्युवान मवसे हवा महे। हम देवों में सर्वश्रेष्ठ इंद्र देव के निमित्त अत्यंत दीप्तिमान अग्नि में सुंदर स्तुतियों के साथ आहुतियां समर्पित करते हैं। उन सनातन शक्ति संपन्न कभी भी नष्ट न होने वाले शत्रुनाशक तथा सोम से तृप्त इंद्र देव का तुम्हारे संरक्षण के लिए आवाहन करते हैं। यस्मादिन्द्राद् बृहतः किं चनेमृते विश्वान्यस्मिन् संभृताधिवीर्या जठरे सोमं तन्वी सहो महो हस्ते वज्रम भरति शीर्षणि क्रतुम। इस विराट संसार में इंद्रदेव ही सबसे महान हैं। वे पराक्रम से युक्त इंद्रदेव उदर में सोमरस, शरीर में तेजस्वी बल, हाथ में वज्र तथा शिर में महान ज्ञान धारण किए हुए हैं। न क्षोणीभ्याम परिभ्वे त इंद्रयम् न समुद्रैः पर्वतैरिन्द्र ते रथः न ते वज्रमन्वश्नोति कश्चन यदा शुभिः पतसि योजना पुरु। हे इंद्रदेव, आप जब अपने द्रुतगामी अश्वों के द्वारा अनेक योजन पार करते हैं उस समय आपकी शक्ति को द्यावा पृथ्वी भी नहीं नाप सकती। हे इंद्रदेव, आपके रथ को पर्वत तथा समुद्र भी नहीं रोक सकते तथा कोई भी शक्तिशाली वीर आपके वज्र को नहीं रोक सकता। विश्वे यस्मै यजताय धृष्णवे क्रतुम भरन्ति वृषभाय संचते वृषा यजस्व हविषा विदुष्टरह पिबेन्द्र सोमं वृषभेण भानुना। शत्रुनाशक पूज्य बलशाली तथा स्तुत्य इंद्रदेव के निमित्त सभी लोग यज्ञ करते हैं। हे यजमान, तुम देवगणों को सोमरस प्रदान करने वाले तथा मेधावान हो, अतः हविष्यान्न की आहुतियों सहित इंद्रदेव की स्तुति करो। हे इंद्रदेव, आप बलशाली एवं तेजस्वी रूप में सोमरस का पान करें। वृष्णः कोशः पवते मध्व उर्मिर वृषभान्नाय वृषभाय पातवे वृषणार्ध्वर्यु वृषभासो अद्रयो वृषणम् सोमम् वृषभाय सुश्वति, तृप्तिकारक बलवर्धक अन्नयुक्त मधुर सोमरस की धारा बलशाली इंद्रदेव के पान के लिए स्रवित होती है। अध्वर्युगण बलशाली इंद्रदेव की तृप्ति के लिए सुदृढ़ पत्थरों में पुष्टिकारक सोमरस तैयार करते हैं। वृषा ते वज्र उत ते वृषा रथो वृषणा हरि वृषभाण्या युधा वृष्णो मदस्य वृषभ त्वमीशिष इंद्र सोमस्य वृषभस्य त्रिष्णुहि। हे शक्तिशाली इंद्रदेव, आपका वज्र, आपका रथ, आपके अश्व तथा आपके आयुध सभी शक्ति से भरपूर हैं। आप बलशाली आनंद का स्वामित्व करते हैं, अतः बल युक्त सोमरस का पान करके आप तृप्त हों। प्रतेनावम न समने वचस्युवम ब्रह्मणायामी सवनेशु दाधृषि कुविन्नो अस्य वचसो निबोधि शदिंद्रमुत्सम न वसुनः सिचामहे। हे इंद्रदेव, आप शत्रुनाशक हैं, नाव के समान आप युद्ध में स्तोताओं का उद्धार करते हैं। यज्ञ स्थल में आपके स्तोत्रों का उच्चारण करते हुए हम जाते हैं। हे ऐश्वर्य के भंडार इंद्रदेव, कुएं के समान हम सोमरस से आपको सींचते हैं, आप हमारी प्रार्थना को स्वीकारें। पुरा संबाधादभ्या ववृत्स्व नो धेनुर्न वत्सम यवसस्य पिप्युषि सकृत्सु ते सुमतिभिः शतक्रतो सम पत्नीभिर्न वृषणो नसी महि। हे शतकर्मा इंद्रदेव, जिस प्रकार गाय घास खाने के बाद संतुष्ट होकर बछड़े को दूध पिलाने हेतु पहुंच जाती है, उसी प्रकार आप विपत्तियां आने से पूर्व ही हमारे पास पहुंचे। हे इंद्रदेव, जिस प्रकार पत्नियां पतियों को हर्षित करती हैं, उसी प्रकार हम उत्तम स्तोत्रों के द्वारा आपको प्रसन्न करें। नूनम साते प्रतिवरम जरित्रे दुहीय दिंद्र दक्षिणा मघोनी शिक्षा स्तोत्रिभ्यो माति धक भगो नो बृहद्वदेम विदथे सुवीराह। हे इंद्रदेव, यज्ञ के समय आपके द्वारा स्तोताओं के लिए दी गई ऐश्वर्य युक्त दक्षिणा निश्चित ही उत्तम धन प्राप्त कराती है। स्तोताओं के साथ हमें भी वह ऐश्वर्य युक्त दक्षिणा प्रदान करें। हम यज्ञ में महान पराक्रम करने वाले स्तोत्रों का उच्चारण करें।
0: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 16वें सूक्त से वाचन, प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी।
4: नब्बे 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, हमारे कार्यक्रमों को आप प्रतिदिन सुबह 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक निरंतर सुन सकते हैं मिक्सलार एप्लीकेशन पर भी। बने रहिए रेडियो आजाद हिंद के साथ। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

प्रभु से प्रार्थना मांगने से नहीं, बात करने से पूरी होती है। हमें जो मिला है हम उसका पहले धन्यवाद करें, उसके बाद अपने मन की बात स्पष्ट रूप से कहें और अंततः सब अपने प्रभु पर ही छोड़ दें।

हे प्रभु, मेरा हर दिन मंगलमय कर दो। मेरे जीवन की गाड़ी आप ही प्रेम से चलाइए और हर मोड़ पर इसकी रक्षा कीजिए।

आइए हम भी प्रभु से प्रार्थनाएं करें, अपनी नियत अपने उद्देश्य साफ सुथरे रखें। यदि उद्देश्य सही हो, नियत सही हो, तो भगवान भाग्य से भी अधिक देते हैं।

हे परमात्मा, ब्रह्मा के रूप में आप ही इस संसार की, विश्व की रचना करते हैं। श्री विष्णु के रूप में इन सभी लोकों की रक्षा भी निश्चित रूप से आप ही करते हैं। और हे लीलाधाम, त्रिपुर हर के रूप में आप ही संसार का प्रलय भी करते हैं। संसार में आपके अतिरिक्त कोई और अन्य नहीं है जो सबसे अधिक उत्कृष्ट कहा जा सके।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत वतन का राग कार्यक्रम में आज हम आत्मीय स्मरण कर रहे हैं महान क्रांतिकारी और अमर बलिदानी जोरावर सिंह बारहट का।

0: आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गर्जे।
1: ये वतन
2: साम्राज्य शक्ति शत्रु भी सर्वस्व ठसो कढ़ गया, वीर पुत्र प्रताप हुआ वेदी बलि पर चढ़ गया। भ्राता जोरावर हुआ प्यारा निछावर पथ बही, पतित पावन दीन बंधो शरण एक तेरी गही। केसरी सिंह बारहट की लिखी ये पंक्तियां इस बात का प्रमाण है कि राजस्थान से ताल्लुक रखने वाले जोरावर सिंह बारहट के पूरे परिवार ने स्वाधीनता संग्राम में भाग लेते हुए देश पर सर्वस्व बलिदान की परंपरा का निर्वहन किया। जोरावर सिंह बारहट का जन्म 12 सितंबर 1883 को उदयपुर में हुआ था। उनका पैतृक गांव भीलवाड़ा की शाहपुरा तहसील का देवखेड़ा है। उनके पिता कृष्ण सिंह बारहट इतिहासकार और साहित्यकार थे। उनके बड़े भाई केसरी सिंह बारहट देशभक्त क्रांतिकारी विचारक थे। इतिहास वेत्ता किशोर सिंह उनके भाई थे। जोरावर सिंह बचपन से ही देश के प्रति समर्पित थे। वो कृष्ण सिंह के तीन पुत्रों में सबसे छोटे थे। उनका बचपन उदयपुर में बीता तथा आरंभिक शिक्षा भी वहीं हुई। पिता कृष्ण सिंह को जब जोधपुर नरेश जसवंत सिंह ने अपनी सेवा में बुला लिया तो जोरावर सिंह भी पिता के साथ उदयपुर से जोधपुर आ गए। उनकी आगे की शिक्षा जोधपुर में हुई। जब उनके पिता का निधन हो गया तो जोधपुर के राजा ने उन्हें रानी के महल के प्रबंधक के रूप में नियुक्त कर दिया। बड़े भाई के सानिध्य में रहकर जोरावर सिंह के भीतर देश के लिए कुछ कर गुजरने की भावना बलवती होने लगी। जोधपुर में उनका संपर्क प्रसिद्ध क्रांतिकारी भाई बाल मुकुंद से हुआ, जो राजकुमारों के शिक्षक थे और उन्हें दिल्ली षड्यंत्र के अभियोग में फांसी हुई थी। इस तरह समय उनके जीवन की दिशा तय कर रहा था। कुछ समय बाद जोरावर सिंह का विवाह कोटा रियासत के ठिकाने अतरलिया के चारण ठाकुर तख्त सिंह की बेटी अनूप कंवर के साथ संपन्न हुआ। लेकिन वैवाहिक जीवन उन्हें रास नहीं आया। राजसी वैभव और गृहस्थी छोड़कर वो स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। देश के प्रति पूर्ण समर्पित भाव से कार्य करने की उनकी भावना ने ही उन्हें सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी रास बिहारी बोस से मिला दिया और तब क्रांति क्रांति और क्रांति ही उनके जीवन का लक्ष्य बन गया और देश की आजादी उनके जीवन का उद्देश्य। अदम्य साहस और जोश से भरे हुए क्रांतिकारी जोरावर सिंह लगातार आगे बढ़ते गए। क्रांति पथ में उनके समक्ष जो भी व्यवधान उपस्थित हुआ उन्होंने उसे मार भगाया, लेकिन स्वयं कभी पीछे नहीं हटे। भारत माता को स्वतंत्र कराने हेतु उन्होंने लगभग 25 वर्ष जंगलों और पहाड़ों में भटकना स्वीकार किया। वो भटकते रहे और विप्लव का स्वर बुलंद करते रहे। घर बार पत्नी परिजन सब कुछ पीछे छूट गए। सामने था तो सिर्फ अपना देश, अपनी भारत माता और उसकी जय की कामना।

स्वाधीनता संघर्ष का समय अद्भुत ऊर्जा और भावों से भरा हुआ समय था। लाखों लोग अपनी अपनी तरह से आजादी के इस महायज्ञ में अपनी आहुति डाल रहे थे। देश की आजादी के लिए अनगिनत क्रांतिकारी अपना सब कुछ छोड़कर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी कमी धन को लेकर थी। इसलिए जोरावर सिंह ने योजना के अनुसार बिहार के आरा के एक निजाम के महंत पर हमला किया और धन लूट लिया। इस बीच क्रांतिकारी भाई बालमुकुंद ने लॉर्ड हार्डिंग को जान से मारने की योजना बनाई। उन्होंने इस कार्य के लिए बारहट भाइयों यानी जोरावर सिंह और प्रताप सिंह बारहट को हार्डिंग पर बम फेंकने की जिम्मेदारी सौंपी। ये वो समय था जब कलकत्ता से भारत की राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित किया जा रहा था। कलकत्ता से वॉयसराय लॉर्ड हार्डिंग को रेल से दिल्ली पहुंचना था और फिर हाथी पर बैठकर उसकी सवारी निकलनी थी। सभी नरेश, उद्योगपति और संभ्रांत जन इस जलसे में आमंत्रित थे। उद्देश्य यही था कि भारत की गुलाम जनता ये देखे और माने कि ब्रिटिश साम्राज्य अजेय है। 23 दिसंबर 1912 की तारीख तय थी कि जब वायसराय लॉर्ड हार्डिंग का जुलूस दिल्ली के चांदनी चौक से गुजरने वाला था। अपनी योजना के अनुसार जोरावर सिंह और कुंवर प्रताप सिंह ने बुर्का ओढ़कर यमुना पार किया और नियत तिथि को दिल्ली के चांदनी चौक में पंजाब नेशनल बैंक की बिल्डिंग की छत पर जाकर बैठ गए। बारहट बंधुओं के साथ वसंत कुमार विश्वास भी इस योजना में शामिल थे। जैसे ही लॉर्ड हार्डिंग बिल्डिंग के नीचे से गुजरा, वैसे ही जोरावर सिंह ने उस पर बम फेंक दिया, लेकिन बम पास खड़ी महिला के हाथ से टकरा गया और निशाना चूक गया। इस घटना में हार्डिंग्स तो बच गया, लेकिन उसका छत्र रक्षक महावीर सिंह मारा गया। क्रांतिकारियों के इस प्रयास में छिपे प्रतिरोध के स्वर को सभी ने सुना और भारत की राजनैतिक स्थिति दुनिया के सामने स्पष्ट हो गई। ब्रिटिश राज के लिए ये बुरा लक्षण था। भारत के वायसराय के ऊपर जानलेवा हमला होने से ब्रिटिश सरकार की जड़ें हिल गई थीं। सरकार में कोहराम मच गया। अंग्रेज शासन प्रशासन के हाथ पांव फूल गए थे। जोरावर सिंह और प्रताप सिंह बारहट वहां से निकलकर कोटा और बूंदी के बीहड़ों में छुप गए। किसी तरह अंग्रेज सैनिकों ने प्रताप सिंह को पकड़ लिया, लेकिन जोरावर सिंह भागने में कामयाब रहे।

ये वो समय था जब दुनिया भर में ब्रिटिश शासन अनेक देशों पर राज कर रहा था। इस बम कांड से उन गुलाम देशों में एक राजनीतिक भूकंप आ गया। भारतवासी ब्रिटिश शासन को वरदान के रूप में स्वीकार करते हैं। अंग्रेजी राज से भारतवासी संतुष्ट और प्रसन्न हैं। अंग्रेजों के इस झूठे प्रचार का भवन अब ढह चुका था। जोरावर सिंह पर आरा बिहार केस में पहले ही वारंट जारी हो चुका था। अब इस बम कांड के बाद पुलिस और गुप्तचर एजेंसियां उनकी खोज में जुटी हुई थीं। जोरावर सिंह लगभग 25 वर्षों तक राजस्थान और मध्य प्रदेश के जंगलों में भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी और वर्षा सहते हुए आजादी की अलख जगाते रहे। इसके बाद जोरावर सिंह मध्य प्रदेश के करंडिया एकलगढ़ मंदसौर में साधु अमरदास बैरागी के नाम से रहे। वे कभी कभार गुप्त रूप से अपने परिजनों से मिलते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। जोरावर सिंह को सन 1903 से 1939 तक यानी लगभग 36 वर्ष की अवधि में अंग्रेज सरकार गिरफ्तार नहीं कर सकी। इतिहास के पन्नों में ऐसी जानकारी मिलती है कि एक बार अंग्रेज सरकार को जोरावर सिंह के आसपास होने की भनक लगी तो उन्होंने सीतामऊ के तत्कालीन राजा राम सिंह को आदेश दिया कि वो जोरावर सिंह को गिरफ्तार कर उनके सुपुर्द कर दें। राम सिंह नहीं चाहते थे कि वो किसी क्रांतिकारी को गिरफ्तार करें, इसलिए उन्होंने जोरावर सिंह तक ये खबर पहुंचाई कि वो सीतामऊ से बाहर निकल जाएं। इस पर जोरावर सिंह ने महाराज को रहीम का एक भावपूर्ण दोहा लिख भेजा। जोरावर सिंह ने लिखा, सर सूखे पंछी उड़े औरन सरन समाहे, दीन मीन बिनु पंख के कहो रहीम कहाँ जाहे। दोहा पढ़कर राजा राम सिंह की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने जोरावर सिंह बारहट तक ये खबर भिजवाई और कहा कि आप मेरे राज्य में निर्भय रहें, किसी प्रकार की कोई चिंता न करें, मैं आपके साथ हूं। इस तरह जोरावर सिंह अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आ सके। वो जब तक जिंदा रहे अंग्रेज सरकार उन्हें ढूंढती ही रही, लेकिन कई सालों तक इसी तरह राजस्थान और मध्य प्रदेश के जंगलों में भटकते भटकते उन्हें कई बीमारियों ने जकड़ लिया था। जोरावर सिंह के विरुद्ध आरा बिहार केस में गिरफ्तारी वारंट भी निकला हुआ था और इस बम कांड में भी उनकी खोज लगातार जारी थी। 1937 में जब ब्रिटिश सरकार के प्रांतों में चुनाव हुए और सरकारें बनी, तब पुरुषोत्तम दास टंडन के प्रयासों से जोरावर सिंह की गिरफ्तारी का वारंट रद्द कर दिया गया। पर दुखद ये था कि जिस दिन जोरावर सिंह की गिरफ्तारी के वारंट रद्द होने के समाचार अखबारों में छपे, उसी दिन यानी 17 अक्टूबर 1939 को जोरावर सिंह बारहट ने इस संसार से विदा ले ली। नमन ऐसे महान क्रांतिकारी और अमर बलिदानी को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रमों को आप प्रतिदिन सुन सकते हैं प्रातः 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ और सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए।
1: नाइन्टी पॉइंट एट मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। और अब समय है कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से का। इतिहास के पन्नों से। नमस्कार, मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा और आज हम अपने कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से इसकी छठी कड़ी में प्रवेश कर रहे हैं। इस श्रृंखला की पांचवी कड़ी में हमने सुना था कि 16वीं सदी में मध्य भारत के एक विशाल भूभाग पर गोंड राजवंश द्वारा स्थापित गढ़ा राज्य पर महाप्रतापी राजा संग्राम शाह की पुत्रवधु वीरांगना रानी दुर्गावती का 1550 ईस्वी से लेकर 1564 ईस्वी तक का शासन था। रानी के लोक उपयोगी कार्यों के कारण उनकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी थी। समकालीन दिल्ली के मुगल दरबार पर भी इसका असर दिखने लगा था, चाहे वो सोने और हाथी के रूप में दिया गया लगान हो, गोसाई विट्ठलनाथ जी का गढ़ा आगमन हो, मठ मंदिरों का निर्माण या रानी का सच्चरित्र। मुगल दरबार गढ़ा राज्य की चर्चा करने लगा था और कहीं ना कहीं रानी के ये गुण मुगल दरबार को खलने लगे थे, जिसका परिणाम गढ़ा राज्य पर आक्रमण के रूप में हमारे सामने आया। रानी अत्यधिक चरित्रवान, साहसी और अच्छी योद्धा थी। उनकी तारीफ अबुल फजल बदायूनी फरिश्ता जैसे मुगल दरबारी लेखकों तक ने की है, लेकिन अबुल फजल ने इस ओर भी इशारा किया कि गोंड रानी दुर्गावती मुगल शासक अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। पिछली कड़ी में हमने सुना कि अकबर ने उनका मनोबल तोड़ने के लिए अनेक प्रयास किए और उन्हीं प्रयासों को आगे ले जाते हुए अकबर ने किसी को वहां पर भेजा। किसे भेजा, कैसे भेजा, क्या थी पूरी बात, फिर से हमारे साथ एक बार है स्टूडियो में पूजा सक्सेना जी, प्रसिद्ध पुरातत्वविद। और पूजा जी, फिर से एक बार आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: हम सब उत्सुक हैं आपसे आगे की कहानी जानने के लिए।
2: अकबर का एक सेनापति था आसफ खां, हमने पिछली बार सुना। वो मालवा में तैनात था और कड़ा उसकी जागीर थी। आसफ खां गढ़ा राज्य की गतिविधियों की सूचना दिल्ली के मुगल दरबार तक बार बार पहुंचा रहा था। रानी दुर्गावती के बढ़ते हुए सैन्य ताकत और प्रतिष्ठा ने मुगल दरबार को विचलित कर दिया। दोनों राज्यों के बीच तनातनी बढ़ती जा रही थी। यह वो समय था, हमें याद रखना चाहिए, जब गढ़ा के राजा दलपत शाह की मृत्यु हुए कई वर्ष बीत चुके थे।
1: जी हाँ।
2: रानी ने पुत्र वीर नारायण की संरक्षिका बनकर 14 वर्ष तक गढ़ा राज्य को खूब समृद्ध किया था, हम सब जानते ही हैं।
1: जी।
2: रानी इस समय लगभग 40 वर्ष की एक अधेड़ महिला रही होगी और एक बच्चे की माँ भी।
1: जी।
2: तो उनका संघर्ष और मुगल सेना का संघर्ष, दोनों के बीच में ये एक बेसिक डिफरेंस रहा होगा, ये हमें ध्यान में जरूर रहना चाहिए।
1: बिल्कुल।
2: उधर दूसरी तरफ अगर हम देखें तो आसफ खां एक लड़ाका था। उसके परिवार के लोग हुमायूं की सेना में भी रह चुके थे और कई युद्ध लड़ चुके थे।
1: जी।
2: आसफ खां ने मुगल राज्य के एक भगोड़े अमीर था गाजी खां तन्नूरी,
1: जी,
2: उसको मारा था, जिससे कि इस घटना के बाद जो शासक था अकबर उसकी नजरों में आ गया
1: और वो उनका खास बना और उन्होंने उसको मालवा की
2: कड़ा जागीर दे दी।
1: जी।
2: तो यहाँ से अब आसफ खान जो है उसकी नजर अपने आसपास के जो राज्य थे उन पर लग गई कि वो अपने राज्य का विस्तार जागीर से बड़ा राज्य कैसे बनाए।
1: जी।
2: इस और उसका ध्यान था, उसे गढ़ा राज्य कई मायनों में आकर्षित कर रहा था। एक तो ये जनजाति बहुल क्षेत्र था जिसकी बड़ी जनसंख्या जंगलों में रहती थी।
1: बिल्कुल।
2: और अपने काम से काम रखती थी, उन्हें युद्धों से इससे उससे कोई खास मतलब नहीं था। दूसरा, यह राज्य बहुत समृद्धशाली होता जा रहा था, हम सब देख ही रहे थे। हाथी भी एक बड़ा कारण थे, वन संपदा थी, वन संपदा एक बहुत बड़ा कारण बन के आती है इस समय, क्योंकि इस समय हम देख रहे हैं कि बहुत बड़े स्तर पर जहाजों का निर्माण हो रहा है, पानी के जहाजों का। उसके लिए अच्छी किस्म की सागौन की लकड़ी चाहिए।
1: जी।
2: और वो तो हमारे मध्य भारत में बड़ी बहुलता के साथ में होती है, तो वन संपदा भी एक बहुत बड़ा कारण थी, जड़ी बूटियां, दूसरी चीजें। इसके अलावा दक्कन जाने तक का जो व्यापारिक मार्ग था वो भी यहाँ से होकर गुजरता था और जहां से व्यापारिक मार्ग गुजरता है वहां पर जो कर वसूला जाता है तो उससे राज्य समृद्ध होते हैं। तो हर एक राज्य चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा व्यापारिक मार्गों पर उसका अधिकार हो, तो ये भी एक बड़ा कारण बन के उभरा। वहीं दूसरी तरफ जो संत हुए पुष्टि मार्गीय विट्ठलनाथ जी, जिनके बारे में हमने पिछली काफी चर्चा की, उनका प्रभाव जो बढ़ रहा था, दूसरी तरफ जो धर्मांतरण बड़े स्तर पर रुक रहे थे, इन सब कारणों से एक स्थिति बन रही थी कि गढ़ा और मुगलों के बीच में एक युद्ध के आसार साफ नजर आ रहे थे।
1: और इन्हीं सब कारणों के चलते जो आसफ खां था वो मुगल दरबार को, अकबर को उकसाया करता था कि वो यहाँ पर हमला करें।
2: बिल्कुल, अगर हम जैसे मुगल दरबारी लेखक हैं बदायूनी, अबुल फजल, इनके वर्णनों को पढ़ें तो हमें पता चलता है कि आसफ खां मुगल शासक अकबर को गढ़ा राज्य पर आक्रमण करने के लिए खूब उकसाया करता था
1: जी।
2: लेकिन गढ़ा राज्य के प्रति वह हमेशा मित्रतावत व्यवहार रखता था, यानी कि आसफ खां वहां तो लड़ाई की तैयारियों में था
1: जी।
2: लेकिन यहाँ पर गढ़ा राज्य के साथ वो अपने मित्रता के संबंध दिखाया
1: तो न सिर्फ युद्ध नीति में कुशल था, वो कूटनीति में भी

0: इस बात का यकीन दिला दिया कि गड़ा जैसा समृद्धशाली राज्य उसके शासनाधिकार में नहीं है। यानी ये एक बड़ी चिंता की विषय है मुगल दरबार के लिए कि गड़ा जैसा समृद्ध राज्य उसके अधिकार में ही नहीं है। तो अकबर जो है उससे विचलित होने लगा और भारत का जो मध्य भूभाग है वो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, गोंड जनजाति और उसके संसाधनों पर उसका अधिकार नहीं है। इसके बाद आसफ खान ने इस बात पर भी अकबर को मनाना शुरू कर दिया कि गढ़ा राज्य पर आक्रमण के अतिरिक्त कोई विकल्प बचा ही नहीं है, यानी आक्रमण अब करना ही होगा। युद्ध अति आवश्यक है। आखिरकार मुगल शासक अकबर ने गढ़ा राज्य पर आक्रमण करने के लिए आसफ खान को सन 1564 में इजाजत दे दी।
1: यहाँ पर आक्रमण करने के लिए अकबर की सेना नहीं आई थी, आसफ खान की ही सेना यहाँ पर आई।
0: हाँ, कभी भी अकबर गढ़ा राज्य पर आक्रमण करने के लिए नहीं आया। उनका जो सेनापति था आसफ खान, उन्होंने गढ़ा राज्य पर आक्रमण किया था। आसफ खान पहले से ही गुपचुप तरीके से अपनी सेना को भी सुदृढ़ कर रहा था, उधर अकबर को भड़का रहा था और इधर सेना भी अपनी तैयार कर रहा था। हाथी, घोड़े, पैदल सैनिक को कई वर्षों तक एकत्र करता रहा। अकबर की इजाजत मिलते ही भारी भरकम मुगल सेना का साथ भी उसको मिल गया। यह बात जानकर कि मुगल सेना गढ़ा राज्य पर आक्रमण कर रही है, तो जो छोटे छोटे राज्य थे जो अकबर को लगान दिया करते थे, अप्रत्यक्ष रूप से मुगल राज्य के अधीन थे, उन सब ने भी अपनी सेनाएं आसफ खां को दे दी। तो इस तरह आसफ खां के पास एक बहुत ही विशाल सेना हो गई, जो कि बड़े हाथियों से, घोड़ों से और हथियारों से लैस थी।
1: तो क्या पूजा जी ये भी कह सकते हैं कि इसके पीछे खुद आसफ खां की जो महत्वाकांक्षा थी वो भी जोर मार रही थी, क्योंकि खुद चाहता था कि वो भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह गढ़ा राज्य का सिरमौर बन जाए।
0: बिल्कुल, आसफ खां अपनी जगह बनाने में लगा हुआ था
1: जी।
0: और उसने अकबर का सहारा लिया।
1: बिल्कुल,
0: अकबर के लिए ये एक कहीं विचलित करने वाली बात थी कि भारत का जो मध्य भूभाग है वो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तो ये सब मिलकर ही तो स्थितियां पैदा कर रहे थे।
1: और उस समय रानी दुर्गावती कहाँ थी?
0: जिस समय आसफ खां गढ़ा राज्य के लिए षड्यंत्र रच रहा था, उसी समय रानी दुर्गावती गढ़ा राज्य को समृद्ध करने में लगी हुई थी
1: जी।
0: जब आसफ खां दमोह की तरफ आ गया, उस समय तो रानी सिंगौरगढ़ में थी और उन्हें इस षड्यंत्र की भनक तक नहीं थी, क्योंकि वह तो मित्रवत व्यवहार करता था।
1: बिल्कुल।
0: तो रानी ने नहीं सोचा कि इस तरीके का कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है। रानी के पास अचानक से सूचना पहुंची कि आसफ खां दमोह तक पहुंच चुका है। इससे रानी की सेना के खेमे में हलचल मच गई। उस समय रानी युद्ध के लिए तैयार तो थी नहीं
1: जी।
0: कहते हैं कि उनकी सेना में उस समय केवल 500 सैनिक थे।
1: अच्छा।
0: लेकिन गोंड रानी दुर्गावती ने इस कठिन समय में भी साहस नहीं खोया और मुगल सेना का सामना करने के लिए आगे बढ़ी
1: जी।
0: रानी को छोटी सी सेना के साथ युद्ध के लिए पलायन करने की तैयारी देखते हुए उनके जो मंत्री थे आधार कायस्थ, उन्होंने रोका और कूटनीति का सहारा लेने को कहा। इस समय गोंड सेना में सैनिकों की कमी थी, युद्ध की तैयारी थी नहीं। और सामने विशाल मुगल सेना का होना चिंताजनक तो था।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए यह सलाह दी गई कि इस समय रानी युद्ध के लिए पलायन ना करें
1: जी।
0: लेकिन रानी को ये सलाह तो दी गई कि वह युद्ध में नहीं जाएं, पर रानी के लिए युद्ध में ना जाना कायरता का प्रदर्शन करने जैसा था। यह उनके आदर्शों के भी खिलाफ था
1: जी।
0: युद्ध से मुंह मोड़ लेना ये तो सवाल ही नहीं उठता था उनके लिए।
1: बिल्कुल, और इसीलिए हम उन्हें रानी दुर्गावती के नाम से आज भी संबोधित
0: जी
1: करते
0: हाँ।
1: हैं।
0: रानी दुर्गावती ने सोचा कि अपमानजनक जीवन जीने से अच्छा है सम्मानजनक तरीके से मर जाना।
1: वाह, क्या बात है। तो फिर क्या उन्होंने मतलब ठान तो लिया ही था, तो क्या सामना किया उन्होंने आसफ खां की सेना का?
0: रानी अब गढ़ा राज्य की आन बान की रक्षा के लिए युद्ध में जाने की तैयारी कर चुकी थी
1: जी।
0: रानी का साहस देखकर अब उनकी सेना में लगभग 2000 सैनिक सम्मिलित हो गए। कहां 500 की सेना थी
1: जी।
0: और लोग अपने आप से आए उनकी सेना में सम्मिलित होने के लिए। तो रानी ने अपनी सेना को तैयार कर लिया और सेना कूच कर गई
1: जी।
0: जिस ओर मुगल सेना बैठी हुई थी उस ओर उन्होंने 4 पड़ाव पार भी कर लिए।
1: अच्छा।
0: इसकी सूचना आसफ खां को लग गई और वो भी आगे बढ़ रहा था
1: जी।
0: तो जैसे ही सूचना मिली तो वो दमों में ठिटक गया।
1: अच्छा।
0: वहीं रुक गया
1: जी। जी।
0: उसने अपने संदेश वाहक मुगल दरबार में भेजे
1: जी।
0: अकबर से और अधिक सेना की टुकड़ियां भेजने की मांग की।
1: लेकिन पूजा जी, पहले ही उसके पास 10,000 लोगों की सेना थी और रानी तो यहाँ पर सिर्फ 2,000 सैनिक लेकर के चलनी थी, तो आसफ खां को यह अंदाजा नहीं था कि रानी के पास सेना कम है, या वो डरा हुआ ज्यादा था?
0: रानी के शौर्य की गाथाएं वो सुन चुका था
1: जी,
0: और गोंड भी बड़े पराक्रमी होते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो संभवतः यही कारण था कि इतना अधिक आंतरिक जानकारियां जुटाने के बाद भी और 10,000 की सेना लेने के बाद भी उसने और टुकड़ियों की डिमांड अकबर के सामने रखी।
1: जी।
0: अगर हम ऐतिहासिक ग्रंथ देखें, जैसे आईने अकबरी है जिसे अबुल फजल ने लिखा है, तो हमें उसमें पढ़ के पता चलता है कि आसफ खां की सेना में हाथी घोड़े पैदल सैनिक सहित 10,000 की सेना थी।
1: पहले से ही थी।
0: पहले से ही थी। इसके अलावा मुगल शाही आदेश से जो मुगलों के जो इफ्तादार हुआ करते थे, जैसे नाम मिलते हैं हमको मुहब्बिब अली खान, मोहम्मद मुराद खान, वजीर खान, बाबाई काकशाल, नाजिर बहादुर और आक मोहम्मद, ये सभी जो हैं इफ्तादार थे मुगल दरबार के
1: जी।
0: और ये सभी भी अपनी सेनाएं लेकर अब आसफ खान से मिल गए।
1: सैन्य सहायता आसफ खान को मिल गई, तो उसके बाद उनके पास कितने सैनिक हो गए?
0: हाँ, अगर हम तबकाए अकबरी नाम की एक किताब है उस समय की, वो देखें तो हमें पता चलता है कि आसफ खां की सेना में घुड़सवार पैदल सैनिक सहित लगभग 50,000 की सेना का उल्लेख है।
1: ओ, कहां रानी के पास सिर्फ 2,000 की सेना थी और ये 50,000 लोगों की सेना लेकर आ रहा था, जिसमें पैदल सैनिक भी थे और हाथी घोड़े, मतलब सारे लोग थे, तमाम लाव लश्कर मौजूद था।
0: जी हाँ।
1: तो फिर क्या उसने रानी के आने का वहां इंतजार किया या रानी की तरफ कूच किया?
0: रानी दुर्गावती अपनी सेना के साथ दमोह की ओर कूच कर रही थी
1: जी।
0: उधर दूसरी ओर तेजी से आता हुआ आसफ खां यह जानकर कि गढ़ा की सेना कूच कर गई है, दमोह में रुक गया था
1: जी।
0: तो गढ़ा राज्य के मंत्रियों ने रानी दुर्गावती को यह सलाह दी कि किसी सुरक्षित स्थान पर सेना को रुक जाना चाहिए
1: जी।
0: और वहां हमें अपनी सेना का एकीकरण कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी अभी बहुत सारे सैनिक आकर जुड़े हैं, तो सेना का एकीकरण करना बहुत जरूरी था
1: जी।
0: तो रानी को यह परामर्श ठीक लगा
1: जी।
0: और उन्होंने अपनी सेना को गढ़ा के पश्चिम में स्थित सघन जंगलों की ओर मोड़ लिया
1: जी।
0: इन जंगलों में अनेक वनवासी गोंड राज्य पर आई विपदा की जानकारी पाकर सेना में शामिल होने के लिए अपने आप ही चले आए
1: जी।
0: इस तरह रानी की सेना में स्वेच्छा से अनेक लोग जुड़ने लगे। अब लगभग 2,000 की सेना रानी के पास में
1: थी। इस तरह से 2,000 लोग हो गए थे 500 से जी।
0: तो यहाँ जंगलों में सेना का एकीकरण करने के बाद रानी ने फिर दक्षिण पश्चिम की तरफ कूच किया
1: जी।
0: और वह एक स्थान पर पहुंची जो नरई के नाम से जाना जाता है।
1: अच्छा।
0: नरई नर्मदा नदी और गौर नदी के बीच की एक घाटी है
1: जी।
0: ये घाटी चारों ओर से पहाड़ियों से घिरी हुई है
1: जी।
0: गढ़ा की सेना ने यहाँ नरई में अपना शिविर गाड़ दिया। अबुल फजल ने भी नरई के बारे में लिखा है, वहाँ प्रवेश करना और वहाँ से बाहर आना इस घाटी से बहुत ही मुश्किल था
1: जी।
0: ऐसा अबुल फजल ने लिखा। इस स्थान के चारों ओर ऊंचे पर्वत हैं, सामने गौर नदी बहती है, ये भी अबुल फजल ने लिखा है। दूसरी ओर तो नर्मदा जोर जोर से पहाड़ों से टकराती हुई बहती है, यानी इस दुर्गम स्थान का बड़ा विस्तृत वर्णन अबुल फजल ने आईने अकबरी में किया। और उसने ये भी लिखा कि केवल एक सकरा सा रास्ता है जो बसाहट की तरफ जाता है।
1: तो निश्चित रूप से ये परिस्थितियां, ये जो स्थान था, ये तो रानी दुर्गावती के लिए एक प्लस पॉइंट था वहां पर, और उन लोगों के लिए तो निश्चित रूप से बड़ा ये दुरूह कार्य रहा होगा, क्योंकि वो सब जानते थे कि गोंड जनजाति के लोग हैं, जंगलों का रास्ता जानते हैं, दुर्गम स्थानों को बहुत अच्छे से पहचानते हैं।
0: हर एक राजवंश का अपनी प्रकृति को जानना उसका एक प्लस पॉइंट तो होता ही है
1: जी।
0: साथ ही हर एक राजवंश की अपनी एक तकनीक भी होती है युद्ध की।
1: बिल्कुल।
0: तो इनकी तकनीक में प्रकृति का उपयोग करते हुए लड़ना शुरू से ही शामिल था
1: जी।
0: तो नरई को चुनना रानी की एक स्ट्रेटजी का एक बहुत अच्छा भाग था
1: जी। तो इससे मालूम चलता है कि जो रानी दुर्गावती थी वो युद्ध की रणनीति बनाने में भी अत्यधिक कुशल थी
0: जी। हाँ।
1: तो श्रोताओं, मतलब इसका के देखिए, जो रानी दुर्गावती थी वो युद्ध नीति में भी बहुत कुशल थी, रणनीति बनाने में बहुत कुशल थी। उन्हें मालूम था कि उनके पास कितनी कम सेना थी, पहले 500 लोग थे और अब तो जो उनके पास सैनिक आकर के भी जुड़े, जैसे कि हमें पुरातत्वविद पूजा जी ने बताया कि जो 2,000 लोग भी हुए वो कोई कुशल योद्धा नहीं थे, वो सिर्फ गोंड जनजाति के ऐसे लोग थे जो गढ़ा राज्य के रहवासी थे, और वो रानी की भक्ति से सराबोर होकर, रानी की भक्ति से प्रभावित होकर उनकी सेना में जुड़ गए। तो आगे भी ये बात जारी रहेगी। हम कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से सुन रहे हैं। हमारे साथ पुरातत्वविद पूजा सक्सेना जी हैं, जो लगातार हमें बहुत इंटरेस्टिंग जानकारियां दे रही हैं। और अब युद्ध तक बात आ चुकी है, युद्ध का बिगुल बज चुका है, आसफ खान ने धोखा दे दिया है, और अब देखते हैं कि रानी किस तरह से आसफ खान की एक लंबी चौड़ी सेना का मुकाबला करती हैं। उसके लिए आपको सुनना होगा हमारा अगला एपिसोड, जिसके लिए हम आपको जल्द ही मिलेंगे। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह, लेकर उपस्थित हूं हमारी सनातन योगिक परंपरा पर प्रकाश डालता कार्यक्रम योग संवाद। श्रोताओं, आज के योग संवाद में हम प्रवेश कर रहे हैं उस विचार भूमि में जहां मनुष्य के जीवन का मार्ग अदृश्य भाग्य की रेखाओं से नहीं बल्कि उसके संकल्प, साधना और पुरुषार्थ से आकार देता है। योग वासिष्ठ हमें याद दिलाता है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, मनुष्य के भीतर उन्हें बदलने की शक्ति विद्यमान है। दैव के भरोसे बैठ जाना चेतना को जड़ करता है, जबकि पुरुषार्थ जीवन में गति, दिशा और संभावना भरता है। तो आज का संवाद इसी प्रश्न के साथ कि क्या भाग्य मनुष्य को चलाता है या मनुष्य अपने पुरुषार्थ से अपना भाग्य रचता है? क्या दैव के आगे हाथ जोड़ देना ही नियति है या अपने कर्मों की लौ से अंधकार को हटाना ही मनुष्य की पहचान है? आइए योग वासिष्ठ के आलोक में समझें पुरुषार्थ की श्रेष्ठता और दैववाद के निराकरण को। इस बातचीत के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं योग, अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी। नमस्कार शशिकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में आपका।
1: जी नमस्कार।
0: पुरुषार्थ की श्रेष्ठता और दैववाद का निराकरण आज इस अंक में होने जा रहा है, तो सबसे पहले तो मैं ये चाहती हूँ कि जो हमारे सुनने वाले हैं उन्हें आप बताएं कि दैववाद से तात्पर्य क्या है।
1: दैववाद को महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि श्री राम पूर्व जन्म के पौरुष से ही दैव का जन्म होता है, यानी पूर्व जन्म का पुरुषार्थ ही दैव है, ऐसा व्यक्ति को मानना चाहिए। और सामान्यतया लोग समझते हैं कि हम अपने पुरुषार्थ को भोग रहे हैं, सामान्यतया लोग समझते हैं कि हम अपने प्रारब्ध को भोग रहे हैं। प्रारब्ध वास्तव में देखें तो पूर्व का कर्म है, यानी प्रारब्ध कर्म है, प्रारब्ध भोग नहीं है।
0: जी, जी, जी।
1: तो ऐसे में बार बार वशिष्ठ जी राम जी को इस चीज के प्रति सचेत कर रहे हैं कि कर्म के अतिरिक्त यहाँ कुछ भी नहीं है, कर्म ही फल का निर्माण करता है। और जो व्यक्ति ऐसा मान लेता है कि जो फल है वो देव दैव भरोसे मिल रहा है, ये बहुत बड़ी मूर्खता है। ऐसा है नहीं, वो पूर्व के कर्म का ही परिणाम है ये फल।
0: तो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि पूर्व जन्म के कर्म का जो परिणाम है वही प्रारब्ध है, और इसको इस जन्म के कर्म से बदला भी जा सकता है।
1: जा सकता है, क्योंकि ये दोनों जो कर्म हैं, खासकर प्रारब्ध कर्म और इस समय का जो क्रियमाण कर्म है, ये दोनों कर्म आपस में संघर्ष करते हैं। और अगर आप अपने वर्तमान के कर्म से, वर्तमान के प्रयत्न से पूर्व के कर्म को आप बदल सकते हैं, उसको क्षीण कर सकते हैं, और अगर वर्तमान में आप कर्महीन हो जाएंगे तो पूर्व का कर्म प्रभावित करेगा आपको। तो इस तरीके से आपके पास जो विकल्प है वो है पुरुषार्थ करने का, पुरुषार्थ से च्युत होने का कोई प्रावधान नहीं है यहाँ।
0: जी, जी जी जी। तो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि पुरुषार्थ हर स्थिति में आवश्यक है। अच्छा, जीवात्मा का संसार से उद्धार कैसे हो ये बताएं आप।
1: इसमें बड़ा सुंदर कहा है वशिष्ठ जी ने, कहा है कि हे राम, जो अपने को दैव के अधीन समझते हैं और सोचते हैं कि मैं कर्म करने में स्वतंत्र नहीं हूँ, हुई है सोई जो राम रच राखा, का कोई तर्क बढ़ावे साखा। तो ये जो ऐसे लोग हैं, ऐसी विचारधारा ठीक नहीं है। इस विचारधारा को सत्संग तथा सतशास्त्र के अभ्यास के द्वारा मन से दूर करके जीवात्मा इस संसार से बलपूर्वक उद्धार करें अपना। ऐसा करें कि आपको इसके लिए लगातार प्रयास करने की आवश्यकता है कि आपके जीवन में ऐसी अगर घटनाएं घट रही हैं जो आपको लगता है कि ये आपके अनुकूल नहीं है, तो ऐसे में आपको इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि आप किं कर्तव्य विमूढ़ हो जाएं, इसका अर्थ ये हुआ कि आप और सजगता के साथ और जागरूकता के साथ अपने कर्म के प्रति सचेत हों और कर्म करने के प्रति तत्पर हों। क्योंकि आपने सुना होगा कई बार लोक साहित्य में संतों ने कहा है कि बोया पे बबूल का आम कहां से खाए, तो अब ऐसे में जो हम बोते हैं वही हम काटते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा फल लग जाता है जो आपके कर्म से अलग हो, तो कर्म और फल का इतना गहरा संबंध है। और ऐसे लोग जो कर्म फल के बारे में सोचते हैं वो निश्चित ही बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, क्योंकि कर्म फल का निर्माण कर्म करता है। तो ऐसे में हमारा ध्यान कर्म पर होना चाहिए, न कि कर्म फल पर। इसी को भगवान कृष्ण ने गीता में कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचना। जबकि संसार का आदमी क्या करता है, वो हमेशा फल पर अपने को केंद्रित करता है। और देखिए, फल पर केंद्रित होने से आप एक बात अपने कर्म में चूकते तो हैं ही, साथ ही साथ आपके जीवन में भय, आपके जीवन में संशय, आत्मविश्वास की कमी, तमाम सारे ऐसे और विकृतियों के जन्म लेने की संभावना बढ़ जाती है जब आप कर्म फल के बारे में सोचते हैं। जबकि कर्म के बारे में आप सोचें तो निश्चित ही आपके बहुत सारे संशय दूर होंगे। इसीलिए कहा भी जाता है, एक वर्ड आता है प्रोकास्टिनेशन, जहां पर हम जब भी कोई काम करने चलते हैं तो सोचते हैं कि इसका क्या होगा, या ऐसा मैंने किया था तो उसका परिणाम नहीं आया। तो इस तरीके से सोचने में ये मन की चालाकी है, ये कह सकते हैं कि आपका मन आपको धोखा दे रहा है। जबकि महर्षि वशिष्ठ जी इसी चीज को दूर करने के लिए राम से कहते हैं कि तुम्हें सिर्फ कर्म करना है और जो भी भोग है वो कर्म का ही है। इसलिए प्रारब्ध जो है वो जो दैव शब्द है वो पूर्व का कर्म है, पूर्व जन्म का कर्म है, या पूर्व का कर्म कह लें कि पहले के कर्म का परिणाम आज आप भोग रहे हैं।
0: जी जी,
1: जो भी परिणाम बनता है वो कर्म से ही तो बनेगा।
0: बिल्कुल जी। तो आपने दैव को बताया और बार बार पौरुष का जिक्र इसमें हो रहा है, तो आप बताएं कि वशिष्ठ जी पौरुष किसे कहते हैं?
1: वशिष्ठ जी पौरुष कहते हैं आप जो दैव की संज्ञा दे रहे हैं उस संज्ञा को छोड़कर उसको अपने पूर्व का प्रयत्न अगर माने आप तो उसको वो पौरुष कहते हैं। कि पूर्व जन्म के उस पौरुष को ही कोई दैव की संज्ञा देना चाहे तो दे सकता है, लेकिन वो पूर्व जन्म का पौरुष है, वो दैव नहीं है। आप संज्ञा दे रहे हैं दीजिए, लेकिन उस संज्ञा से अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। अर्थ जो है जब भी दैव की बात आएगी तो वो पूर्व का पौरुष है, न कि वो कोई और पौरुष के अतिरिक्त कुछ है। तो वो बार बार उस पौरुष की तरफ उनका ध्यान खींच रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? इसके पीछे राम जी ने जो जगत को देखा, जगत में जो दृश्य को देखा तीर्थाटन के दौरान, तो उनको ऐसा लगा कि बहुत सारे लोग कर्म तो कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन प्रयत्न के बाद भी जो उनको भोग में मिल रहा है वो दुख मिल रहा है, दुख से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने प्रयत्न से अपने को विरत करने का प्रयास किया और उसी प्रयास में जो है इस ग्रंथ के द्वारा उन्हें उपदेश दिया जा रहा है। तो ऐसे में प्रयत्न से व्यक्ति कभी भी ना चूके, यानी प्रयत्न करना उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, ये मान करके वो अपने जीवन की यात्रा करे, इस बात पर बार बार ध्यान दिलाया गया है। इसीलिए योग को कर्मयोग भी कहा गया है कि योग कर्म योग है, कर्म से विरत होने का योग नहीं है।
0: योग नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत ही सुंदर तरीके से आपने ये समझाया। अच्छा बताएं कि ये ग्रंथ क्या कहता है कि इस जगत में कौन दीन और दुखी है?
1: दीन और दुखी वो लोग हैं जो विषय सुखों के क्षणिक लोभ में फंसकर उस पूर्वकृत कर्म पौरुष या दैव को वर्तमान जन्म के पुरुषार्थ द्वारा जीतने का प्रयत्न नहीं करते।
0: अच्छा,
1: वो लोग दीन हैं, प्रयत्न नहीं करते तथा सदा दैव के भरोसे बैठे रहते हैं। वे दीन, पामर और मूढ़ हैं, क्योंकि पुरुषार्थ के बिना आत्मकल्याण कभी भी सिद्ध नहीं होगा,
0: संभव नहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश हो गया जी,
1: कि जो लोग पूर्व के भरोसे बैठे हैं वो कतई वही दीन हैं। जो आज कर्म कर रहे हैं या वर्तमान में पूर्व के परिणाम को बदलने के लिए प्रयत्नशील है,
0: प्रयत्नशील
1: वो लोग दीन नहीं है। और जो ये मान के बैठे हैं कि यही लिखा था भाग्य में,
0: ये
1: हो रहा है,
0: यही होना था,
1: तो वो दीन है, पामर है, मूढ़ है।
0: जी जी,
1: क्योंकि पुरुषार्थ से ही आप अपने आत्म कल्याण को सिद्ध कर सकते हैं।
0: तो आपने पुरुषार्थ की बात की है, तो मेरे मन में एक प्रश्न है कि पुरुषार्थ के भी प्रकार हैं, अगर हैं तो कितने हैं?
1: आपने सुंदर कहा कि पुरुषार्थ दो प्रकार का यहाँ पर इन्होंने कहा है कि एक पूर्व जन्म के जो कर्म है उनके द्वारा पुरुषार्थ, और एक जो वर्तमान में आप प्रयत्न कर रहे हैं ये इस समय का पुरुषार्थ वर्तमान में, ये दोनों आपके प्रयत्न की बात है। तो कहते हैं ये दोनों आपस में भेड़ों की तरह लड़ते हैं और उनमें जो भी बलवान होता है वह दूसरे को क्षण भर में पछाड़ देता है, पीछे छोड़ देता है। तो दो तरह के पुरुषार्थ की संकल्पना वशिष्ठ जी ने दी राम जी को, कि जो एक प्रारब्ध है वो पुरुषार्थ जो आपने पहले किया है और जो वर्तमान में आप कर रहे हैं। तो ये दोनों आपस में संघर्षरत हैं। अगर आप चाहें कि वर्तमान के प्रयत्न से पूर्व के पुरुषार्थ को बदलना, तो ये संभव है। हाँ, ये असंभव नहीं है। इसलिए हर व्यक्ति को इस संसार में, खासकर इस ग्रंथ के उपदेश को अपने जीवन में अंगीकार करना चाहिए कि हमें कभी भी पुरुषार्थ से च्युत नहीं होना चाहिए, और ऐसा कोई विचार जो हमें पुरुषार्थ करने में बाधा उत्पन्न करे, हाँ, उन विचारों से हमें अपने को मुक्त रखना चाहिए, नहीं तो वो हमें दीनता की श्रेणी में लाके खड़ा कर देंगे। दीन वह है जो अपने पर भरोसा नहीं करता, अपने पुरुषार्थ पर भरोसा नहीं करता, और किसी और भरोसे अपने आप को बिठा दे, कर्म छोड़ दे, ऐसे लोग दीन हैं।
0: अच्छा, कर्म और भाग्य की लड़ाई तो बहुत इस पर चर्चा होती है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस ग्रंथ में क्या बताया गया है कि प्रारब्ध और प्रयत्न में बलवान कौन है?
1: प्रारब्ध और प्रयत्न में हमेशा प्रयत्न बलवान है, ऐसा वशिष्ठ जी कहते हैं कि पूर्वकृत कर्मों के फलस्वरूप प्रारब्ध और वर्तमान जन्म के पुरुषार्थ, इन दोनों में वर्तमान जन्म का पुरुषार्थ ही प्रत्यक्षता बलवान है। इसलिए जो ज्ञानी है, अधिकारी मनुष्य को पुरुषार्थ का सहारा लेकर हमेशा सतशास्त्रों का अभ्यास और सत्संग द्वारा बुद्धि को निर्मल बनाकर संसार सागर से अपना उद्धार कर लेना चाहिए। तो संसार सागर से उद्धार करने का जो साधन है वह है सतशास्त्रों का अभ्यास, पहला काम। क्योंकि सतशास्त्रों में आपको इस तरह की देशना मिलेगी जिसके द्वारा आप अपनी दीनता को दूर करें, भटकाव से अपने आप को बचाएं और ऐसी किसी भी भ्रामक मन स्थिति को अपने पर हावी न होने दें जिसकी वजह से आपका वर्तमान जो प्रयत्न है वो किसी प्रकार से बाधित हो। और दूसरा सत्संग द्वारा, अब सत्संग द्वारा बुद्धि, यहाँ पर सत्संग की महिमा बहुत बार बताई गई है क्योंकि सत्संग के द्वारा ही आप अपने बुद्धि को निर्मल कर सकते हैं। बुद्धि जो तमाम असत चीजों का संग कर ली है उससे मिटाने के लिए आपको सत्संग की आवश्यकता है। और गोस्वामी तुलसीदास जी तो कहते ही हैं कि बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो बिना सत्संग के विवेक का दीप नहीं जलता, जिस विवेक के प्रकाश में आप नीर छीर जो विवेकी दृष्टिकोण कहते हैं, जिसको हंस से कबीरदास जी हंस कहते हैं कि ये दृष्टि आप में सद असद विवेक यानी सत्य और असत को जानने का जो विवेक है वो सतशास्त्र के अभ्यास और सत्संग से बुद्धि को निर्मल करने के बाद ही आप उसके योग्य बनते हैं और उसको धारण कर पाएंगे।
0: अच्छा, अर्थ और कामना की जो सिद्धि है वो किस तरह से होती है?
1: हाँ, ये सुंदर आपने प्रश्न किया। ये कहते हैं वशिष्ठ जी कि राम, इस संसार में जो लोग अर्थ और कामना के लिए प्रयत्न कर रहे हैं उनको इस बात को भली भांति जानना चाहिए कि पूर्व कृत कर्म यानी पूर्व का जो पुरुषार्थ है वो अर्थ और काम को सिद्ध करने में वो सहयोगी है। लेकिन जो आपका प्रयत्न है वो धर्माचरण करने में और मुक्ति को दिलाने में आपका वर्तमान प्रयत्न जो है आपको साधक बनाएगा, सिद्ध करेगा वो। अच्छा। तो पूर्वकृत कर्म से आप अपने जीवन में अर्थ और काम की सिद्धि कर सकते हैं, उसमें उसका सहयोग है,
0: होती है।
1: हाँ, होती है,
0: अपने आप होती है।
1: अपने आप तो ना कहिए लेकिन उसमें उसका एक बल होता है वो आपको उस तरह से, इसीलिए आप संसार में देखेंगे कि बहुत सारे लोग अपनी कामना की पूर्ति और अर्थ को सिद्ध करने में लगातार प्रयत्न करते हैं लेकिन प्रयत्न के बाद भी वो विफल होते हैं। तो इस विफलता से कई बार निराशा भी आती है तो ये निराशा जीवन में ना आए तो इसके रहस्य को बताने के लिए उन्होंने ये कहा कि पूर्वकृत कर्म या प्रारब्ध कर्म जो है वो आपके अर्थ और काम की सिद्धि में सहयोग करेगा और जो प्रयत्न आपका है वो प्रयत्न आपके धर्म और मोक्ष की सिद्धि करेगा।
0: लेकिन अब एक मेरे मन में ये प्रश्न है कि अर्थ और कामना की सिद्धि अगर पूर्व जन्म के कर्म से या पूर्व के कर्म से प्रारब्ध से है तो इसे परिवर्तित किया जा सकता है या नहीं?
1: बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि जब आप प्रयत्न पूर्वक धर्म करेंगे तो धर्म से अर्थ आएगा।
0: जी,
1: तो अर्थ जब आएगा, धर्म से आने वाला अर्थ कामनाओं को सिद्ध करता है, अधर्म से प्राप्त जो धन है उस धर्म से, उस धन से कभी भी कामनाएं सिद्ध नहीं होती। इसीलिए आप देखिएगा कि जो वर्तमान का जो प्रयत्न है वो आपको धर्म का मतलब यहाँ कतई बहुत सीमित अर्थ में न लिया जाए, धर्म का मतलब अपने कर्तव्य कर्म का निर्वाह करना भी धर्म है। जैसे आप उदाहरण देखिए, मैं सहज बच्चों के लिए उदाहरण दूंगा कि आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ऐसे घर में पैदा होते हैं जहाँ साधनों का अभाव है, माता पिता के पास संसाधन नहीं है, लेकिन उन्हें इस बात का अगर वो विचार पूर्वक विवेक से विचार करते हैं और सोचते हैं कि हम अपने घर की स्थिति या अपने माता पिता की स्थिति को कैसे बदल सकते हैं, तो वो अपने को अपने कर्तव्य कर्म में अगर तल्लीन करते हैं, अपने धर्म का सही आचरण करते हैं, तो देखते हैं कि वो सारी बाधाओं के पार निकल के वो अचीव करते हैं जो बहुत अच्छे घरों के बच्चे नहीं कर पाते। तो क्या है, उन्होंने अपने प्रयत्न से धर्म को साधा, तो फिर ये जो अर्थ और काम कि सिद्धि तो अपने आप हो गई। तो ऐसे में आप देखें, एक किसी मोटिवेशनल स्पीकर ने कहा कि आप अगर किसी गरीब के घर में पैदा हुए हैं ये आपका भाग्य हो सकता है, लेकिन आप गरीब अगर मर रहे हैं तो ये आपके भाग्य का विषय नहीं है। इसका मतलब कि आपने कर्म का विषय, आपने प्रयत्न नहीं किया, तो ये कितनी बड़ी बात है। तो अंततः ये भी यही बात वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि आपको अपने प्रयत्न से अपने धर्म का आचरण करना चाहिए जिसके परिणाम स्वरूप आप अपने वर्तमान की परिस्थितियों से मुक्त हो जाएंगे,
0: मुक्त हो जाएंगे।
1: ये ठीक है कि वर्तमान परिस्थितियां चाहे प्रतिकूल हो अनुकूल हो अलग बात है, लेकिन उनको बनाए रखने में वर्तमान का प्रयत्न ही आपको सहायक होगा। आप प्रारब्ध के भरोसे बैठ जाएं तो आप उन्हें सिद्ध नहीं कर सकते।
0: तो ये बहुत आशा देने वाली बात है।
1: जी बिल्कुल
0: जी। अच्छा, मोह के बंधन से मुक्ति किसे मिलती है, क्या कहता है ये ग्रंथ?
1: जी, मोह के बंधन से मुक्ति के लिए ये ग्रंथ कहता है कि जो जगत के मोह के फंदे में लोग फंसे हुए हैं, ऐसे पुरुष सदाचार के द्वारा अपने कर्म को कर इस संसार के मोह रूपी बंधन से उसी प्रकार मुक्त हो जाते हैं जैसे पिंजरे से सिंह निकल जाता है। जो पुरुष उदार स्वभाव से युक्त एवं सत्कर्म के लिए प्रयत्न करने में कुशल हैं, सदाचार ही जिसका लीला विहार है, वह इस जगत के मोह रूपी फंदे से उसी प्रकार निकल जाता है जैसे सिंह पिंजरे से निकल जाता है। तो ऐसा कह रहे हैं वो। तो इसका मतलब कि सदाचार और सत्कर्म यानी सत प्रयत्न, यही दो ऐसे संसाधन हैं कि जिनके द्वारा आप जगत रूपी बंधन को काटकर अपने को मुक्त कर सकते हैं।
0: जी जी जी। तो ये तो आपने मुक्ति की बात की, अब मैं मनुष्य के स्वार्थ की बात करना चाहती हूँ।
1: जी,
0: स्वार्थ चारों तरफ दिखाई देता है संसार में। हर इंसान का कहना है कि मनुष्य बहुत स्वार्थी है। तो संसार में मनुष्य के स्वार्थ का जो कारण है वो क्या है?
1: मनुष्य के स्वार्थ का जो कारण है वो सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति, यही मनुष्य का स्वार्थ है। आप देखें तो किसी भी कर्म के पीछे, किसी भी विचार के पीछे आप जो मूल तत्व पाएंगे जिसकी वजह से वो विचार या वो कर्म करने की प्रेरणा मिल रही है, वो यही है कि आपको सुख मिले और या फिर आपके दुख से आपकी निवृत्ति मिले। तो मूल स्वार्थ यही है और यही मनुष्य का स्वार्थ है। उस स्वार्थ की प्राप्ति कराने वाले जो आवश्यक कर्तव्य साधन है, एकमात्र उसी में तत्पर रहने को ही विद्वान लोग पौरुष कहते हैं। यानी दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति कराने में जो साधन है, उन्हीं साधनों में जो लोग तत्पर हैं वही अपने पौरुष का उपयोग कर रहे हैं, वही अपने पुरुषार्थ को सिद्ध कर पाएंगे। लेकिन जो उन साधनों से हट करके कहीं और अपनी ऊर्जा या अपना समय बिता रहे हैं या अपना प्रयत्न कर रहे हैं तो उनके हाथ तो विफलता ही लगेगी। तो इसलिए जो पौरुष शब्द है वो पौरुष शब्द इसीलिए है कि आप अपने स्वार्थ, स्वार्थ मतलब सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति, इसको सिद्ध करने में लगातार साधन करें।
0: जी, जी,
1: न कि साधन से अपने आप को विरत करें।
0: विरत करें
1: जी।
0: अच्छा, इसमें मुझे परमार्थ की सिद्धि की बात भी नजर आई थी, तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे सुनने वालों को ये बताएं कि परमार्थ की जो सिद्धि है वो कैसे होती है।
1: जी, परमार्थ के लिए उन्होंने कहा है कि परमार्थ है अपने परम तत्व को जानना, अपने जो मतलब जो आपका मूल स्वरूप है जिसको आप ब्रह्म स्वरूप कह लें, उसकी अभिप्राप्ति कैसे हो, वो है परमार्थ, परम अर्थ जिसका। इस स्वार्थ में तो ये आ गया कि आप अपने सुख की कामना को सिद्ध करें और दुख से मुक्त हों, लेकिन परम जो है जिसको कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन जो वर्ड आता है कि आप अपना आत्म साक्षात्कार करें, तो आत्म साक्षात्कार करने के लिए आप वही हैं जिसमें ये सारा जगत है और जिसकी वजह से सारे जगत में चेतना है। तो उसको जब आप प्राप्त करते हैं या उसको सिद्ध करते हैं तब जाके आप अपने परमार्थ को सिद्ध कर पाते हैं। अधिकारी पुरुष का जन्म पुरुषार्थ के सिद्ध होने पर ही सफल होता है, अन्यथा नहीं। ऐसा जानकर सदा अपना आत्म कल्याण करने में ही प्रयत्न करना चाहिए, तब जाकर के परमार्थ की सिद्धि होगी। आत्म कल्याण के लिए जब आप प्रयत्न करेंगे तो परमार्थ की सिद्धि होगी।
0: अच्छा, ये बताएं कि इस ग्रंथ में जन्म मरण रूपी भवरोग को शांत करने का उपाय भी बताया गया है, तो वो थोड़ा सा उसकी आप व्याख्या कर दें ताकि हमारे सुनने वालों के लिए बात आसान हो जाए।
1: जी, इसमें उन्होंने कहा है कि अधिकारी जो लोग हैं वह नित्य संतुष्ट एवं उत्तम ज्ञानी जनों की सेवा रूप अमोघ मधुर और उत्कृष्ट औषध से जन्म मरण की परंपरा रूप भवरोग को शांत करें। ऐसा वशिष्ठ जी कहते हैं कि वो जो ज्ञानी लोग हैं ज्ञानी जनों की सेवा करें और ऐसे नित्य संतुष्ट लोग जो मैंने हमेशा संतुष्ट हों। ज्ञानी होने का मतलब ये नहीं कि आपको बहुत सारा ज्ञान है, वो ज्ञान आपके संतोष में कितना सहयोगी है, और अगर आप असंतुष्ट हैं तो आपका ज्ञान कभी भी कह सकते हैं कि वो सत्य ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि संतोष से प्राप्त होने वाला जो सुख है वो परम सुख है
0: जी।
1: और यहाँ पर संसार में जो देखते हैं हम लोग कि संतोष को हम लोग मानते हैं कि संतोष एक प्रकार का कह सकते हैं कि अपने कर्म से पलायन करने की एक विधा है कि जो है मिल गया है वो उसमें संतुष्ट रहो। संतुष्ट, संतोष का मतलब चित्त की शांति। जब चित्त शांत होगा तो उस चित्त के द्वारा जो विचार होगा वो सद्विचार होगा, सद्कर्म होगा, स्वाध्याय होगा, शास्त्रों का मतलब सही चुनाव होगा। अशांत चित्त में सही विचार नहीं आते, तो तब जाकर के सुख का अनुभव होता है। तो ऐसे में यही वो औषधि है जिससे आप जन्म मरण रूप जो भवरोग है, इस भवरोग में अच्छा जन्म मरण को हम लोग सोचते हैं कि शरीर का जन्म हुआ और शरीर मर गया, ऐसा नहीं है। आप देखिए कामनाओं का भी जन्म होता है, कामनाएं भी मरती हैं। तो ऐसे में जन्म मरण का मतलब ये हुआ कि आप ऐसी किसी विचार के साथ जो विचार ने जन्म लिया और उसकी वजह से आपको दुख हो रहा है या सुख हो रहा है तो उसका बदलाव होगा। तो इस परम सत्य को जानते हुए आप इस संसार में अगर व्यवहार करें तो आप हर पल संतुष्ट रह सकते हैं और एक जीवन में शांति बनी रहेगी और परम पुरुषार्थ जो है वो सिद्ध होगा।
0: अच्छा, मैं चाहती हूँ कि चूंकि समय समापन की ओर है तो मैं चाहती हूँ कि जो भी चर्चा हमने आज की है उसे एक संक्षेप में आप हमारे सुनने वालों के लिए उनके लिए रखें और एक संदेश अपनी तरफ से। आप,
1: मैं इस संदेश में यही दूंगा उन्हें कि आप हमेशा सतशास्त्रों का स्वाध्याय करें, सत्संग करें
0: जी।
1: क्योंकि मन को निर्मल करने का ये अमोघ अस्त्र है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपका मन जिन मलिनता की वजह से दूषित हुआ है या फिर कहते हैं विषाद से ग्रस्त हुआ है, दुखी हुआ है या तमाम तरह के आपके मन में ऐसे उथल पुथल चल रहे हैं जिससे आप अपने प्रयत्न में बाधा महसूस कर रहे हैं, तो ऐसा अगर लगातार आप अभ्यास करते हैं तो निश्चित ही आप मन को निर्मल कर पाएंगे। और जो निर्मल मन का होगा वो निश्चित ही उसके चित्त में भगवान या वो परम तत्व जिसको हम कहते हैं परम पुरुषार्थ से जिसकी सिद्धि होती है उसका आत्म कल्याण होगा। तो हमें लगातार सतशास्त्रों का स्वाध्याय और सत्संग करना चाहिए, यही मैं अपने श्रोताओं से अपेक्षा रखूंगा।
0: जी जी, और पुरुषार्थ और दैववाद को भी संक्षेप में आप एक बार और मतलब एक अपील की तरह कहने मैं चाहती हूँ, क्योंकि ये बात बहुत रहती है लोगों के मन में, बहुत होती है और जीवन में जब भी कठिन परिस्थितियां आती हैं तो कई बार की लगातार की परेशानियों को देखने के बाद मनुष्य इस तरह से सोचने लगता है कि यही हमारा जीवन है, यही हमारा भाग्य है, ऐसा ही लिखा है। तो एक उत्साहवर्धन की तरह
1: मैं इसे ही कहूंगा कि देखिए ये भी एक मन का आपको शांत करने का या कह सकते हैं बेचैनी से दूर करने का एक आधार है कि चलो आप उससे अपने आप को व्यथित होने से रोक लें
0: या कहें कि उस परिस्थिति को सहने का
1: आधार है। ये कह सकते हैं ये
0: मैकेनिज्म है, तो
1: बिल्कुल ये माइंड मैकेनिज्म है कि जब आप किसी भी चीज को जब अपने वश में नहीं कर पाते तो ऐसा है कि ना आप उस परिणाम से टूटे नहीं बल्कि आप अपने आप को संभाल कर आगे फिर अच्छे प्रयत्न के लिए अपने को बनाए रखें। तो ये भी कहा जाता है, लेकिन इसके साथ साथ जो आपने दैववाद के निराकरण की बात की उन्होंने कहा कि ये भी जो आपके जीवन में अनचाहा परिणाम आ रहा है ये परिणाम आपके पूर्व के कर्म का परिणाम है, यानी पूर्व में आपने ऐसा कर्म किया है तो उस घटना को याद करके आप वर्तमान में ऐसे कर्म से अपने आप को बचाएं कि फिर ऐसे किसी परिणाम की प्राप्ति आपको न हो जो आपके मन में क्षोभ उत्पन्न करे। सुकरात एक बहुत बड़े चिंतक हुए हैं जो बड़े क्रूप थे लेकिन वो दर्पण देखते थे बार बार, तो दर्पण देखते थे तो लोग सोचते थे कि आप बार बार अपना चेहरा देखते होंगे तो ये कुरूपता दिखती होगी, तो फिर आपको तो क्षोभ होता होगा कि ये क्यों कर रहे हैं, तो आप अपने आप को बार बार कष्ट क्यों पहुंचाते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं अपने को कष्ट नहीं पहुंचाता, मैं बार बार अपने चेहरे को इसलिए देखता हूं कि मेरा चेहरा तो लोगों के आकर्षण के योग्य नहीं है, तो ऐसे में मेरे द्वारा कोई ऐसा कर्म न हो जो लोगों को हमसे दूर ले जाए। हमें सजग बनाए रखे।
0: क्या बात है।
1: और जो लोग सुंदर हैं उनको तो मैं कहूंगा कि वो और अपने चेहरे को देखें क्योंकि वो अपनी सुंदरता को बनाए रखने के लिए ऐसे कर्म करें ताकि कहीं उनकी सुंदरता लोग भूल करके उनको कर्मों से उनको याद न करने लगे, तो उन्हें अपने सौंदर्य के अनुसार अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। तो यही बात वशिष्ठ जी ने भी कही है कि आपके हाथ में आपका प्रयत्न है, जो वर्तमान का क्रियमाण कर्म है, इस कर्म से आप पूर्व के भोग को भी बदलने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन अगर वर्तमान में आपने कर्म से अपने को अलग किया, विरत किया, तो पूर्व का जो भोग है वो तो है ही, आपने और भविष्य के लिए ऐसे भोगों का निर्माण कर लिया जो आपको विषाद में ले जाएंगे, दुख में ले जाएंगे। तो इसलिए वर्तमान में सजगता हमेशा कर्मों के प्रति होनी चाहिए। कहा भी जाता है कि जब आप जो बीज बो रहे हैं, यानी जो कर्म कर रहे हैं, उस कर्म के प्रति जागरूक अगर हों तो परिणाम निश्चित ही वही होगा जो आप चाहते हैं।
0: बिल्कुल,
1: अनचाहा कर्म करके मनचाहा परिणाम नहीं पाया जा सकता।
0: क्या बात है। बिल्कुल, तो बहुत ही सुंदर बात कि अनचाहा कर्म करके मनचाहा परिणाम नहीं मिल सकता है, तो बहुत सतर्क होने की जरूरत है। तो शशिकांत जी, आज की चर्चा बहुत अच्छी रही, बहुत रोचक रही, आपका हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नमस्कार।
0: तो श्रोताओं, योग संवाद कार्यक्रम में आज हमने चर्चा की पुरुषार्थ की श्रेष्ठता और दैववाद के निराकरण पर। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। चलते चलते आपको हम बता दें कि इस कार्यक्रम में विशेषज्ञ के तौर पर हमारे बीच उपस्थित थे योग अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी, मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा का था, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, और आपसे बातचीत कर रही थी मैं सुनीता सिंह। अब अनुमति दें इस कार्यक्रम से। नमस्कार, आप सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। बने रहिए रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.8 रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम भारत विभूति। आज हम आपसे चर्चा करेंगे पद्म भूषण से सम्मानित महान चित्रकार कार्टूनिस्ट के शंकर पिल्लई के बारे में। साथियों, कला केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, कला समाज का दर्पण है, समय का दस्तावेज है और परिवर्तन का माध्यम है। और जब हम के शंकर पिल्लई के बारे में बात करते हैं तो केवल एक कलाकार के बारे में नहीं बोल रहे होते। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक युग के बारे में, एक आंदोलन के बारे में।
2: बिल्कुल, 31 जुलाई 1902 को केरल के छोटे से शहर कायमकुलम में जन्मे के शंकर पिल्लई ने अपने जीवन की शुरुआत बेहद साधारण परिस्थितियों में की थी। उनके पिता एक साधारण डाक कर्मचारी थे और परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर थी, लेकिन इस साधारण परिवार के बच्चे में छिपी थी एक असाधारण प्रतिभा, एक ऐसी प्रतिभा जो आगे चलकर भारत की पहचान बनी।
1: के शंकर पिल्लई ने कभी कोई औपचारिक कला शिक्षा नहीं ली, उनके हाथ में कोई महंगा ब्रश नहीं था, कोई विदेशी डिग्री नहीं थी, लेकिन था तो बस एक अटूट जुनून, चित्रकारी का जुनून, अभिव्यक्ति का जुनून, सच बोलने का जुनून। बचपन में वे दीवारों पर कोयले से चित्र बनाते थे, स्कूल की किताबों के हाशिए पर अपने शिक्षकों के कार्टून बनाते थे, और यही शौक, यही जुनून उन्हें मुंबई ले गया, सपनों के शहर में, जहां संघर्ष था, चुनौतियां थीं, लेकिन अवसर भी थे।
2: बिल्कुल, तो आइए आज हम आपको लिए चलते हैं के शंकर पिल्लई की जीवन यात्रा की ओर। एक ऐसी यात्रा जो शुरू होती है केरल के एक छोटे से गांव से और पहुंचती है पूरे भारत के दिलों तक। ऐसी यात्रा जिसमें है संघर्ष के अनगिनत पड़ाव, सपनों की उड़ान, असफलताओं का सामना और अंततः सफलता का वो शिखर जो आज भी हम सबको प्रेरित करता है।
1: केशव शंकर पिल्लई का जन्म 31 जुलाई 1902 को केरल के त्रावणकोर राज्य के कायमकुलम नामक छोटे से शहर में हुआ था। ये स्थान आलप्पुझा जिले में स्थित है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और बैकवाटर्स के लिए प्रसिद्ध है। उनका जन्म एक परंपरागत नायर परिवार में हुआ था, जो केरल की प्रमुख जातियों में से एक है। उनके पिता केशवर नायर एक साधारण सरकारी कर्मचारी थे, वे डाक विभाग में काम करते थे और परिवार की आय बहुत सीमित थी। माता लक्ष्मी अम्मा एक धार्मिक और संस्कारी महिला थीं, जो घर परिवार की देखभाल करती थीं। परिवार में शंकर के अलावा और भी भाई बहन थे और सभी को एक साथ पालना आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण था।
2: केरल उस समय शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी था और शंकर के माता पिता चाहते थे कि उनके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। हालांकि आर्थिक तंगी थी, फिर भी उन्होंने शिक्षा पर समझौता नहीं किया। शंकर बचपन से ही बेहद जिज्ञासु और कल्पनाशील थे। कायमकुलम की हरी भरी प्रकृति, नारियल के पेड़, बैकवाटर्स की नावें और स्थानीय बाजार का रंगीन जीवन, ये सब उनकी कल्पना को उड़ान देते थे। वे घंटों बैठकर लोगों को देखते और उनकी विशेषताओं को अपने दिमाग में उतारते रहते थे।
1: उनकी माँ को याद है कि 5-6 साल की उम्र में ही शंकर घर की दीवारों पर कोयले से चित्र बनाते थे। एक बार उन्होंने अपने पिता का चेहरा दीवार पर बना दिया, जिसे देखकर पूरा परिवार हैरान रह गया। चेहरे की समानता इतनी सटीक थी कि लोग पहचान गए कि ये किसका चित्र है।
2: बिल्कुल, और माँ अक्सर चिंतित होती थी कि शंकर अपनी पढ़ाई की किताबों में भी चित्र बनाते रहते थे। गणित की किताब के हाशिए पर फूल, पत्ते, चिड़िया और लोगों के चेहरे बने होते थे। कभी कभी तो पूरा पन्ना ही चित्रों से भर जाता था और पाठ पढ़ने के लिए जगह नहीं बचती थी।
1: शंकर की प्रारंभिक शिक्षा कायमकुलम के स्थानीय स्कूल में हुई। वे पढ़ाई में औसत दर्जे के छात्र थे। गणित उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन इतिहास और भूगोल में उनकी रुचि थी, क्योंकि इन विषयों में चित्र और नक्शे होते थे। स्कूल के शिक्षक उनसे परेशान रहते थे, क्योंकि वे कक्षा में ध्यान ही नहीं देते थे। एक बार संस्कृत के शिक्षक पाठ पढ़ा रहे थे और शंकर अपनी कॉपी में कुछ बना रहे थे। शिक्षक ने गुस्से में कॉपी छीन ली, लेकिन जब उन्होंने देखा कि शंकर ने उनका ही एक बेहद सटीक कार्टून बनाया है, जिसमें वे संस्कृत श्लोक बोलते हुए दिख रहे हैं, तो वे हंसे बिना नहीं रह सके। उस दिन के बाद वे शिक्षक शंकर को प्यार से छोटे चित्रकार कहने लगे।
2: जी हाँ, और स्कूल में शिक्षक के कुछ करीबी दोस्त थे जो उनकी कला के बेहद प्रशंसक थे। वे अक्सर शंकर से अपने चित्र बनवाते और अपने घर ले जाकर रखते थे। धीरे धीरे पूरे स्कूल में शंकर की प्रतिभा की चर्चा होने लगी। 10वीं कक्षा में एक और महत्वपूर्ण घटना घटी। स्कूल में वार्षिक उत्सव था और प्रतियोगिता भी रखी गई थी, जिसमें विद्यार्थियों को महात्मा गांधी का चित्र बनाना था। शंकर ने जो चित्र बनाया वो इतना जीवंत था कि देखने वालों को लगा जैसे गांधी जी खुद वहां खड़े हों। उन्हें प्रथम पुरस्कार भी मिला और स्कूल के प्रधानाचार्य ने कहा, ये लड़का एक दिन देश का नाम रोशन करेगा।
1: हाई स्कूल पूरा करने के बाद शंकर ने त्रावणकोर के महाराजा कॉलेज में दाखिला लिया। ये केरल का एक प्रतिष्ठित कॉलेज था। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, इसलिए शंकर को छात्रवृत्ति मिली थी, लेकिन ये भी पर्याप्त नहीं थी और उन्हें बहुत कठिनाई से अपना खर्च चलाना पड़ता था। कॉलेज में शंकर ने बीए में दाखिला लिया, लेकिन उनका मन पढ़ाई में कम और चित्रकारी में ज्यादा लगता था। वे कक्षाओं में बैठकर प्रोफेसरों के कार्टून बनाते रहते। एक बार इतिहास के प्रोफेसर पढ़ा रहे थे और शंकर उनका चित्र बना रहे थे। प्रोफेसर ने पूछा, शंकर मैं क्या पढ़ा रहा हूं? शंकर खड़े हो गए और बोले, सर मुगल साम्राज्य के बारे में। प्रोफेसर ने कहा, अच्छा तो तुम सुन रहे हो, लेकिन तुम्हारे हाथ में क्या है? शंकर ने झिझकते हुए अपनी कॉपी दिखाई। प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए कहा, कला अच्छी है, लेकिन परीक्षा में ये नहीं चलेगा।
2: जी हाँ, बिल्कुल। कॉलेज के दिनों में शंकर को अपनी आर्थिक स्थिति से भी बहुत जूझना पड़ा था। कई बार उनके पास किताबें खरीदने के भी पैसे नहीं होते थे। वे दोस्तों से किताबें उधार लेते और पूरी रात जाग कर पढ़ते थे। खाने पीने में भी कटौती करनी पड़ती थी। कभी कभी तो केवल चाय और बिस्किट से ही उनका दिन गुजरता था। लेकिन इन कठिनाइयों ने शंकर की हिम्मत नहीं तोड़ी। उन्होंने कॉलेज की पत्रिका के लिए चित्र बनाने शुरू कर दिए। कॉलेज के वार्षिक समारोह के पोस्टर भी वे बनाते थे और धीरे धीरे उनकी ख्याति फैलने लगी।
1: एक दिन कॉलेज के प्रिंसिपल ने उन्हें बुलाया और कहा, शंकर तुम्हारी कला अद्भुत है, लेकिन तुम्हें अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देना होगा, नहीं तो डिग्री कैसे मिलेगी? शंकर ने जवाब दिया, सर मुझे लगता है कि कला ही मेरा असली विषय है, मैं इसी में अपना भविष्य बनाना चाहता हूँ। अंततः शंकर ने अपनी डिग्री तो पूरी कर ली, लेकिन उनके मन में स्पष्ट था कि उन्हें एक कलाकार बनना है, किसी ऑफिस में बाबू नहीं। 1920 के दशक के अंत में जब शंकर की उम्र लगभग 25-26 साल की थी, उन्होंने एक साहसिक निर्णय लिया। उन्होंने गांव और परिवार को छोड़कर मुंबई जाने का फैसला लिया। उस समय मुंबई भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक शहर था और यहाँ अवसरों की कमी नहीं थी।
2: लेकिन ये निर्णय इतना आसान नहीं था। उनके पिता चाहते थे कि शंकर कोई सरकारी नौकरी कर ले और परिवार को आर्थिक सहारा दे। माँ को डर था कि बड़े शहर में उनका भोला भाला बेटा कैसे रहेगा, लेकिन शंकर ने अपने सपनों को पूरा करने की तो ठान ली थी।
3: ए दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान।
2: मुंबई पहुँचने पर शंकर के पास बहुत कम पैसे थे। वे दादर के एक छोटे से कमरे में रहने लगे, जहाँ तीन और लोग रहते थे। कमरा इतना छोटा था कि चारों लोगों के बिस्तर फर्श पर एक के बाद एक लगाने पड़ते थे। शुरुआती दिन बेहद कठिन थे। शंकर को रोजगार नहीं मिल रहा था। उन्होंने कई जगहों पर अपने चित्र दिखाए, लेकिन किसी ने भी उन्हें उस वक्त काम नहीं दिया।
1: एक समय ऐसा आया जब उनके पास खाने के पैसे भी नहीं बचे। उन दिनों की याद करते हुए शंकर ने बाद में कहा था, मुंबई की सड़कों पर मैंने भूख का असली मतलब समझा। लेकिन हर भूखी रात के बाद मुझे लगता था कि अगली सुबह जरूर कुछ बेहतर होगा। जब हालात बहुत बिगड़े तो शंकर को जीवन चलाने के लिए कोई भी काम करना पड़ा। उन्होंने पहले एक कपड़ा मिल में क्लर्क की नौकरी की। काम बहुत नीरस था, रोज लेजर में आंकड़े दर्ज करने होते थे, लेकिन वेतन नियमित मिलता था और कम से कम पेट भर भोजन तो हो ही जाता था।
2: जी हाँ, और मिल में काम करते हुए भी शंकर ने अपनी कला का अभ्यास जारी रखा। शाम को काम के बाद वे अपने छोटे से कमरे में घंटों स्केच बनाते रहते थे। वे मुंबई की सड़कों पर घूमते, लोगों को देखते और उनके चेहरों को अपनी ड्राइंग बुक में उतारते थे। इसके बाद उन्होंने रेलवे में भी कुछ समय काम किया। ये नौकरी थोड़ी बेहतर थी क्योंकि इसमें कभी कभार यात्रा करने का मौका मिलता था। ट्रेन में बैठकर शंकर विभिन्न यात्रियों के चित्र बनाते। किसान, व्यापारी, छात्र, बुजुर्ग, महिलाएं, हर चेहरे में एक कहानी होती थी और शंकर उस कहानी को पकड़ने की पूरी कोशिश करते थे।
1: 1932 का साल शंकर के जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ बना। एक दिन उन्होंने मुंबई के प्रसिद्ध अखबार द फ्री प्रेस जर्नल के दफ्तर जाने का साहस किया। उन्होंने अपने कुछ बेहतरीन कार्टून एक फाइल में रखे और संपादक से मिलने की इच्छा जताई।
2: रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें टालने की पूरी कोशिश की, लेकिन शंकर ने हिम्मत नहीं हारी। वे पूरे दिन वहां बैठे रहे। शाम को जब संपादक बाहर निकले तो शंकर ने उनके सामने अपनी फाइल रख दी।

0: समझा और एक शानदार कार्टून बनाया जिसमें म्यूनिसिपल कमिश्नर को प्यासे मुंबई वासियों से घिरे हुए दिखाया गया था, जबकि कमिश्नर खुद नारियल पानी पी रहे थे।
1: क्या बात है। और जब शंकर ये कार्टून लेकर गए तो संपादक बेहद प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, बधाई हो शंकर, तुम्हारा ये कार्टून कल के अखबार में छपेगा। और अगले दिन जब शंकर ने अपना पहला प्रकाशित कार्टून देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। वर्षों के संघर्ष के बाद उनकी मेहनत रंग ला रही थी। द फ्री प्रेस जर्नल में शंकर के कार्टून नियमित रूप से छपने लगे। शुरुआत में उन्हें प्रति कार्टून कुछ रुपए मिलते थे, जो उनकी रेलवे की नौकरी से ज्यादा नहीं थे, लेकिन संतुष्टि उन्हें बहुत मिलती थी।
0: धीरे धीरे शंकर के कार्टून मुंबई में चर्चा का विषय बनने लगे। लोग सुबह अखबार खोलते और सबसे पहले शंकर का कार्टून देखते। उनके कार्टूनों में समाज की विसंगतियां, राजनीतिक पाखंड और ब्रिटिश शासन की नीतियों पर तीखा व्यंग होता था। 1930 के दशक में भारत में स्वतंत्रता आंदोलन अपने चरम पर था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। शंकर ने अपनी कला को इस राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा। उनके कार्टून ब्रिटिश शासन के अत्याचारों को उजागर करते थे।
1: जी हाँ, और एक बार तो उन्होंने एक कार्टून बनाया जिसमें ब्रिटिश वायसराय को एक विशाल हाथी के रूप में दिखाया गया था, जो भारत के गरीब किसानों को कुचल रहा था। ये कार्टून इतना प्रभावशाली था कि ब्रिटिश अधिकारियों ने अखबार के संपादक को धमकी तक दे दी, लेकिन संपादक ने शंकर का साथ दिया और कहा कि कला की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। कॉमन मैन का जन्म एक ऐतिहासिक पल। 1930 के दशक के मध्य में शंकर ने अपने सबसे प्रसिद्ध कार्टून चरित्र कॉमन मैन की रचना की। ये विचार उन्हें कैसे आया, इसके बारे में भी एक बेहद दिलचस्प कहानी है।
0: एक दिन शंकर मुंबई की सड़क पर चल रहे थे। उन्होंने देखा एक साधारण आदमी धोती कुर्ता पहने, चश्मा लगाए, थोड़ा गंजा, बस स्टॉप पर खड़ा बस का इंतजार कर रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था, न खुशी न गम, बस एक शांत स्वीकृति कि जो होना है वो होगा। शंकर ने सोचा कि ये चेहरा तो करोड़ों भारतीयों का चेहरा है, वो आम आदमी जो हर रोज संघर्ष करता है, सरकारी दफ्तरों में धक्के खाता है, महंगाई से परेशान होता है, राजनेताओं के वादे सुनता है, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारता।
1: बिल्कुल। जब शंकर ने पहली बार इस चरित्र को कार्टून में इस्तेमाल किया तो पाठकों की प्रतिक्रिया अद्भुत थी। लोगों ने लिखा, ये तो मैं हूँ, ये मेरे पिता हैं। और कईयों ने लिखा, ये तो हर भारतीय है। कॉमन मैन भारत के आम आदमी का प्रतीक बन गया। शंकर के हर कार्टून में ये चरित्र किसी न किसी रूप में दिखाई देता। कभी महंगाई से परेशान, कभी भ्रष्ट नेताओं से पिसता, कभी सरकारी योजनाओं का इंतजार करता और कभी अपने बच्चों के भविष्य की चिंता में डूबा हुआ।
0: आज 80 साल बाद भी कॉमन मैन भारतीय कार्टून का सबसे पहचाना जाने वाला चरित्र है। जैसे जैसे शंकर की ख्याति बढ़ी, अन्य अखबारों ने भी उन्हें काम के लिए बुलाया। 1948 से पहले शंकर ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए भी काम करना शुरू किया। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर कार्टून बनाए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उनके कार्टून बहुत चर्चित रहे। हिटलर, मुसोलिनी, चर्चिल सभी शंकर के कार्टूनों में नजर आते थे।
1: बिल्कुल, लेकिन शंकर का असली फोकस भारत की समस्याओं पर था। गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, अशिक्षा, ये सब उनके कार्टूनों के विषय थे, लेकिन उनके कार्टून कभी नकारात्मक नहीं होते थे। उनमें हमेशा एक आशा की किरण होती थी, एक विश्वास की भारत बेहतर होगा। 1940 के दशक में जब भारत स्वतंत्रता के करीब पहुंच रहा था, शंकर के कार्टून और भी तीखे और प्रभावशाली हो गए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके कार्टून ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक मौन लेकिन शक्तिशाली हथियार बन गए थे।
0: महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल जैसे नेता शंकर के कार्टूनों की सराहना करते थे। गांधी जी ने एक बार कहा था, शंकर का कार्टून हजार शब्दों से ज्यादा प्रभावी है।
1: और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। ये शंकर के जीवन का भी एक नया अध्याय था। उन्होंने सोचा कि अब उन्हें अपनी एक पत्रिका शुरू करनी चाहिए जो पूरी तरह से कार्टून और व्यंग पर आधारित हो। इसके लिए पैसों की जरूरत थी। शंकर ने अपनी कुछ जमा पूंजी लगाई और कुछ मित्रों से उधार ले लिया। 1948 में उन्होंने शंकर्स वीकली नामक साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत कर दी। पहला अंक छपा तो शंकर की धड़कनें और तेज हो गईं। क्या लोग इसे पसंद करेंगे, क्या ये बिकेगी? उनकी सारी पूंजी दांव पर लगी थी,
0: लेकिन उनकी चिंता निराधार निकली। पहला अंक हाथों हाथ बिक गया। लोगों ने इसकी जमकर तारीफ की, अखबारों में समीक्षाएं छपी। एक नई तरह की पत्रिका, व्यंग का अद्भुत नमूना, शंकर ने भारतीय पत्रकारिता में नया अध्याय जोड़ा। शंकर्स वीकली जल्दी ही भारत की सबसे लोकप्रिय पत्रिकाओं में से एक बन गई। हर सप्ताह लाखों लोग इसका इंतजार करते थे। पत्रिका केवल कार्टून नहीं थी, इसमें राजनीतिक व्यंग, सामाजिक टिप्पणी, कहानियां, कविताएं और बच्चों के लिए एक अलग ही सेक्शन होता था।
1: और पत्रिका का एक विशेष आकर्षण यू सेड इट कॉलम था, जिसमें प्रसिद्ध लोगों के विरोधाभासी बयानों को एक साथ रखकर व्यंग किया जाता था। राजनेता जो आज कुछ कहते थे और कल उसके उलट बोलते थे, उनके दोनों बयान को एक साथ छापा जाता था। ये बेहद लोकप्रिय था और राजनेताओं को सावधान रहने पर मजबूर भी करता था। पत्रिका में नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, मुरारजी देसाई सभी के कार्टून छपते थे, लेकिन शंकर का व्यंग कभी व्यक्तिगत नहीं होता था। वे नीतियों और कार्यों पर टिप्पणी करते थे, व्यक्तियों पर हमला नहीं करते थे।
0: पंडित जवाहरलाल नेहरू और शंकर पिल्लई के बीच एक अनोखा रिश्ता था। नेहरू शंकर के कार्टूनों के बड़े प्रशंसक थे, हालांकि उनमें अक्सर खुद नेहरू का मजाक बनाया जाता था। एक बार शंकर ने एक कार्टून बनाया जिसमें नेहरू को दिखाया गया था कि वे एक साथ बहुत सारी चीजें संभालने की कोशिश कर रहे हैं और सब कुछ उनके हाथ से गिर रहा है। ये उनकी अति व्यस्तता पर व्यंग था। जब ये कार्टून छपा तो नेहरू के कुछ करीबी सहयोगियों ने उन्हें शिकायत की कि शंकर बहुत ज्यादा आजादी ले रहे हैं, लेकिन नेहरू ने हंसते हुए कहा, शंकर बिल्कुल सही कह रहा है, मैं वाकई बहुत सारी चीजें एक साथ करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसका कार्टून मुझे याद दिलाता है कि मुझे प्राथमिकताएं तय करनी चाहिए।
1: जी हाँ, और एक और दिलचस्प किस्सा है। एक बार नेहरू ने शंकर को तीन मूर्ति भवन प्रधानमंत्री निवास में बुलाया। शंकर घबराए हुए थे कि शायद किसी कार्टून पर आपत्ति होगी, लेकिन नेहरू ने मुस्कुराते हुए कहा, शंकर, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है क्योंकि मुझे तुम्हारे कुछ कार्टून बहुत पसंद आए हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम उनकी मूल प्रतियां मुझे दे दो, मैं उन्हें अपने कमरे में लगाना चाहता हूँ। क्या था, शंकर हैरान रह गए। प्रधानमंत्री अपने ही मजाक उड़ाने वाले कार्टून अपने कमरे में लगाना चाहते हैं। नेहरू ने समझाया, ये कार्टून मुझे याद दिलाते हैं कि मैं भी एक साधारण इंसान हूँ और आम लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं।
0: शंकर भी नेहरू के विजन की सराहना करते थे, हालांकि उनके कार्टूनों में नेहरू की आलोचना जारी रहती थी। नेहरू जी की मृत्यु के बाद शंकर ने एक बहुत मार्मिक कार्टून बनाया जिसमें कॉमन मैन नेहरू की तस्वीर के सामने सिर झुकाए खड़ा था और आंखों में आंसू थे। कैप्शन था, गुरु चला गया। ये कार्टून देखकर करोड़ों भारतीयों की आंखें नम हो गई।
1: शंकर ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा संगठन बनाया जाए जो बच्चों के लिए सस्ती और अच्छी किताबें प्रकाशित करे। साल 1957 में उन्होंने चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट CBT की स्थापना की। शुरुआत में काफी मुश्किलें आईं। प्रकाशक कहते थे कि बच्चों की किताबों में पैसा नहीं है, लेकिन शंकर ने तब भी हार नहीं मानी। उन्होंने खुद पैसा लगाया और पहले किताबें प्रकाशित की।
0: CBT की किताबें रंगीन और आकर्षक होती थीं। कहानियां भारतीय संस्कृति और मूल्यों पर आधारित होती थी। कीमत इतनी कम रखी जाती थी कि मध्यम वर्ग का बच्चा भी खरीद सके। धीरे धीरे CBT की किताबें लोकप्रिय हो गईं। आज CBT ने 3000 से ज्यादा किताबें प्रकाशित की हैं और करोड़ों बच्चों तक पहुंची हैं।
1: शंकर खुद भी बच्चों के लिए कहानियां लिखते थे और चित्र बनाते थे, लेकिन शंकर का सबसे बड़ा सपना था बच्चों के लिए एक ऐसी जगह बनाना जहां वे अपनी रचनात्मकता को खुलकर अभिव्यक्त कर सकें, जहां वे कला, संगीत, नृत्य, थिएटर सीख सकें, जहां कोई परीक्षा ना हो, कोई नंबर ना हो, बस सीखने का आनंद हो।
0: 1 नवंबर 1961 को बाल भवन का उद्घाटन हुआ। नेहरू खुद इस कार्यक्रम में आए। उन्होंने अपने भाषण में कहा, शंकर ने जो काम किया है वो केवल एक इमारत बनाना नहीं है, उन्होंने बच्चों के सपनों के लिए एक घर बनाया है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ से निकलने वाला हर बच्चा एक बेहतर इंसान बनेगा।
1: बिल्कुल, और बाल भवन में विभिन्न विभाग थे, आर्ट, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, साइंस और फोटोग्राफी। बच्चे शाम को स्कूल के बाद यहाँ आते और अपनी रुचि की चीजें सीखते थे। शंकर खुद अक्सर बाल भवन आते थे। वे बच्चों से बातचीत करते, उनके चित्र देखते और उन्हें प्रोत्साहित करते। कई बच्चे जो आज सफल कलाकार हैं, उन्हें याद है कि कैसे शंकर अंकल ने उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा था, बहुत अच्छा बनाया है, ऐसे ही बनाते रहो। बाल भवन की ये सफलता के बाद देश भर में 25 से ज्यादा शहरों में बाल भवन खोले गए। आज भी ये संस्थाएं लाखों बच्चों को कला और शिक्षा दे रही हैं।
0: शंकर ने एक और महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने 14 नवंबर को नेहरू के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाने का विचार दिया। नेहरू जी की मृत्यु के बाद 1964 में शंकर ने सुझाव दिया, क्योंकि नेहरू को बच्चों से बहुत प्यार था। ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और तब से हर साल 14 नवंबर को भारत में बाल दिवस मनाया जाता है। इस दिन स्कूलों में विशेष कार्यक्रम होते हैं, बच्चों के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं।
1: शंकर्स वीकली में हर साल बाल दिवस पर एक विशेष अंक निकलता था, जिसमें बच्चों की रचनाएं, कहानियां, चित्र छापे जाते थे। देश भर के बच्चे अपनी रचनाएं भेजते थे और चुनी गई रचनाएं पत्रिका में प्रकाशित होती थीं। किसी बच्चे के लिए शंकर्स वीकली में छपना बहुत बड़ी उपलब्धि होती थी। शंकर के व्यक्तिगत जीवन के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि वे अपने निजी जीवन को मीडिया से दूर रखते थे। उनका विवाह केरल की एक शिक्षित महिला से हुआ था। उनकी पत्नी बहुत संयमी और समझदार थी, जो शंकर के काम को समझती थी।
0: उनकी बेटियों को याद है कि कैसे पिता रविवार की शाम को उनके साथ बैठते और उन्हें चित्र बनाना सिखाते थे। वे बच्चों को कभी दबाव नहीं डालते थे कि वे भी कलाकार बने, बल्कि उन्हें अपनी रुचि के अनुसार करियर चुनने की आजादी देते थे। एक रोचक बात, शंकर घर पर बहुत सादा जीवन जीते थे। उनके पास महंगी गाड़ी नहीं थी, ना ही बड़ा बंगला। वे दिल्ली के एक साधारण इलाके में मध्यम आकार के घर में रहते थे। उनकी पत्नी रसोई में खुद ही खाना बनाती थीं।
1: शंकर अक्सर देर रात तक काम करते थे और सुबह देर से उठते थे। उनकी पत्नी को ये आदत बहुत परेशान करती थी, लेकिन वो जानती थी कि रात का वो समय जब घर में शांति होती थी, शंकर के लिए सबसे रचनात्मक समय था। शंकर केवल एक कलाकार नहीं थे, वे एक सामाजिक चिंतक भी थे। उन्हें समाज की समस्याओं की गहरी समझ थी। उन्होंने कॉमन मैन को सरकारी दफ्तरों में धक्के खाते हुए अनगिनत बार देखा था और दिखाया भी था।
0: शंकर जातिवाद और सांप्रदायिकता के खिलाफ थे। 1947 के भारत पाकिस्तान विभाजन के समय हुए दंगों ने उन्हें बहुत दुखी किया। उन्होंने कई मार्मिक कार्टून बनाए। महिला सशक्तिकरण में भी उनका विश्वास था। उनके कार्टूनों में महिलाएं कमजोर नहीं दिखाई जाती थीं। उन्होंने कई बार समाज में महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव पर कार्टून बनाए।
1: व्यक्तिगत रूप से शंकर बेहद विनम्र और सरल इंसान थे। उन्हें कोई अहंकार नहीं था। युवा कलाकार जब उनसे मिलने आते तो वे बहुत प्यार से मिलते और उन्हें मार्गदर्शन देते। 1960 और 70 के दशक में शंकर ने विभिन्न देशों की यात्राएं भी की। उन्हें कई अंतर्राष्ट्रीय कार्टूनिस्ट सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए बुलाया भी जाता था।
0: उन्होंने अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और एशिया के कई देशों का दौरा किया। हर जगह उनके कार्टूनों की प्रदर्शनी लगाई गई। विदेशी कलाकार उनकी शैली से बहुत प्रभावित होते थे। एक बार लंदन में एक प्रदर्शनी के दौरान एक अंग्रेज कार्टूनिस्ट ने शंकर से कहा, तुम्हारे कार्टून में जो गर्माहट और मानवीयता है, वो पश्चिमी कार्टूनों में नहीं होती। तुम लोगों पर व्यंग करते हो, लेकिन नफरत नहीं फैलाते।
1: तब शंकर ने जवाब दिया था, ये भारतीय संस्कृति का असर है। हम समस्याओं को दिखाते हैं, लेकिन व्यक्तियों से नफरत नहीं करते। हमारा मकसद सुधार लाना है, ना कि किसी को नीचा दिखाना। विदेश यात्राओं के दौरान शंकर ने कई प्रसिद्ध हस्तियों से मुलाकात भी की। उन्होंने ब्रिटेन की महारानी, अमेरिकी राष्ट्रपति, विभिन्न प्रधानमंत्रियों और कई प्रसिद्ध कलाकारों से मुलाकात की, लेकिन इन मुलाकातों के बावजूद उनमें कोई अहंकार कभी नहीं आया।
0: एक दिलचस्प घटना है, 1965 में उन्हें मॉस्को में एक अंतर्राष्ट्रीय कार्टून प्रतियोगिता में जूरी सदस्य के रूप में आमंत्रित किया गया। वहां दुनिया भर के 50 देशों से कार्टूनिस्ट आए थे। शंकर भारत के प्रतिनिधि थे। प्रतियोगिता में एक युवा रूसी कार्टूनिस्ट ने बहुत प्रभावशाली काम प्रस्तुत किया। जब पुरस्कार की घोषणा हुई तो कुछ पश्चिमी जजों ने उस रूसी कलाकार को पुरस्कार देने में आपत्ति जताई, क्योंकि वे सोवियत यूनियन के थे और शीत युद्ध का दौर था। बाद में उस कलाकार ने शंकर से मिलकर कहा, आपने मेरे लिए न्याय किया, मैं आपका आभारी हूं। शंकर ने जवाब दिया, मैंने कोई एहसान नहीं किया, मैंने सिर्फ सही किया।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने। स्वतंत्रता के बाद के दशकों में शंकर ने भारतीय राजनीति पर लगातार व्यंग किए। पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर आपातकाल तक हर महत्वपूर्ण घटना पर उनके कार्टून छपते थे। 1962 के चीनी आक्रमण पर उनके कार्टून बेहद प्रभावशाली थे। उन्होंने भारत की तैयारियों की कमी और सरकार की लापरवाही को दिखाया, लेकिन साथ ही भारतीय सैनिकों के साहस की भी सराहना की।
0: 1977 में जब आपातकाल खत्म हुआ और चुनाव हुए तो शंकर ने एक यादगार कार्टून बनाया, जिसमें कॉमन मैन को मतपेटी के सामने खड़े दिखाया गया था और उसके चेहरे पर संकल्प का भाव था। कैप्शन था, अब मेरी बारी है। ये कार्टून लोकतंत्र की विजय का प्रतीक बन गया।
1: बिल्कुल। और आर के लक्ष्मण, जो आगे चलकर भारत के सबसे प्रसिद्ध कार्टूनिस्टों में से एक बने, शंकर के ही मार्गदर्शन में आगे बढ़े थे। लक्ष्मण अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, शंकर मेरे गुरु थे। उन्होंने मुझे सिखाया कि कार्टून केवल मजाक नहीं है, ये समाज का दर्पण है। अब्बू अब्राहम, मारियो मिरांडा जैसे कई प्रसिद्ध कार्टूनिस्टों ने शंकर से प्रेरणा ली। शंकर का स्टूडियो युवा कलाकारों के लिए हमेशा खुला रहता था, कोई भी आकर अपना काम वहां दिखा सकता था।
0: शंकर अक्सर कहते थे, प्रतिभा तो बहुत लोगों में होती है, लेकिन मेहनत और निरंतरता से ही सफलता मिलती है, और सबसे जरूरी है ईमानदारी। अपनी कला के प्रति ईमानदार रहो। शंकर को उनके जीवन काल में कई सम्मान मिले, लेकिन वे इन सम्मानों को अपनी उपलब्धि नहीं बल्कि कला की महत्ता के रूप में देखते थे। 1966 में उन्हें भारत सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया। ये भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने शंकर से कहा, आपने कला के माध्यम से समाज को दर्पण दिखाया है। यह सम्मान केवल आपकी कला के लिए नहीं बल्कि आपके सामाजिक योगदान के लिए भी है।
1: और तब शंकर ने विनम्रता से जवाब दिया, महोदय ये सम्मान केवल मेरा नहीं है, ये उन करोड़ों कॉमन मैन का है जिनकी आवाज में अपने कार्टून के जरिए उठाने की कोशिश करता हूँ। साल 1974 में उन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया, जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। हालांकि उन्हें ये पुरस्कार नहीं मिला, लेकिन नामांकन ही उनकी प्रतिष्ठा का प्रमाण था।
0: 1980 के दशक में शंकर की उम्र 80 के पार हो चुकी थी, लेकिन उनका उत्साह कम नहीं हुआ था। वे अभी भी नियमित रूप से कार्टून बनाते थे, बाल भवन जाते थे और युवा कलाकारों से मिलते थे। हालांकि उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। 1989 में उन्हें कई बार अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, लेकिन अस्पताल में भी वे अपनी स्केच बुक साथ में रखते। एक बार उनके डॉक्टर ने उनसे कहा, आप अब आराम कीजिए, इतनी उम्र में भी आप काम कर रहे हैं। शंकर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, डॉक्टर साहब, कला करना मेरे लिए काम नहीं है, ये मेरी सांस है, जब तक सांस है तब तक कला रहेगी।
1: और वो दिन 26 दिसंबर 1989 की शाम, जब शंकर ने अपनी अंतिम सांस ली, उनकी मृत्यु की खबर फैलते ही पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। अखबारों में श्रद्धांजलि छपी। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और देश भर के लोगों ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा, शंकर जी ने अपनी कला से भारतीय लोकतंत्र को मजबूत किया। उनका कॉमन मैन हमेशा हमें याद दिलाता रहेगा कि सरकार किसके लिए है। आज देश भर में 25 से ज्यादा शहरों में बाल भवन है जो लाखों बच्चों को कला की शिक्षा दे रहे हैं। दिल्ली का बाल भवन आज भी सक्रिय है और हर साल हजारों बच्चे वहाँ आते रहते हैं।
0: CBT आज भी बच्चों के लिए किताबें प्रकाशित कर रहा है। 60 साल में इसने 3000 से ज्यादा किताबें प्रकाशित की हैं, जो 100 से ज्यादा भाषाओं में उपलब्ध है। हालांकि शंकर्स वीकली अब प्रकाशित नहीं होती, लेकिन इसने भारतीय व्यंग पत्रकारिता की नींव रखी। आज के कई व्यंग कार्यक्रम और पत्रिकाएं शंकर्स वीकली से प्रेरित है।
1: आज के कई प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट शंकर को अपना प्रेरणा स्रोत बताते हैं। उनकी शैली, सरल रेखाएं, गहरा संदेश और मानवीय स्पर्श आज भी कलाकारों को बेहद प्रभावित करता है।
0: के शंकर पिल्लई का जीवन एक साधारण केरल के लड़के से लेकर भारत के सबसे प्रतिष्ठित कार्टूनिस्ट और समाज सेवक बनने की अद्भुत यात्रा है। उन्होंने साबित किया कि कला केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि समाज को जागरूक करने और बदलाव लाने का शक्तिशाली माध्यम है। बचपन में दीवारों पर कोयले से चित्र बनाने वाला वो बच्चा जिसकी मां चिंतित रहती थी कि ये शौक पढ़ाई में बाधा न बन जाए, आखिरकार देश का गौरव बन गया।
1: जी हाँ, मुंबई की सड़कों पर भूखे पेट घूमने वाला वो युवक जिसने कभी हार नहीं मानी, आजाद भारत की आवाज बन गया। वो कलाकार जिसने अपने कॉमन मैन के जरिए करोड़ों भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया, आज भी हर भारतीय के दिल में जिंदा है। शंकर पिल्लई केवल एक कार्टूनिस्ट नहीं थे, वे एक दूरदर्शी, एक शिक्षक, एक समाज सुधारक और सबसे बढ़कर एक अच्छे इंसान थे, जो अपने देश और उसके लोगों से बेइंतहा प्यार करते थे।
0: उनका जीवन हमें सिखाता है कि सपने देखो, मेहनत करो, अपने प्रतिभा को समाज की सेवा में लगाओ और कभी भी अपने मूल्यों से समझौता मत करो। आज भी जब हम कॉमन मैन को देखते हैं, हमें शंकर की याद आती है। वो महान कलाकार जिसने अपनी कला से लाखों दिलों को छुआ और भारतीय लोकतंत्र को मजबूत किया। कला जीवन का दर्पण है और कलाकार समाज का प्रहरी। के शंकर पिल्लई। श्रोताओं, तो आज हमने प्रस्तुत कार्यक्रम भारत विभूति में चर्चा की के शंकर पिल्लई जी के बारे में। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, लेखक अखिलेश कुमार वर्मा और मैं था आपका दोस्त दीपक नेमा।
1: मैं आपके साथ डॉक्टर रानी रैकवार भारती।
0: तो दोस्तों, सुनते रहिए 90.8 रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। नमस्कार।
2: आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे। ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर 90.8 मेगाहर्ट्ज़। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: आइए चलते हैं कुछ पलों के लिए टैगोर नाट्य महोत्सव में।
1: अरे वो जानता था कि ये ठीक नहीं है, शायद दोनों को पाना संभव नहीं, पर फिर भी वो शर्मिष्ठा का साथ चाहता था। एक अजीब मीठी सी कसर उसके मन में घर कर गई थी।
2: अगली सुबह स्टेशन पर राजकिशोर जी और सुनंदा जी के साथ वो भी आई, उन्हें सी ऑफ कर दी और गाड़ी आने तक वो सुरेखा से ही बातें करती रही। और जब दूर क्षितिज पर गाड़ी का इंजन दिखा तो वो सौमित्र के पास गई और बोली,
3: कब आएंगे?
1: आप कभी तो अपनी रुक जाएं। जब आप बुलाएंगे?
3: बुलिएगा नहीं, जल्दी आइएगा।
1: गाड़ी में से हाथ खिलाते हुए सुमित्र ने देखा कि शर्मिष्ठा अपनी आंखों के कोर में आए आंसू पोंछ रही थी। कि आंसू किसके लिए थे, सुमित्र के लिए या सुरेखा के लिए? शर्मिष्ठा उसका मन गहरी उदासी से भर आया।
3: राजनगर से बटा हुआ मन लेकर वापस हुआ, उसमें सुरेखा का सहज आत्मीय प्यार था तो शर्मिष्ठा का गहरा आवेग भी। सुरेखा की शांत स्नेहिलता थी तो शर्मिष्ठा की उष्ण चंचलता भी। और सुरेखा के साथ धरती पर रहने की आकांक्षा थी तो शर्मिष्ठा के साथ नीले आकाश में उड़ने की इच्छा भी।
2: उसका किसी काम में मन नहीं लगता, वो शर्मिष्ठा के बारे में सोचता रहता। सुरेखा के लिखे पत्रों में वो खोजता क्या, उसके बारे में कुछ पूछा? और आखिर लंबे खत के बाद सौमित्र कैसे हैं?
4: अरे शर्मिष्ठा के फोन आने पर वो उसके इर्द गिर्द ही घूमता रहता था ताकि उसे भी बात करने का मौका मिले। और जब सुनंदा उसे कहती कि शर्मिष्ठा तुम्हारे बारे में पूछ रही थी तो उसका मन बलियों उछलने लगता था।
5: अरे सुनो, उसने राजनगर ट्रिप का एक फोटो जिसमें वो सुरेखा और शर्मिष्ठा समित के समुद्र किनारे खड़े हुए हैं अपने ऑफिस की ड्रॉर के अंदर छुपा के रखा हुआ है। और रोजाना, हाँ सही कह रहा हूँ, रोजाना कम से कम एक बार तो निकाल कर उसे देख ही लेता है। इस पर उसका ये मन कहता उससे,
4: दिस इज मैडनेस, ये पागलपन है।
2: सो व्हाट, मुझे अच्छा लग रहा है।
4: अरे तो तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा।
2: क्या पता कुछ हासिल हो ही जाए,
4: तो एक बार फोन करके बात कर लो, बात आसान हो जाए।
2: अरे ऐसी भी क्या जल्दी है,
4: चलो बाहर में जाओ।
3: शर्मिष्ठा आ रही है।
4: हैं? अच्छा बात, कैसे?
3: कैसे क्या, हम से मिलने आ रही है। बहुत दिनों से कह रही थी तुम्हारी याद आ रही, मैंने कहा आ जाओ एक दो दिन साथ में। सुनो तुम दो एक दिन की छुट्टी ले लेना, कहीं घूमने चलेंगे।
4: दो एक दिन की छुट्टी क्या, मैं तो पूरे 15 दिन की छुट्टी ले रहा हूँ। हाँ, देखते हैं देखते।
3: मैं नहा कर आती हूँ।

0: अगले दिन टूर का बहाना करके वो शहर से बाहर चला गया और कुछ महीनों तक वो ऐसा ही करता रहा। उसके मन में अजब सा तूफान मचा था और अगर ऐसा था तो फिर वो समझ क्यों नहीं पाया।
1: आखिर वो कह तो ठीक ही रही, उसे खुद कोई भ्रम नहीं पालना चाहिए था।
0: तो भी पर वो फिर खुद क्यों आगे बढ़ी?
1: क्या बात कर रहे हो, वो कब आगे बढ़ी? सीवा दशमी नॉर्मल प्रवाह में और प्रसन्न से तुम ही लोग उसमें आप निकाल।
0: जो भी पर अब ये अफसाद कैसे हटे, कैसे हटे?
1: तुम्हें शुरू में ही कहा था भागो मत, गिरोगे।
0: कई बार खुद की बात मानने का मन नहीं करता है, सीमा रेखा तोड़ने की क्या होती है।
1: कुनाक में भी तुम्हें चेताया था
0: पर मना भी तो नहीं किया था।
1: अब इससे क्या फायदा, अब तो मना भी कर दिया।
0: मैं भी कठोरता बरतू?
1: नहीं कठोरता नहीं, याद करो वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोर देकर

0: वो अगले 20 सालों तक शर्मिष्ठा से नहीं मिला। सुलेखा कभी कहती थी कि शर्मिष्ठा का फोन आया था तो मैं याद कर रही थी तो वो टाल जाता। एक आध बार जब वो इंदौर आई तो स्वामी से टूर पर चला गया और तब तक नहीं लौटा जब तक वो वापस नहीं चली गई।
1: लौटते हुए राजनगर धो आना, मुझे उसे देखने की बहुत मन कर रहा।
2: तो भी साथ चलो ना।
1: मेरा जाना नहीं हो पाएगा, बच्चों की परीक्षा है। तुम जाओ, आकर मुझे खबर दे देना, फिर कभी साथ चलेंगे।
2: ठीक है, मैं तो कलकत्ता जा ही रहा हूँ, लौटते समय एक दो दिन राजनगर होता हूँ। और
0: आज अचानक उसे बहुत तीव्रता से शर्मिष्ठा की याद आई और पूरा घटनाक्रम एक चलचित्र की तरह उसकी आंखों के सामने से गुजर गया। सौमित्र के मन में पीड़ा की एक लहर सी उठी।
3: उसे शर्मिष्ठा के साथ इतनी बेरुखी नहीं बरतनी चाहिए थी।
4: कलकत्ता से राजनगर जाते समय वो इन्हीं सवालों और स्मृतियों में डूबा रहा। और इस बार जब वो स्टेशन पर उतरा तो रसायन की गंध उतनी तीखी नहीं थी और स्टेशन मास्टर के स्थान पर एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति बैठा था, जिसने एक क्षण देखने के बाद उससे कहा,
5: अरे सुमित्र बाबू, अरे इतने साल बाद हमारे चेहरे
2: आप चैटर्जी बाबू है ना?
5: हाँ।
2: आप अभी तक यही है?
5: अरे नहीं नहीं, मैंने पूरा उड़ीसा घुमाया है, टिटलागढ़, टीकमपुर, पुरी, सब जगह चलाया है और रिटायरमेंट पास है ना, इसलिए यही घर बना दिया। आप कैसा है?
2: ठीक है।
5: सुरेखा भी क्या?
2: अरे सुरेखा भी ठीक है, बच्चे भी ठीक है, सब इंदौर में है।
5: इंदौर में? वो तो बहुत दूर है, मैं भी एक बार वहाँ गया था।
2: अच्छा,
5: कभी पता सबको लेकर यहाँ आओ ना।
2: जरूर जरूर आऊंगा। अच्छा चैटर्जी बाबू, अभी चलता हूँ, मिलूंगा मैं आपसे।
5: जरूर जरूर जरूर।

90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है परिक्रमा। कार्यक्रम में आप जानते हैं भोपाल शहर की साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों की जानकारी। आइए चलते हैं मौलाना आजाद नेशनल प्रौद्योगिकी संस्थान में, जहां कल हिंदी महोत्सव तूर्यनाद 2026 का आगाज हुआ। शिक्षाविद मुकुल कानिटकर ने इसका शुभारंभ किया। हिंदी और संस्कृत पर 3 दिन के आयोजन में 4000 विद्यार्थी हिस्सा ले रहे हैं। रॉक एंड रूट्स बैंड के कलाकार मामे खान की प्रस्तुतियों ने समा बांधा। मैनेट परिसर में प्रस्तुतियों पर यूथ झूम उठा। 2 घंटों तक राजधानी भोपाल के मैनेट में राजस्थानी गीत से लेकर देशभक्ति तक का संगम दिखाई दिया। शिक्षाविद कानिटकर ने भारतीय शिक्षा, संस्कृति और राष्ट्रीय मूल्यों के संवर्धन पर अपनी बात रखी। रॉक एंड रूट्स बैंड की प्रस्तुतियों में माटी की खुशबू से लेकर देशभक्ति जीवंत हुए। माँ तुझे सलाम ने हर दिल में देशभक्ति का जोश भर दिया। वहीं छाप तिलक और सांसों की माला ने वातावरण को भक्तिमय बना दिया। देर शाम तक युवा गीतों का भरपूर आनंद लेते दिखाई दिए। बैंड की प्रत्येक प्रस्तुति पर जनसमूह ने जोरदार तालियों से प्रतिक्रिया दी। कार्यक्रम के दूसरे दिन यानी आज छात्र संसद और फैशन शो का आयोजन किया जाएगा। तूर्यनाद के आयोजकों ने बताया कि यहाँ पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ भी होंगी। मातृभाषा के संवर्धन एवं विद्यार्थियों के समग्र बौद्धिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिक स्तर की शिक्षा को मातृभाषा में अनिवार्य बनाया जाएगा। परिधानी का स्वदेशी फैशन शो शाम 6 बजे होगा। प्रदेशों की ऐतिहासिक विरासत, पारंपरिक वेशभूषा, संस्कृति और गौरवशाली इतिहास की झलक भी यहाँ देखने को मिलेगी। आगामी शारदीय नवरात्र के अवसर पर होने वाले भोजपाल गरबा महोत्सव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। पूर्व तैयारी प्रतिभागियों को 14 सितंबर से गरबा प्रशिक्षण दिया जाएगा। शिविर में गुजरात के विशेषज्ञ ट्रेनर प्रतिभागियों को गरबा के पारंपरिक और आधुनिक शैलियों और स्टेप्स का बारीकी से अभ्यास कराएंगे। महोत्सव के अध्यक्ष सुनील यादव ने बताया कि सांस्कृतिक गरबा महोत्सव का यह 3रा वर्ष है, जिसके आयोजन की तैयारियाँ तेज कर दी गई हैं। ट्रेनिंग के लिए शहर के 3 प्रमुख क्षेत्रों में केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 1 गुजराती भवन है, आनंद विहार स्कूल के सामने, 74 बंगला टीटी नगर और श्री कृष्ण मंदिर, विजय मार्केट पर खेड़ा भेल में ये आयोजन होंगे।

गरबा प्रशिक्षण 14 सितंबर से शुरू होगा, 9 अक्टूबर तक चलेगा। गरबा महोत्सव 12 से 18 अक्टूबर तक जम्बूरी मैदान में आयोजित होगा, जहां बाबा केदारनाथ की झांकी और दशहरा महोत्सव विशेष आकर्षण रहेंगे। बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को चांदी के आभूषण, टीवी, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और ट्रॉली बैग पुरस्कार में दिए जाएंगे।

कला प्रेमियों के लिए शनिवार को हास्य नाटक का मंचन किया जाएगा। अविराम जन कल्याण संस्था की ओर से भगवान तुम क्यों आए नाम के नाटक की प्रस्तुति होगी। ये मराठी साहित्यकार पुरुषोत्तम लक्ष्मण देश पांडे की मूल रचना पर आधारित है। निर्देशन आरती विश्वकर्मा ने किया है। रंगश्री लिटिल बैलेट्रूप ऑडिटोरियम में ये कार्यक्रम होगा। दूसरी ओर एनसीसी के सीएटीसी कैंप में कैडेट्स ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौरान सामूहिक नृत्य, गायन और वाद्य यंत्रों की प्रस्तुतियां दी। ये गणतंत्र दिवस शिविर प्राथमिक चयन प्रक्रिया के दौरान रही।

आइए श्रोताओं, चलते हैं आपको हम बाग मुगालिया में लेकर, जहां तबले की थाप से एक लय में चक्करदार बंदिशें और रेले की प्रस्तुति हुई तो मौके पर बैठा हर एक श्रोता मंत्रमुग्ध हो गया। इस प्रस्तुति से पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। मौका था सांस्कृतिक संध्या का। फरुखाबाद और दिल्ली घराने के कलाकारों ने यहाँ प्रस्तुति दी। बाग मुगालिया में कला व्योम फाउंडेशन और अक्षदा सोशल वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में शास्त्रीय संगीत संध्या का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय मासिक सांस्कृतिक श्रृंखला के तहत पारंपरिक तबला वादन हुआ। विख्यात तबला साधक गुरु मनोज पाटीदार के कुशल निर्देशन में मंच पर उतरे कलाकारों ने भारतीय ताल व्यवस्था के सबसे लोकप्रिय और समृद्ध तीन ताल की लय पर अपनी सधी हुई उंगलियों का जादू बिखेरा। अंतिम चरण में कलाकारों के बीच तबले के माध्यम से हुए सवाल जवाब आयोजन में सामूहिक वादन के दौरान नवोदित कलाकारों को भी मौका दिया गया।

आइए अब चलते हैं रविंद्र भवन में, जहां ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना और रिमझिम गिरते सावन जैसे गीतों की स्वर लहरियां गूंजी। मौका था प्रेरणा संस्था द्वारा आयोजित संगीतमय संध्या कपूर एंड कपूर का। किशोर कुमार की जुगलबंदी का अंजनी सभागार में कार्यक्रम हुआ, जहां पर बड़ी संख्या में संगीत प्रेमी पहुंचे थे। गायक इंद्रपाल सिंह गुलाटी ने जैसे ही किशोर कुमार की आवाज़ में कपूर खानदान के अभिनेताओं की फिल्मों पर फिल्माए गए गीतों की प्रस्तुतियां दी, पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।

तो श्रोताओं, ये था आज का परिक्रमा कार्यक्रम। आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए। आइए अब सुनते हैं ये देशभक्ति गीत।

आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे। ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर 90.8 मेगाहर्ट्ज़। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: स्वाधीनता संग्राम स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों रणबांकुरों जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका इतिहास, इस देश का इतिहास जो आ पहुंचा है आपके पास आपको सुनाने फिर से एक वीर की गाथा। लेकिन तारीख कहाँ है? अरे तारीख, तुम वहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें देखा ही नहीं।
2: नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी तारीख, आपकी अपनी तारीख जो यहाँ आ पहुँची है देने इतिहास का साथ। और आज तो इतिहास से पहले ही आ गई हूँ मैं।
1: क्या बात है, आज तो बड़े उत्साह में दिखाई पड़ती हो। भाई बात क्या है, हम भी तो जाने।
2: बिल्कुल सही कहा, मैं तो हूँ ही उत्साहित। अब भाई आखिर मैं तारीख हूँ, उत्साहित नहीं रहूंगी क्या? लेकिन आज मेरे उत्साह का एक और कारण है।
1: अच्छा, तो हम सबको भी तो बताओ वो कारण।
2: इतिहास, आपने ही तो कहा था कि आज आप ऐसे नायक के बारे में बताएंगे जिसे राजनीति में ऋषि का प्रादर्श कह सकते हैं।
1: बिल्कुल तारीख, देखो राजनीति का ऋषि पहले एक प्रादर्श क्रांतिकारी होता है, इसलिए ये कहना चाहिए कि क्रांति नायक राजर्षि।
2: ओ हाँ, अब याद आया, आप आज राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन के बारे में हम सबको बताने वाले हैं, है ना? जिन्हें राजर्षि की उपाधि स्वयं जनता ने दी है।
1: वाह, तुम्हें याद है, बहुत खूब तारीख। भाई मान गए तुम्हें, देर से ही सही लेकिन तुम्हें याद तो आया।
2: अरे आप मेरी तारीफ छोड़िए और राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी के बारे में बताइए।
1: ये तो मेरा सौभाग्य होगा तारीख, तुम्हें पता है उनके लिए एक कविता हमेशा कही जाती है।
2: वाह कविता, अरे मैं क्या, हम सब सुनना चाहेंगे इतिहास, जरूर सुनाइए।
1: तो सुनो, दे राजर्षि की उपाधि देश ने जिनका था सम्मान किया, निरासक्त उन महतापी ने क्या था अपना नहीं दिया, व्रती भीष्म सदृश थे वे शिव सामान अवढर थे, पुत्र भारती का हो कोई उनके सबके हित कर थे।
2: सुना है वो हिंदी की उन्नति के लिए भीष्म थे और हरीशचंद्र की तरह दृढ़ प्रतिज्ञ थे। आज हिंदी अगर राष्ट्रभाषा के पद पर है तो वो उन्हीं की साधना का फल है।
1: हाँ तारीख, बिल्कुल सही सुना है तुमने। चलो अब हम और हमारे साथी सुनते हैं एक देशभक्ति से उत्प्रोत गीत।

0: राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी का जन्म 1882 की 1 अगस्त को प्रयाग के खुशहाल पर्वत नामक मोहल्ले में हुआ था। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी के पिताजी का नाम सालिग्राम और माताजी का नाम बिट्टन देवी था, जो कि बाद में राधास्वामी धर्म में दीक्षित होने के चलते शरण देवी हो गया। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन ने प्रारंभिक शिक्षा घर पे लेने के बाद 1897 में गवर्नमेंट हाई स्कूल से मैट्रिक और 1899 में कायस्थ पाठशाला कॉलेज से इंटर और उसके पश्चात 1904 में म्योर सेंट्रल कॉलेज से बीए और फिर 1906 में वकालत की परीक्षा पास की। इसके साथ ही साथ वकालत की पढ़ाई करते हुए उन्होंने इतिहास में एमए भी किया।
1: हाँ, और 1899 में ही उनका विवाह चंद्रमुखी देवी से करवा दिया गया था और चंद्रमुखी देवी ने भी कस्तूरबा जी की ही तरह हमेशा अपने पति के सिद्धांतों का अनुसरण किया। इस प्रकार चंद्रमुखी देवी भी ऋषि पत्नी होने का एक प्रादर्श हैं।
0: वकालत करते करते राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी का संपर्क महामना मालवीय जी से हुआ। 1914 में मालवीय जी ने राजर्षि को पंजाब के नाभा राज्य के दीवान के पद पर नियुक्ति दिलवाई, लेकिन उसे अपनी प्रवृत्ति और प्रकृति के प्रतिकूल पाकर राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी ने जल्द ही उस पद से मुक्ति ले ली।
1: राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी जन्मजात देशभक्त तो थे ही, साथ ही साथ जन्मजात रूप से अनाचार और अत्याचार के विरुद्ध निडर होकर खड़े होने वाले योद्धा भी थे। जब वे एक विद्यार्थी के रूप में अपनी शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर

0: वो समय आ चुका था जबकि भारत का इतिहास करवट बदल रहा था। शांतिपूर्वक भारत का शासन भारतीयों को देने के वादे से अंग्रेज सरकार मुकर गई थी। और तो और इससे भी बढ़कर एक जो बहुत ही बुरी बात हुई थी वो ये कि रोलेट एक्ट कानून भी पास कर दिया गया था। क्रांतिकारी कांग्रेस सरकार ने उसे काला कानून नाम दिया और इस कानून के विरुद्ध एक जन आंदोलन छिड़ गया।
1: इसी समय की बात है, देश में जलियांवाला कांड भी हो चुका था। कांग्रेस ने इस क्रूर कांड की जांच समिति बनाई जिसके एक सदस्य पुरुषोत्तम दास टंडन उर्फ राजर्षि भी नियुक्त किए गए। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ असहयोग आंदोलन की घोषणा कर दी। पुरुषोत्तम दास टंडन भी राजसी आय वाली वकालत छोड़कर इस आंदोलन में शामिल हो गए। सारे ठाट बाट छोड़कर उन्होंने अपने परिवार को भी सारी सुविधाओं से वंचित कर दिया। वे गांव गांव घूमकर विदेशी कपड़ों की होली जलाते, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करते, चरखे का प्रचार, अदालतों का बहिष्कार, अंग्रेजी शिक्षा का बहिष्कार करते और इस तरह आजादी की अलख जगाने में जुट गए। इसका परिणाम ये हुआ कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 1.5 बरस का कारावास हुआ।
0: कितने महान होते थे वो वीर सपूत जो अपनी सारी सुविधाएं भूलकर भारत माता की आजादी के लिए जेल जाने में अपना सुख खोज लेते थे। कितने खुशनसीब थे वो जेल जिनमें ऐसे सपूतों के चरण पड़ते थे।

0: और इसके लिए उन्हें 500 रुपए मासिक वेतन देने का वायदा भी किया। लाला जी चाहते थे कि पुरुषोत्तम दास टंडन की आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार आ जाए। बस राजर्षि इस बात को भांप गए और मदद न लेने की अपनी नीति के चलते उन्होंने लाला जी के आमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। पुरुषोत्तम दास टंडन उर्फ राजर्षि का मानना था कि देश सेवा का प्रतिदान आजादी का फल पाने के लिए होता है, न कि आर्थिक उन्नति करने के लिए।
1: वाह, क्या विचार थे! देश सेवा का प्रतिदान आजादी का फल पाने के लिए होता है, न कि आर्थिक उन्नति करने के लिए। हाँ, परंतु लाला जी ने भी हार नहीं मानी होगी, है ना?
0: हाँ, लाला जी भी कहाँ हार मानने वाले थे। आखिरकार लाला लाजपत राय ने पुरुषोत्तम दास टंडन जी को लाहौर बुलाकर उनकी नियुक्ति पंजाब नेशनल बैंक के सचिव के पद पर करवा ही दी। यहाँ राजर्षि लाला जी का लिहाज करके काम भी करते रहे। लेकिन 1928 में जब लाला जी इस दुनिया को त्याग कर चले गए, तब पुरुषोत्तम दास टंडन ने भी अपने पद का त्याग कर दिया और ये नौकरी छोड़ दी। और फिर राजर्षि लोक सेवा मंडल के अध्यक्ष के रूप में फिर से इलाहाबाद आ गए। इलाहाबाद में उन्होंने गांधी जी के नमक सत्याग्रह आंदोलन के सहयोग में नमक कानून तोड़ा, जिसके फलस्वरूप वे अंग्रेज शासन द्वारा पुनः जेल भेज दिए गए। 1935 में गांधी जी ने गांधी इरविन समझौते के तहत आंदोलन वापस ले लिया और राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जेल से छूट गए।
1: इस दफे पुरुषोत्तम दास टंडन ने किसानों को संगठित करना शुरू किया और उनकी कोशिशों से इलाहाबाद में एक बहुत बड़ा किसान सम्मेलन हुआ, जिसकी अध्यक्षता श्री वल्लभ भाई पटेल ने की।
0: उत्तर प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने उन्हें बतौर स्पीकर चुना, लेकिन 1940 में उन्होंने इस पद को भी त्याग दिया। कांग्रेस ने देशव्यापी भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया और इसमें राजर्षि की सक्रियता को देखकर अंग्रेज सरकार ने उन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया और 1945 तक वे जेल में ही रहे।
1: कांग्रेस के जो कार्यकर्ता जेलों में बंद थे, उन्हें कांग्रेस ने आर्थिक सहायता भी पहुंचाई, लेकिन राजर्षि की पत्नी ने ये सहायता लेने से साफ इनकार कर दिया।
0: फिर कांग्रेस की सरकार बनी और 1945 में पुरुषोत्तम दास टंडन जेल से छूट कर आए और पुनः चुनाव जीत कर उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष बने। 1947 में भारत आजाद हुआ, लेकिन राजर्षि विभाजन के विरुद्ध थे। जब सभी लोग आजादी का जश्न मना रहे थे, तब राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन एकांत में बैठकर आंसू बहा रहे थे, क्योंकि वो ये विभाजन कभी नहीं चाहते थे।

0: 1950 में भारत के संविधान निर्माण के लिए गठित समिति में एक सदस्य राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन भी थे। उन्हीं के कारण हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया। इसके बाद 1952 में वो लोकसभा के अध्यक्ष भी चुने गए और 1955 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने। 1961 में भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न की उपाधि से विभूषित किया।
1: अंततः एक निरासक्त कर्मयोगी ने 1 जुलाई 1932 में बीमारी के चलते अपनी अंतिम सांस ली। वे एक सिद्ध के आशीर्वाद स्वरूप इस धरती पर जन्मे थे और एक सिद्ध के रूप में ही दूसरों के लिए सोचते करते चिर निद्रा में लीन हुए। एक सिद्ध योगी के रूप में राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन इतिहास में भी अपना नाम सिद्ध पुरुष के रूप में दर्ज करा गए।
0: उन्होंने अपने जीवन में जितने काम किए दूसरों के लिए ही किए। दूसरों की खुशियों, दूसरों के सुख से ही स्वयं सुख की अनुभूति पाने वाले उस कर्मवीर को इतिहास कभी नहीं भुला पाएगा। सच्चे शब्दों में सदा उन्हें राजर्षि के रूप में याद किया जाएगा। क्रांति नायक राजर्षि।

आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे। ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर 90.8 मेगाहर्ट्ज़। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं गायन वादन लोकगीत गजलें और बहुत कुछ। आज आप सुनेंगे डॉक्टर ऋषि मिश्र का गायन।
1: मुखड़ा देखिएगा,

तंदिश के बोल हैं, गगन सघन घेरी आए, पड़त गूंद छहरी छहरी, नव पल्लव नव कुसुम, सब नए पत्ते नए फूल के हरी तज नित मन लुभाए, प्रभु के मन को वो लुभा रहा है।

दादुर मोर पपीहा बोले, जब बारिश होता है तो मोर पपीहा सब बोलते हैं, कोयल बन कूके कूके। इतना सुंदर वातावरण है, लेकिन उस खूबसूरत वातावरण को देखकर बिरहन का मन हूक हूक हो रहा है। बड़े पीड़ा में है वो, क्योंकि उसका पति या उसका प्रेमी उसके साथ

और ये देखकर जो इसके रचयिता हैं मेरे गुरुजी पंडित गणेश प्रसाद मिश्र जी, उनका तन जल रहा है ये देखकर। ऐसा देश कहाँ भगवान खुश थे और वो इतना पीड़ा में है ये देखकर।

कट्टाल की एक रचना है, मेघ मल्लार में ही याद आ गया, तो वो थोड़ा सा सुनाते हैं, बस दो चार मिनट सुनाएंगे। वो बड़ा अच्छा उसका मुखड़ा देखिएगा, आप लोग इतना प्यार से सुन रहे हैं तो सुनाने का मन कर गया मुझे। मुखड़ा देखिएगा, बात करेगी धमक सुनी जब ते काना, क्या मुखड़ा है, बात करेगी धमक सुनी जब ते काना।

0: आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे। ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर 90.8 मेगाहर्ट्ज। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: अमेरिका के पूर्वी तट पर स्वामी जी विभिन्न नगरों में घूम घूम कर व्याख्यान देते रहे। 28 जून को प्रातःकाल वे फिर न्यूयॉर्क में आए। इस बार स्वामी जी ने अपना व्याख्यान ज्ञान योग और राजयोग पर केंद्रित किया। व्याख्यान के बाद प्रश्नोत्तर काल होता। वहां भारी भीड़ होती। कमरा बहुत बड़ा ना था। उत्सुक छात्र छात्राओं को जगह कम पड़ती थी। फिर भी वे भारतीय पद्धति के अनुसार पैर समेटकर अपने प्रिय आचार्य को घेर कर बैठते थे। राजयोग के विषय पर उनके भाषणों को सुनकर कई लोगों का आग्रह इतना बढ़ गया कि उन्होंने स्वामी जी से योग शिक्षा ग्रहण करना प्रारंभ किया और इस विषय में सफल होने के लिए योग शास्त्र के निर्देशानुसार ब्रह्मचर्य सात्विक आहार इत्यादि नियमों को भी श्रद्धा के साथ पालन करने लगे।
1: इस समय स्वामी जी ने भी योगी की तरह शारीरिक कठोरता का अवलंबन किया, क्योंकि वे सदैव ही शिष्यों के सामने एक जीते जागते आदर्श के रूप में विराजमान रहते थे। इस प्रकार उनका न्यूयॉर्क का छोटा सा निवास गृह सन्यासी व संयमशील व्यक्तियों की नवीन आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्ति की लगातार चेष्टा से मानो एक छोटा सा मठ ही बन गया। एक शिष्य ने उन दिनों का वर्णन करके लिखा है,
2: स्वामी जी द्वारा राजयोग पर दिए गए भाषणों की ख्याति इतनी व्यापक बन गई कि जिस दिन राजयोग के संबंध में भाषण होने का कार्यक्रम रहता था, उस दिन नगर के दार्शनिक वैज्ञानिक व अध्यापकों के आगमन से उनका छोटा सा कमरा भर जाता था और वे लोग बड़ी लगन के साथ उनकी योग शास्त्र की युक्तिपूर्ण वैज्ञानिक व्याख्या सुनते थे। इस प्रकार जून मास के भीतर उनके भाषणों का संग्रह स्वरूप राजयोग नामक पुस्तक प्रकाशित हुई। स्वामी जी ने उनके परिशिष्ट में पातंजल दर्शन का एक विस्तृत व युक्तिपूर्ण भाष्य भी जोड़ दिया। इसमें संदेह नहीं कि इस पुस्तक ने उच्चतम मनस्तत्व के सूक्ष्म व युक्तिपूर्ण विश्लेषण की दृष्टि से मनीषी पाठकों के समाज में चिरकाल के लिए प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली है। इस पुस्तक का अध्ययन कर अमेरिका के विश्वविख्यात मनस्तत्वविद प्रोफेसर जेम्स महोदय इतने मुग्ध हुए कि वे स्वयं स्वामी जी के निवास स्थान पर जाकर उनसे परिचित हुए और अंत में उनके एक अभिन्न मित्र बन गए। इस पुस्तक के प्रकाशित होने के कुछ ही सप्ताह के बीच में उनके 3 संस्करणों की आवश्यकता हुई थी। इसी से समझा जाता है कि अमेरिका निवासी विद्वानों ने स्वामी जी की अलौकिक प्रतिभा से उत्पन्न इस प्रथम पुस्तक की सादर अभ्यर्थना करने में कोई कोर कसर नहीं रखी थी।
0: इस बीच स्वामी जी ने अनेक प्रतिष्ठित शिष्य तथा प्रचार कार्य के लिए सभी तरह के सहायक मित्र प्राप्त कर लिए थे। उनमें से मैडम मैरी लुई, डॉक्टर लैंड्सबर्ग, ओली बुल, डॉक्टर एलेने डी, कुमारी वॉल्डो, प्रोफेसर वमैन ओराइट, डॉक्टर स्ट्रीट तथा अनेक मिशनरी व सामान्य शिक्षित व्यक्ति भी स्वामी जी की शिक्षा में विशेष रूप से आकृष्ट हुए थे। कुछ दिनों बाद विख्यात गायिका श्रीमती कालवे ने उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। अमेरिका के धनी समाज के श्री व श्रीमती फ्रांसिस लेगेट और कुमारी जे मैकग्लाउंड भी स्वामी जी का शिष्यत्व ग्रहण कर विविध प्रकार से उनके प्रचार कार्य में सहायता करने लगे।
1: सन 1895 में स्वामी जी को अमेरिका में कठोर परिश्रम करना पड़ता था, परंतु अमेरिका के घोर विलास के बीच उनकी अंतरात्मा समय समय पर विद्रोही बन बैठती थी। उस समय कभी कभी आजन्म त्यागी सन्यासी गहरे क्षोभ के साथ अपने जीवन के विगत दिनों की याद करते हुए कह उठते थे,
3: मैं तो अपने चिथड़े मुंडित मस्तक वृक्षों तले निद्रा और भिक्षा के रूखे भोजन के लिए तरस गया हूं।
0: लगातार उच्चतम दार्शनिक तत्वों का विश्लेषण करते हुए भाषण देने तथा शिक्षा दान के कार्य से थक कर स्वामी जी ने कुछ दिन एकांत में विश्राम लाभ की आवश्यकता का अनुभव किया। सेंट लॉरेंस नदी के बीच थाउसेंड आइलैंड पार्क, जिसे हम सहस्त्र द्वीपों का उद्यान कहते हैं, नामक द्वीप में उनकी एक शिष्या की बड़ी सुंदर कुटिया थी। उन्होंने विशेष आग्रह के साथ स्वामी जी से प्रार्थना की कि वे कृपया उसका उपयोग कर उसे पवित्र करें। स्वामी जी प्रस्ताव से सहमत होकर अपने कुछ अंतरंग शिष्य शिष्याओं के साथ वहां गए। उन्हीं शिष्याओं में से एक थीं कुमारी वाल्डो। उन्होंने लिखा है,
4: इस गंधर्व राज्य में हमने आचार्य देव के साथ 7 सप्ताह दिव्य आनंद से उनके संदेशों से युक्त अपूर्व वचनों को सुनते हुए व्यतीत किए थे। उस समय हम भी जगत को भूल गए थे और जगत भी हमें भूल गया था। उस समय प्रतिदिन सायंकाल का भोजन समाप्त कर हम सभी ऊपर के बरामदे में जाकर आचार्य देव के आने की प्रतीक्षा करते थे। बहुत देर तक प्रतीक्षा न करनी पड़ती थी क्योंकि हमारे समवेत होने के साथ ही उनके कमरे का दरवाज़ा खुल जाता था और वे धीरे धीरे बाहर आकर अपने नियत आसन पर बैठ जाते थे। वे प्रतिदिन हमारे साथ 2 घंटे और कभी कभी इससे भी अधिक समय बिताया करते थे। एक अपूर्व सुंदर रात्रि में बात करते करते चंद्रास्त हो गया। जिस प्रकार हम समय बीत जाने के बारे में कुछ न जान सके, स्वामी जी भी उसी प्रकार न जान सके थे। उन सब भाषणों को लिख लेना संभव नहीं हुआ, पर हाँ, उन्हें हम में से कोई भूल न सकेगा। उन अवसरों पर स्वामी जी हृदय का द्वार खोल दिया करते थे। स्वामी विवेकानंद जैसे व्यक्ति के साथ निवास करना ही लगातार उच्च अनुभूतियों को प्राप्त करना है। प्रातःकाल से रात्रि तक वही एक भाव। हम एक घनीभूत धर्म भाव के राज्य में निवास करते थे।
1: कुमारी वाल्डो के सजीव वर्णन से हम उन दिनों की कल्पना आसानी से कर पाते हैं। सुंदर परिवेश, चांदनी रात, शिष्य मंडली और स्वामी जी की सार गर्भित बातें, कितने सुखद होते होंगे वे दिन।

0: उसे दिखा देना तथा उनमें से मूल्यवान धर्म विषयक उपदेशों का आविष्कार करना न भूलते थे। किसी भाग्यवान छात्र मंडली ने इस प्रकार प्रतिभाशाली आचार्य को प्राप्त कर अपने को धन्य मानने का ऐसा अवसर पाया था या नहीं, इसमें संदेह है।
1: उस खूबसूरत जगह है सहस्त्र दीपोद्यान के बारे में हमें कुमारी एमसी फंकी के संस्मरण भी प्राप्त हैं। उन्होंने इस प्रसंग में लिखा है,
2: मेरा यही दृढ़ संकल्प था कि किसी समय कहीं भी उनके साथ साक्षात्कार अवश्य करूंगी। यदि हमें इसके लिए सारी पृथ्वी भी लांगनी पड़े तो वो भी स्वीकार है। करीब 2 वर्ष तक हमें उनका पता नहीं लगा और हमने सोचा कि शायद वे भारत लौट गए हों। परंतु एक दिन तीसरे प्रहर एक मित्र ने हमें सूचित किया कि वे अभी इस देश में ही हैं और ग्रीष्म का अवकाश सहस्त्र दीपोद्यान में बिता रहे हैं। उन्हें ढूंढ निकालकर उनसे शिक्षा प्राप्त करने के दृढ़ संकल्प को लेकर हमने दूसरे ही दिन प्रातःकाल यात्रा प्रारंभ की।
3: कुमारी फंकी ने यात्रा का वर्णन इस तरह किया है,
2: उस दिन अंधकारमय रात्रि थी, मूसलाधार वर्षा हो रही थी, परंतु फिर भी हम उस लंबे पथ पर चले ही जा रहे थे। उनका साक्षात्कार हुए बिना हमारे मन में शांति कहाँ। क्या वे हमें शिष्य के रूप में ग्रहण कर लेंगे? और यदि ना करें तो फिर हम क्या करेंगे? हमें एकाएक ये ध्यान आया कि एक व्यक्ति जो हमारे अस्तित्व तक को नहीं जानता, उससे मिलने हमारा कई मील चले आना शायद मूर्खता का कार्य हुआ है।
3: इस प्रसंग में स्वामी ने कहा था,
4: मेरे शिष्य कई मील लांघकर मुझसे मिलने आए थे और इतना ही नहीं, रात की आंधी व वर्षा सिर पर उठाकर।
2: मैंने अपने मन में पहले से ही ये सोच रखा था कि मिलने पर उनसे क्या कहूंगी, परंतु जब वास्तव में उनका साक्षात्कार हुआ तो उस समय हम अपने तैयार किए हुए उस भाषण को भूल गए और हम में से एक व्यक्ति किसी तरह बोल उठा, हम डेट्रॉइट से आ रहे हैं। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, यदि इस समय भगवान इस पृथ्वी पर मौजूद होते तो हम उनके पास जिस रूप में जाते व उपदेश की शिक्षा मांगते, उसी रूप में हम आपके पास आए हैं। वे हमारी ओर अत्यंत स्नेह भरी आंखों से देखते हुए मृदु स्वर में बोले,
4: काश अगर भगवान ईसा की तरह मुझ में तुम्हें इसी क्षण मुक्त कर देने की शक्ति होती।
2: एक दिन तीसरे प्रहर त्याग की महिमा के प्रसंग में ग्यारिक वस्त्रधारी साधुओं के आनंद व स्वाधीनता का वर्णन करते हुए एकाएक वे उठ गए और थोड़े ही समय के बाद त्याग व वैराग्य की चरम सीमा रूपी सन्यासी का गीत शीर्षक कविता को उन्होंने लिख डाला। मैं समझती हूँ उनकी असीम धीरता व कोमलता ने ही मुझे उस समय सबसे अधिक मुग्ध किया था। पिता अपनी संतान को जिस दृष्टि से देखते हैं, वे भी हमें उसी दृष्टि से देखते थे, यद्यपि हम में से अनेक व्यक्ति उनसे उम्र में काफी बड़े थे।
4: अब थोड़ी देर के लिए इस पाठशाला की छुट्टी। आप लोगों को भूख तो लग ही गई होगी, मैं आज आप लोगों के लिए भारतीय भोजन तैयार करता हूँ। नहीं नहीं, घबराने की कोई बात नहीं, मैं ठीक ठाक रसोई कर लेता हूँ।
2: फिर कितनी धीरता के साथ वे चूल्हे के पास खड़े होकर हमारे लिए कुछ न कुछ भारतीय भोजन तैयार करते थे। डेट्रॉइट में अंतिम बार भी उन्होंने हमारे लिए बड़े ही स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए थे। विवेकानंद शिष्यों के छोटे छोटे अभावों की पूर्ति अपने हाथों से कर दिया करते थे। शिष्यों के लिए क्या ही अपूर्व उदाहरण है, उस समय वे कितने कोमल, कैसे करुण स्वभाव बन जाते थे, और आज वो कोमलतामय पुण्य स्मृति ही तो हमें उत्तराधिकार के रूप में दे गए हैं।

0: बहुत दिनों के बाद स्वामी जी नगरीय कोलाहल, प्रतिद्वंदियों से संघर्ष, व्याख्यान आदि के पंजे से छुटकारा पाकर निश्चिंत होकर विश्राम कर सके। सहस्त्र दीपोद्यान आने से पहले उन्हें ग्रीन एकर कॉन्फ्रेंस में भाषण देने के लिए बुलाया गया था, परंतु उन्होंने उसे अस्वीकार किया। विद्वान दार्शनिकों के सम्मुख भाषण देने की अपेक्षा भावी वेदांत प्रचार कार्य के सहयोगी के रूप में कुछ शिष्य गठित करना ही उन्होंने अधिक आवश्यक समझा।
1: लगातार 7 सप्ताह तक उन्होंने जो अमूल्य उपदेश दिए थे उनका कुछ अंश किसी एक शिष्य ने लिपिबद्ध कर लिया था। बाद में वो इंस्पायर्ड टॉक्स नाम से पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ। देववाणी पुस्तक उसी का हिंदी अनुवाद है।
0: यहीं पर स्वामी जी ने 5 व्यक्तियों को ब्रह्मचर्य की दीक्षा दी और 2 को संन्यास प्रदान किया। अंत में वे फिर से नवीन उत्साह के साथ न्यूयॉर्क लौटकर वेदांत प्रचार के कार्य में संलग्न हुए।
1: न्यूयॉर्क लौटकर ही स्वामी जी इंग्लैंड जाने के लिए तैयार हुए। मई के महीने में वेदांत की अनुरागिनी कुमारी हेनरिएटा मुलर ने उन्हें इंग्लैंड बुलाया था। इधर श्री ईटी स्टर्डी महोदय भी स्वामी जी को लंदन आने के लिए बार बार पत्र लिखने लगे। इसी बीच स्वामी जी के एक मित्र ने, जो न्यूयॉर्क के एक धन कुबेर थे, जब उन्हें साथ लेकर फ्रांस व इंग्लैंड जाने का प्रस्ताव दिया तो स्वामी जी ने सहर्ष अपनी सम्मति दे दी। 2 वर्ष के कठोर परिश्रम से उन्हें जो शारीरिक एवं मानसिक क्लांति आई थी, समुद्र यात्रा करने पर उसमें कुछ सुधार होगा ये सोचकर उनके शिष्यों ने भी आपत्ति नहीं की। अंत में प्रचार कार्य का भार स्वामी अभयानंद, कृपानंद तथा हरिदासी पर छोड़ मध्य अगस्त में रवाना होकर वे पेरिस गए और वहाँ से लंदन गए।
0: अमेरिका छोड़ने से पूर्व स्वामी जी को समाचार मिला कि भारत में उनके विरुद्ध सुसंगठित रूप से निंदा प्रचार किया जा रहा है। उनके विदेशी आहार आदि के बारे में सुनकर कई हिंदू भी उनके विरोधी बन गए हैं। उनके आचार व्यवहार की आलोचना कर छोटी छोटी पुस्तकें तथा हैंडबिल बांटे जा रहे हैं। प्राचीन पंथी हिंदू संप्रदाय का मुखपत्र बंगवासी अखबार इस दुष्प्रचार का मुखिया बना हुआ है। यद्यपि मठ में रहने वालों ने इन अफवाहों को सच नहीं माना, पर मद्रास तथा अन्य स्थानों पर भारतीय शिष्यगण गुरु निंदा सुनकर विचलित हो उठे। स्वामी जी ने इंग्लैंड यात्रा के पूर्व उन लोगों के पास एक पत्र लिखने की आवश्यकता समझी। स्वामी जी ने शिष्य वृंद को सांत्वना देने के लिए लिखा,
2: मुझे आश्चर्य हो रहा है, तुम लोग मिशनरियों द्वारा प्रचारित बेवकूफियों को सुनकर विचलित हुए हो। यदि कोई हिंदू मुझे कट्टर हिंदू की तरह खाद्य संबंधी परामर्श देते हों तो उन्हें कहो कि वे यहां एक ब्राह्मण रसोईया भेज दें। एक पैसा देकर सहायता करने की शक्ति नहीं, परंतु विज्ञ व्यक्ति की तरह उपदेश देने की खूब योग्यता है। ये देखकर मैं हंसी नहीं रोक सकता। दूसरी ओर यदि मिशनरी गण ऐसा कहते हैं कि मैंने काम कांचन के त्याग रूपी संन्यास जीवन के इस महान व्रत का भंग किया है, तो उनसे कह दो कि वे घोर मिथ्यावादी हैं। स्मरण रखो, मैं किसी के निर्देश पर चलने को तैयार नहीं हूं। अपने जीवन का उद्देश्य मैं भली भांति जानता हूं। किसी प्रकार का हल्ला गुल्ला तथा निंदा आदि की मैं परवाह नहीं करता। क्या मैं किसी व्यक्ति विशेष या जाति विशेष का क्रीतदास हूं? क्या तुम कहना चाहते हो कि मैंने कुसंस्कार वाले, निष्ठुर प्रकृति, दुर्बल चित्त तथा तथाकथित शिक्षित व्यक्तियों के बीच निवास करने के लिए जन्म ग्रहण किया है? मैं सभी प्रकार की कापुरुषता से घृणा करता हूं। उन सब कापुरुषों व राजनीतिक मूर्खता के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। ईश्वर और सत्य ही मेरी एकमात्र राजनीति है। शेष जो कुछ भी है केवल कूड़ा करकट है।

0: उन दिनों भारत इंग्लैंड के अधीन था। प्रभुत्व के अहंकार से फूले हुए साम्राज्यवादी अंग्रेज पराधीन जाति के एक धर्म प्रचारक सन्यासी को किस भाव से ग्रहण करेंगे, यही सोचते सोचते स्वामी जी लंदन पहुँचे। उनके मन में अंग्रेजों के प्रति प्रतिकूल धारणा रहना स्वाभाविक था, क्योंकि अंग्रेज भारतवासियों के साथ जिस तरह का व्यवहार करते थे उससे उनके मन में शंका उपस्थित होना ही स्वाभाविक था।
1: किंतु थोड़े दिनों में ही वो धारणा दूर हो गई। इंग्लैंड के शिक्षित व उच्च वंशी मध्य श्रेणी व साधारण श्रेणी के अंग्रेजों के साथ घनिष्ठ भाव से परिचित होकर उन्होंने अंग्रेज चरित्र के महत्व का आविष्कार किया। उन्होंने कहा था, अंग्रेज जाति के प्रति मुझसे अधिक घृणा के भाव लेकर और किसी व्यक्ति ने ब्रिटिश भूमि पर पदार्पण नहीं किया है, पर आज यहां कोई व्यक्ति नहीं है जो अंग्रेज जाति को मुझसे अधिक चाहता हो। अंग्रेज चरित्र की क्षत्रियोचित शूरता तथा आत्मसंयम, उसका निर्भीक उद्यम, अध्यवसाय तथा गांभीर्य की स्वामी जी ने बहुत प्रशंसा की है। व्यक्ति की स्वतंत्रता को बरकरार रखते हुए इंग्लैंड की नियमानुवर्तिता, आत्मसम्मान, ज्ञान तथा साथ ही विनीत व्यवहार देखकर वे मुग्ध हुए थे। अंग्रेज सहज ही किसी भाव में प्रवाहित नहीं हो जाते, परंतु जिसे वे एक बार सत्य जान लेते हैं उस पर फिर जीवन पर्यंत डटे भी रहते हैं। इंग्लैंड ने स्वामी जी को अमेरिका से भी अधिक प्रभावित तथा आकृष्ट किया।
0: स्वामी जी जहाँ भी जाते एक आंदोलन पैदा कर देते थे, इसलिए पाश्चात्य दुनिया उन्हें आंधी पैदा करने वाला हिंदू या साइक्लोनिक हिंदू नाम से पुकारता था। उन्होंने लंदन को भी हिला दिया। न्यूयॉर्क की तरह लंदन में भी भीड़ उमड़ने लगी। वे अंग्रेजों को भाव प्रचारक मानते थे। वे किसी भी बात को सारी दुनिया में प्रचार करने की क्षमता रखते थे, ऐसा स्वामी जी मानते थे। इसलिए उन्होंने सोचा, अगर मेरा आध्यात्मिक आदर्श अंग्रेजों को समझ में आ जाए तो वो सारे संसार में फैल जाएगा। ये सोचकर उन्होंने अपनी कार्य प्रणाली की रूपरेखा तैयार की और वेदांत का प्रचार इंग्लैंड में शुरू किया।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रम। श्रोताओं, अब हमारी प्रातःकालीन सभा यहीं पर संपन्न होती है। दिन के ठीक 12 बजे हैं, आप समय मिला सकते हैं। हमारी दोपहरकालीन सभा अब आरंभ होती है। आप सभी श्रोताओं का हम पुनः स्वागत करते हैं। हमारे कार्यक्रमों को आप मिक्सलायर एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं, प्रातः 7 बजे से राति 10 बजे तक निरंतर। तो बने रहिए रेडियो आजाद हिंद के साथ 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है अगला कार्यक्रम, तराने आजादी।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है, आइए सुनिए देशभक्ति गीत।

और आइए श्रोताओ, देशभक्ति गीतों के इस कार्यक्रम में अब जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं उसके बोल हैं, क्या समझते हो कि हम खेल का डर करते हैं, हम जो करते हैं उसे होके निडर करते हैं।

और आइए अब हम आपको सुनवाते हैं ये देशभक्ति कव्वाली। ना सुना जाएगा हमसे ये फसाना हरगिज, हंसते हंसते हमें जालिम, ना रुलाना हरगिज़।

और लीजिए अब सुनिए ये देशभक्ति रचना। आओ वीरो समर क्षेत्र में नवजीवन सरसाएगा, शीघ्र भारतीय हुंकारों से लंदन भी थर्राएगा।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है। लीजिए सुनिए तेरी अमृत आराधना, भारत न खो जाए कहीं। सौ सौ युगों की साधना, भारत न खो जाए कहीं।

हम अहिंसा के पुजारी हैं मगर बुजदिल नहीं, कायरों से आज तक ये काम है शामिल नहीं, आज मिटने को न हो जो वो दिल नहीं। हम अहिंसा के पुजारी हैं मगर बुजदिल नहीं। आइए सुनते हैं इसी गीत को।

कहते हैं अलविदा इस जहान को, जाकर खुदा के घर फिर आया न जाएगा। कहते हैं अलविदा इस जहान को।

आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत प्रमिला के साथ। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आज़ाद हिंद का प्रसारण है। मैं हूं आपके साथ आपके रेडियो मित्र प्रमिला। लीजिए सुनिए भारत भारती। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं सुप्रसिद्ध गायिका कलापिनी कोंकली का गायन।

नमस्कार। चांदनी केदार से आज शुरुआत करूंगी। बहुत पुरानी परंपरागत बंदिश है, उसी के साथ में एक और परंपरागत द्रुत रचना आपको केदार में सुनाऊंगी। तो शुरुआत में चांदनी केदार।

में आपको एक रूपक में निबद्ध सुनाती हूँ। राग का नाम है दुर्गा और उसी के साथ में एक छोटा सा उसका तराना है एक तार में निबद्ध। दोनों ही रचना कुमार जी द्वारा बनाई गई है और जो रूपक ताल में निबद्ध जो मध्यलय की रचना मैं आपको सुनाऊंगी वो विशेष रूप से शरद पूर्णिमा के लिए कुमार जी ने बनाई थी। एकमात्र शायद ऐसी बंदिश है जो विशेष रूप से कोजागिरी के लिए बनाई गई है। तो आपको एक छोटी सी बंदिश सुनाती हूँ, उसके बाद में तराना सुनाऊंगी।

अभी आप सुप्रसिद्ध गायिका कलापिनी कोंकली का गायन सुन रहे थे। अब आज का भारत भारती कार्यक्रम समाप्त करने की प्रमिला को दीजिए इजाजत। नमस्कार। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। देश का चैनल, देश के लिए। सुनते रहिए।

सुनो कहानी, कहानी जो बचपन में नानी दादी सुनाया करती थी, कहानी जो हमें स्वप्न लोक और काल्पनिक लोक में ले जाया करती हैं, कहानी जिनको सुनते सुनते हम बड़े हो गए, कहानी जो मन को छू लेती हैं, दिल में उतर जाती हैं, जीवन के अनछुए मार्मिक और ज्ञान वर्धक पहलुओं पर प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम सुनो कहानी।

नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो मित्र भारती। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। कार्यक्रम सुनो कहानी लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं और आज हम अपने कार्यक्रम में जीवन की सच्चाइयों को दर्शाती अनूठी कहानी हम आपको सुनाने वाले हैं, मुंशी प्रेमचंद की लिखी सौभाग्य के कोड़े। लड़के क्या अमीर के हों क्या गरीब के हों, विनोदशील हुआ ही करते हैं। उनकी चंचलता बहुधा उनकी दशा और स्थिति की परवाह नहीं करती है। नथुआ के माँ बाप दोनों स्वर्गवासी हो चुके थे। अनाथों की भांति वो राय भोलानाथ के द्वार पर पड़ा रहता था। राय साहब दयाशील पुरुष थे, कभी कभी एक आध पैसा भी दे देते थे। खाने को भी घर में इतना जूठा बचता था कि ऐसे ऐसे कई अनाथ पल सकते थे। पहनने को भी उनके लड़कों के उतारे मिल जाते थे, इसलिए नथुआ अनाथ होने पर भी अब दुखी नहीं था। राय साहब ने उसे एक धर्म परिवर्तन करने वाली संस्था से छुड़ाया था। इन्हें इसकी परवाह नहीं थी कि मिशन में उसकी एक शिक्षा होगी, आराम से रहेगा। उन्हें ये मंजूर था कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म में रहे। अपने घर के जूठे भोजन को वो मिशन के भोजन से कहीं पवित्र समझते थे। उनके कमरों की सफाई मिशन की पाठशाला की पढ़ाई से कहीं बढ़कर थी। हिंदू रहे चाहे जिस दिशा में रहे, जिस दशा में रहे। नथुआ को बस राय साहब के बंगले में झाड़ू लगा देने के सिवाय और कोई काम नहीं था। भोजन करके खेलता फिरता था। कर्म के अनुसार ही उसकी अब वर्ण व्यवस्था हो गई थी। नथुआ को कोई ऐतराज नहीं था। नाम की स्थिति पर क्या असर पड़ता है इसकी उस गरीब को कुछ खबर नहीं थी, कुछ हानि नहीं थी। उसे झाड़ू देते समय कभी पैसे पड़े मिल जाते, कभी कोई चीज मिल जाती और वो उससे नशा भी कर लिया करता था। नौकरों के साथ उठने बैठने से उसे बचपन में ही तंबाकू, सिगरेट और पान का चस्का लग गया था। राय साहब के घर में यूं तो बालक बालिकाओं की कमी नहीं थी, दर्जनों भांजे भतीजे रहते थे, पर उनकी निज की संतान केवल एक पुत्री थी और उसका नाम था रत्ना। रत्ना को पढ़ाने दो मास्टर आते थे, एक मेम साहब अंग्रेजी पढ़ाने आती थी। राय साहब की ये हार्दिक अभिलाषा थी कि रत्ना सर्वगुण संपन्न हो जाए और जिस घर में भी जाए उसकी लक्ष्मी बने। वो उसे अन्य बालकों के साथ नहीं रहने देते थे, उसके लिए अपने बंगले में दो कमरे अलग से बनवा दिए थे, एक पढ़ने के लिए तो दूसरा सोने के लिए। लोग कहते हैं ना, लाड़ प्यार से बच्चे जिद्दी और शरीर हो जाते हैं, लेकिन रत्ना इतने लाड़ प्यार में भी बड़ी सुशील बालिका थी। किसी नौकर को उसने रे करके नहीं पुकारा था, किसी भिखारी तक को नहीं दुत्कारती थी। नथुआ को वो पैसे मिठाइयाँ सब देती थी, कभी कभी उससे बातें भी करती थी और वो लड़का उसके मुंह लग गया था। एक दिन नथुआ रत्ना के कमरे में झाड़ू लगा रहा था, रत्ना दूसरे कमरे में थी, मेम साहब से अंग्रेजी पढ़ रही थी। नथुआ की शामत तो आई, झाड़ू लगाते लगाते उसके मन में इच्छा हो गई कि क्यों ना रत्ना के पलंग पर सो जाऊं। कैसी यूजली चादर है, गद्दा, अरे वाह कितना नरम और मोटा है और कितना सुंदर दुशाला है। रत्ना इस गद्दे पर कितने आराम से सोती होगी ना। हाँ बिल्कुल वैसे ही जैसे चिड़िया के बच्चे घोंसले में। तभी तो रत्ना के हाथ इतने गोरे और कोमल है, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे देह में रुई भरी हो, यहाँ कौन देखता है। और यही सोचकर उसने पैर फर्श में पोछे और चटपट पलंग पर आकर लेट गया, दुशाला भी ओढ़ ली। गर्व और आनंद से उसका हृदय पुलकित हो गया। वो मारे खुशी के दो तीन बार पलंग पर उछल पड़ा। उसे ऐसा मालूम हो रहा था कि मानो वो रुई में लेटा हो। जिधर करवट लेता देह अंगुल भर धस जाती थी। ये स्वर्गीय सुख उसे कहां नसीब था। वो सोचने लगा, मुझे भगवान ने राय साहब का बेटा क्यों नहीं बनाया। सुख का अनुभव होते ही उसे अपनी दशा का वास्तविक ज्ञान हुआ और उसका चित शुद्ध हो गया।

एकाएक राय साहब किसी जरूरत से कमरे में आए तो नथुआ को रत्ना के पलंग पर लेटे देखा। मारे क्रोध के वो तो जल उठे और जोर से चिल्लाकर बोले, क्यों रे, तू ये क्या कर रहा है? नथुआ जैसे घबरा गया हो, मानो नदी में पैर फिसल गया हो, चारपाई से कूदकर अलग खड़ा हो गया और फिर हाथ में झाड़ू ले ली। राय साहब ने फिर पूछा, ये क्या कर रहा था तू यहाँ पे? नथुआ सिर झुकाए खड़ा था। कुछ तो नहीं सरकार। राय साहब ने जोर से बोला, अब तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तू मेरी बेटी रत्ना की चारपाई पे सोए? ला तो मेरा हंटर। हंटर मंगवा कर राय साहब ने नथुआ को खूब पीटा। बेचारा हाथ जोड़ता रहा, पैर पड़ता रहा, मगर राय साहब का क्रोध शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। सब नौकर जमा हो गए, नथुआ के जले पर नमक छिड़कने लगे। राय साहब का क्रोध और भी बढ़ गया। हंटर हाथ से फेंक कर ठोकरों से मारने लगे। रत्ना ने ये रोना सुना तो दौड़कर आ गई और समाचार सुनकर बोली, दादाजी मर जाएगा बेचारा, छोड़ दीजिए, दया कीजिए इस पे। राय साहब ने भी कड़क कर बोला, मर जाएगा? उठवाकर फिकवा दूंगा, इस बदमाशी का मजा तो इसे मिलना चाहिए। रहने दीजिए दादा, मेरी ही चारपाई थी ना, मैं उसे क्षमा करती हूँ, रत्ना ने बड़े प्यार से कहा दादा से। राय साहब ने कहा, जरा देखो तो अपनी चारपाई की गत, पाजी के बदन की मैल भर गई होगी, इसे क्या सूझी थी पता नहीं। ये कहकर राय साहब फिर लपके, मगर नथुआ आकर रत्ना के पीछे दुबक गया। इसके सिवा अब उसे कहीं शरण नहीं थी। रत्ना ने रोक कर कहा, दादाजी मेरे कहने से अब इसको क्षमा कर दीजिए, अपराध क्षमा कर दीजिए। क्या कहती हो रत्ना, ऐसे अपराधी कहीं क्षमा किए जाते हैं? खैर तुम्हारे कहने पर छोड़ देता हूँ, नहीं तो इसकी आज मैं जान ले लेता। अब सुना तूने, अपना भला चाहता है ना तो यहाँ नहीं आना, इसी समय निकल जा नालायक। और नथुआ प्राण छोड़कर भाग गया, पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। सड़क पर पहुंचकर वो खड़ा हो गया। यहाँ राय साहब उसका कुछ नहीं कर सकते थे, यहाँ सब लोग उनकी मुंह देखी तो ना कहेंगे, कोई तो कहेगा कि लड़का था, भूल ही तो हो गई, प्राण ले लोगे क्या? यहाँ मारे तो देखूं, गाली देकर भागूंगा, फिर देखती हूँ कौन मुझे पाएगा। और इस विचार से उसकी हिम्मत बंध गई। बंगले की तरफ मुंह करके उसने जोर से बोला, यहाँ आओ तो देखूंगा, और फिर भाग गया। राय साहब सुन नहीं पाए। नथुआ थोड़ी दूर ही गया था कि रत्ना की मेम साहिबा अपनी टमटम पर सवार होकर आती हुई दिखाई दी। उसने समझा शायद मुझे पकड़ने आ रही है, वो फिर भागा। किंतु जब पैरों में दौड़ने की शक्ति नहीं थी तो वो खड़ा हो गया। उसके मन ने कहा, वो मेरा क्या कर लेंगी, मैंने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा। और एक क्षण में मेम साहिबा आ पहुंची और टमटम रोककर उससे बोली, नाथू कहाँ जा रहे हो? नथुआ ने धीरे से कहा, कहीं नहीं जा रहा। मेम साहब ने फिर कहा, राय साहब के यहाँ फिर जाएगा तो वो मारेंगे, क्यों ना मेरे साथ चल तू, मिशन में आराम से रहना और आदमी हो जाएगा। नथुआ ने बोला, किरस्तान तो ना बनाओगी? मेम साहिबा ने हंस के बोला, किरस्तान नहीं रे, आजा। नथुआ बोला, ना भैया मैं नहीं चलूंगा, मैं किरस्तान नहीं बनूंगा। मेम साहिबा ने फिर कहा, तेरा जी चाहे तो बनना, कोई जबरदस्ती थोड़ी ही है। नथुआ थोड़ी देर तक तो टमटम देखता रहा और फिर साथ हो लिया, पर उसके मन में संशय बना हुआ था और अचानक वो उतर भी गया। मेम साहिबा ने फिर पूछा, क्या हो गया, चलता क्यों नहीं? नथुआ बोला, मैंने सुना है मिशन में जो कोई जाता है किरस्तान हो जाता है, मैं नहीं जाऊंगा, आप झांसा देती हो। अरे पागल, वहां तुझे पढ़ाएंगे, किसी की चाकरी नहीं करनी होगी, शाम को खेलने की छुट्टी मिलेगी, कोट पतलून मिलेगी पहनने को, चल एक दो दिन देख लेना। नथुआ ने इस प्रलोभन का उत्तर नहीं दिया, एक गली से होकर भाग गया। और जब टमटम दूर निकल गई तो वह निश्चित होकर सोचने लगा, जाऊं कि नहीं जाऊं, कहीं कोई सिपाही पकड़कर थाने ना ले जाए, मेरी बिरादरी के लोग तो वहां रहते हैं, क्या वो मुझे अपने घर रखेंगे, कैसे बैठकर खाऊंगा।
काम तो करूंगा, बस किसी की पीठ पर रहना चाहता हूँ। आज कोई मेरी पीठ पर होता तो मजाल थी कि राय साहब मुझे मारते। सारी बिरादरी जमा हो जाती, घेर लेती उनको और घर की सफाई बंद हो जाती। कोई द्वार पर झाड़ू तक नहीं लगाता, सारी राय साहब ही निकल जाती उनकी। और ये निश्चय करके वो घूमता फिरता हुआ अपने मोहल्ले में पहुंच गया। शाम हो गई थी। उसकी बिरादरी के कई लोग एक पेड़ के नीचे चटाइयों पर बैठे शहनाई और तबला बजा रहे थे।

0: वो नित्य इसका अभ्यास करते थे और यही उनकी जीविका थी। नथुआ जाकर वहां खड़ा हो गया और बहुत ध्यान से सुनने लगा। तब एक व्यक्ति ने कहा, कुछ गाते हो?
1: अभी तो नहीं गाता, पर सिखा दोगे तो गाने लगूंगा।
0: नथुआ ने भी तुरंत उत्तर दे दिया था, बहाना मत कर, बैठ जा, कुछ गाकर सुना। मालूम तो हो कि तेरा गला भी है या कि नहीं?
1: गला ही ना होगा तो क्या सिखाएगा और क्या सीखेगा?
0: नथुआ मामूली बाजार के लड़कों की तरह कुछ ना कुछ गाना तो जानता था। रास्ते चलता तो कुछ ना कुछ गाने लगता। तुरंत गाने लगा उसने। उस्ताद ने सुना, जौहरी था, समझ गए कि ये कांच का टुकड़ा नहीं है और उन्होंने कहा कि कहाँ रहते हो? नथुआ ने अपनी राम कहानी सुना दी। अब तो परिचय हो गया था, उसे आश्रय मिल गया था और विकास का वो अवसर जिसने उसे भूमि से आकाश पर पहुंचा दिया। 3 साल हवा में उड़ गए। नथुआ के गाने की सारे शहर में धूम मच गई। वो केवल एक गुणी नहीं, सर्वगुणी था। गाना, शहनाई बजाना, पखावज, सारंगी, तंबूरा, सितार, सभी कलाओं में वो दक्ष हो गया था। उस्तादों को भी उसकी चमत्कारिक बुद्धि पर आश्चर्य हो रहा था। ऐसा मालूम होता था कि उसने पहले ही ये पढ़ी हुई विद्या अब दोहरा ली है। 10-10 सालों में जो लोग सितार बजाना सीखते हैं और उन्हें नहीं आता, नथुआ को 1 महीने में उनके तारों का ज्ञान हो गया। ऐसे कितने ही रत्न पड़े हैं जो किसी पारखी से भेंट न होने के कारण आज भी मिट्टी में हैं। संयोग से इन्हीं दिनों ग्वालियर में एक संगीत सम्मेलन हुआ। देश देशांतरों से संगीत के आचार्य निमंत्रित हो गए। उस्ताद घूरे को भी नेवता मिला था। नथुआ इन्हीं का शिष्य था। उस्ताद ग्वालियर चले तो नाथू को भी साथ ले गए। 1 सप्ताह तक ग्वालियर में बड़ी धूमधाम रही। नाथूराम ने भी खूब नाम कमाया, सोने का तमगा इनाम में मिला। ग्वालियर के संगीत विद्यालय के अध्यक्ष ने उस्ताद घूरे से आग्रह किया कि नाथूराम को संगीत विद्यालय में दाखिला करा दे, यहाँ संगीत के साथ उसकी शिक्षा भी हो जाएगी। उस्ताद घूरे को मानना पड़ा और नाथूराम भी राजी हो गए। नाथूराम ने 5 वर्षों में विद्यालय की सर्वोच्च उपाधि प्राप्त कर ली। उसके साथ साथ भाषा, गणित, विज्ञान में उसकी बुद्धि ने अपनी प्रखरता का परिचय दिया। अब वो समाज का भूषण था। कोई उससे नहीं पूछता था कि वो किस जाति का है। उसका रहन सहन, तौर तरीका अब गायकों का सा था, शिक्षित समुदाय का था। अपने सम्मान की रक्षा के लिए वो ऊंचे वर्ण वाले लोगों का आचरण रखने लगा। मांस मदिरा उसने त्याग दिया, नियमित रूप से संध्योपासना करता। कुलीन ब्राह्मण भी इतना आचार विचार नहीं करते जितना नाथूराम करता था। नाथूराम तो पहले ही उसका नाम हो चुका था, अब उसका कुछ और सुसंस्कार हुआ और वो नाथूराम आचार्य मशहूर हो गया। साधारण लोग आचार्य ही कहा करते थे। राज दरबार से उसे अच्छा वेतन मिलने लगा। 18 वर्ष की आयु में इतनी ख्याति बिरले ही किसी गुनी को नसीब होती है, लेकिन ख्याति, प्रेम की वो प्यास कभी नहीं बुझती। वो अगस्त ऋषि की भांति सागर को पीकर भी शांत नहीं होती है। महाशय आचार्य ने यूरोप का प्रस्थान किया। वो पाश्चात्य संगीत पर भी अधिकृत होना चाहते थे। जर्मनी के सबसे बड़े संगीत विद्यालय में उनका दाखिला हो गया और 5 वर्षों के निरंतर परिश्रम और उद्योग के बाद आचार्य की पदवी लेकर इटली की सैर करते हुए ग्वालियर वो लौट आए और उसके 1 ही सप्ताह बाद मदन कंपनी ने उन्हें 3,000 रुपए मासिक वेतन पर अपनी शाखाओं पर निरीक्षक नियुक्त कर लिया। वो यूरोप जाने के पहले ही 1,000 रुपए जमा कर चुके थे। यूरोप में भी ओपराओं और नाट्यशालाओं में उनकी खूब आवभगत हुई थी। कभी कभी तो एक दिन की आमदनी इतनी हो जाती थी कि वहां के बड़े बड़े गवैयों को बरसों में नहीं होती थी। लखनऊ से विशेष प्रेम होने के कारण उन्होंने वहीं निवास करने का निश्चय कर लिया। आचार्य महाशय लखनऊ पहुंचे तो उनका चित गदगद हो गया। यहीं तो उनका बचपन बीता था, यहीं एक दिन अनाथ थे, यहीं गलियों में कनकौए लूटते फिरते थे, यहीं बाजारों में पैसे मांगते फिरते थे। आह, यहीं पर हंटरों की मार भी पड़ी थी, जिसके निशान अब तक थे। अब वो दाग इन्हें सौभाग्य की रेखाओं से भी प्रिय लगते हैं। यथार्थ में वो कोड़े की मार उनके लिए शिव का वरदान थी।
1: राय साहब के प्रति अब उनके दिल में क्रोध या प्रतिकार का लेश मात्र भी निशान नहीं था। उनकी बुराइयां वो भूल चुके थे, याद थी तो भलाइयां। और रत्ना, रत्ना तो उन्हें दया और वात्सल्य की मूर्ति अभी भी याद थी। विपत्ति पुराने घावों को बढ़ाती है और संपत्ति उन्हें भर देती है। गाड़ी से उतरे तो छाती धड़क रही थी। 10 वर्ष का बालक अब 23 वर्ष का जवान था, शिक्षित भद्र युवक था। उसकी माँ भी उसे देखकर नहीं कह सकती थी कि ये मेरा ही नथुआ है, लेकिन उनकी कायापलट की अपेक्षा नगर की कायापलट और भी विस्मयकारी थी। वो लखनऊ नहीं रह गया था, अब तो दूसरा ही शहर था। स्टेशन से बाहर निकलते ही देखा कि शहर के कितने ही छोटे बड़े आदमी उसका स्वागत करने के लिए खड़े हैं। उनमें एक युवती बहुत रमणीय थी, जो रत्ना से बहुत कुछ मिलती थी। लोगों ने उनसे हाथ मिलाया और रत्ना ने उनके गले में फूलों का हार डाल दिया। ये विदेश में भारत का नाम रोशन करने का पुरस्कार था। आचार्य के पैर डगमगाने लगे। ऐसा जान पड़ता था कि अब नहीं खड़े रह पाएंगे। ये वही रत्ना है, भोली भाली बालिका ने सौंदर्य, लज्जा और गर्व, विनय की देवी का रूप धारण कर लिया था। उनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि रत्ना की तरफ सीधी आंखें देख सकें। लोगों से हाथ मिलाने के बाद वो उस बंगले में आए जो उनके लिए पहले से ही सजाया गया था। देखकर वो चौंक पड़े। ये वही बंगला था जहां रत्ना के साथ वो खेलते थे। सामान भी वही था, तस्वीरें भी वही थी, कुर्सियां और मेजें भी वही थी, शीशे के आलात वही थे, यहां तक कि फर्श भी आज भी वही था। उसके अंदर कदम रखते ही आचार्य महाशय के हृदय में कुछ वही भाव जागृत हो रहे थे जो किसी देवता के मंदिर में जाकर धर्मपरायण हिंदू के हृदय में होते हैं। वो रत्ना के शयनगार में पहुंच गए तो उनके हृदय में ऐसी ऐठन हुई कि आंसू बहने लगे। ये वही पलंग है, वही बिस्तर और वही फर्श। और उन्होंने अधीर होकर पूछ लिया, ये किसका बंगला है? कंपनी का मैनेजर साथ में था, उसने बताया एक राय भोलेनाथ हैं, उन्हीं का है। आचार्य जी ने पूछा, राय साहब कहाँ चले गए? मैनेजर ने जवाब दिया, खुदा जाने कहाँ चले गए। ये बंगला कर्ज की इल्लत में नीलाम हो रहा था। मैंने देखा हमारे थिएटर से करीब है, अधिकारियों से खतो खिताब की और इसे कंपनी के नाम खरीद लिया। 40,000 में ये बंगला सामान समेत मिल गया। मुफ्त मिल गया, तुम्हें राय साहब की कुछ खबर नहीं? मैनेजर ने जवाब दिया, सुना था कि कहीं तीर्थ करने गए थे, खुदा जाने लौटेंगे भी कि नहीं। आचार्य महाशय जब शाम को सावधान होकर बैठे तो एक आदमी से पूछ लिया, क्यों जी, उस्ताद घूरे का भी हाल जानते हो? उनका नाम बहुत सुना है। आदमी ने सकरुण भाव से कहा, खुदाबंद, उनका हाल कुछ ना पूछिए। शराब पीकर घर आ रहे थे, रास्ते में बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़े। मोटर गाड़ी आ रही थी, ड्राइवर ने देखा नहीं और गाड़ी उनके ऊपर से निकल गई। खुदाबंद अपने फन में एक था। अब उनकी मौत से लखनऊ वीरान हो गया है। अब ऐसा कोई नहीं रहा जिस पर लखनऊ को घमंड हो। नथुआ नाम के एक लड़के को उन्होंने कुछ सिखाया था और उससे हम लोगों को उम्मीद थी कि उस्ताद का नाम जिंदा रहेगा, पर वो यहां से ग्वालियर चले गए, अब पता नहीं कहां है। आचार्य महाशय के प्राण सूखे जाते थे कि बात अब खुली कि तब खुली। दम रुका हुआ था कि जैसे कोई तलवार लिए सिर पर खड़ा हो। बड़ी मुश्किल से घड़ा चोट खाकर भी बच गया था। आचार्य महाशय उस घर में रहते थे, किंतु उसी तरह जैसे कोई नई बहू अपने ससुराल में रहती है। उनके हृदय में पुराने संस्कार नहीं मिटे थे। उनकी आत्मा इस यथार्थ को स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि ये मेरा घर है। वो जोर से हंसते तो सहसा चौंक पड़ते, मित्रगण आकर शोर मचाते तो उन्हें एक अज्ञात शंका होती थी। लिखने पढ़ने के कमरे में शायद वो सोते तो उन्हें रात भर नींद नहीं आती, एक ही ख्याल रहता। और रत्ना के शयनगार को तो उन्होंने कभी खोला ही नहीं, वो ज्यों का त्यों बंद पड़ा था। उसके अंदर जाते हुए उनके पैर थरथराने लगते थे और उस पलंग पर सोने का ध्यान ही उन्हें नहीं आता था। लखनऊ में कई बार उन्होंने विश्वविद्यालय में अपने संगीत नैपुण्य का चमत्कार दिखाया। राजा रईस के घर अब वो गाने नहीं जाते थे, चाहे कोई उन्हें लाखों रुपए क्यों ना दे। उनका प्रण था लोग उनका अलौकिक गान सुनकर अलौकिक आनंद उठाएं। एक दिन प्रातःकाल आचार्य महाशय संध्या से उठे ही थे कि राय भोलानाथ उनसे मिलने आ पहुंचे। रत्ना उनके साथ थी। आचार्य महाशय पर रोब छा गया। बड़े बड़े यूरोपीय थिएटरों में भी उनका हृदय इतना भयभीत नहीं हुआ था। उन्होंने जमीन पर झुककर राय साहब को सलाम किया। भोलानाथ उनकी नम्रता से कुछ विस्मित हो गए थे। बहुत दिन हुए जब लोग उन्हें सलाम किया करते थे, अब तो जहां जाते थे हंसी उड़ाई जाती थी। रत्ना भी लज्जित हो गई। राय साहब ने कातर नेत्रों से इधर उधर देखा और धीरे से पूछा, आपको ये जगह पसंद तो आई होगी ना? आचार्य ने कहा, जी हाँ, इससे उत्तम स्थान की तो मैं कल्पना ही नहीं कर सकता था। ये मेरा बंगला है, मैंने ही इसे बनवाया और मैंने ही इसे बिगाड़ दिया। रत्ना ने झेपते हुए कहा, दादाजी इन बातों से क्या फायदा? भोलानाथ जी बोले, फायदा नहीं है बेटी, नुकसान भी नहीं है। सज्जनों से अपनी विपत्ति कहने से चित शांत होता है। महाशय, ये मेरा ही बंगला है, या यूं कहिए कि था। 50,000 सालाना इलाके से मिलते थे। कुछ आदमियों की संगत में मुझे सट्टे का चस्का लग गया। 2-3 बार ताबड़तोड़ बाजी हुई, हिम्मत खुल गई, लाखों के वारे न्यारे हो गए, किंतु एक ही घाटे में सारी कसर निकल गई। बधिया बैठ गई, सारी जायदाद खो बैठा मैं। सोचिए, 25 लाख का सौदा था। कौड़ी चित्त पड़ती तो आज इस बंगले का कुछ और ही ठाट होता, नहीं तो अब पिछले दिनों को याद करके ही हाथ मलता हूँ। मेरी रत्ना को आपके गाने से बड़ा प्रेम है, जब देखो आपकी चर्चा करती है। इसे मैंने बीए तक पढ़ाया है। रत्ना का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने धीरे से बोला, दादाजी आचार्य महाशय मेरा हाल जानते हैं, उनको मेरे परिचय की जरूरत नहीं है। महाशय क्षमा कीजिएगा, पिताजी उस घाटे के कारण कुछ अव्यवस्थित हो गए हैं। आपसे प्रार्थना करने आए हैं कि आपको कोई आपत्ति ना हो तो कभी कभी इस बंगले को देखने आ जाएं, इससे इनके आंसू पुष जाएंगे। उन्हें इस विचार से संतोष होगा कि मेरा कोई मित्र इसका स्वामी है। बस यही कहने के लिए ये आपकी सेवा में आए हैं। आचार्य ने विनयपूर्वक शब्दों में कहा, अरे इसमें पूछने की जरूरत नहीं है, घर आपका है, जिस वक्त जी चाहे शौक से आइएगा। बल्कि आपकी इच्छा हो तो आप इसमें रह भी सकते हैं, मैं अपने लिए कोई दूसरा स्थान ठीक कर दूंगा। राय साहब ने धन्यवाद दिया और चले गए। वो दूसरे तीसरे दिन यहाँ जरूर आते थे और घंटों बैठे रहते थे। रत्ना भी आती थी। एक दिन उन्होंने आचार्य महाशय को एकांत में ले जाकर पूछा, क्षमा कीजिएगा, आप अपने बाल बच्चों को क्यों नहीं बुला लेते? अकेले तो कष्ट होता होगा। मेरा तो अभी विवाह नहीं हुआ और ना करना चाहता हूँ, आचार्य ने साफ कह दिया। ये कहते ही आचार्य महाशय ने आंखें नीची कर ली। ये क्यों, विवाह से आपको द्वेष है? कोई विशेष कारण तो नहीं? आप ब्राह्मण हैं? आचार्य का रंग उड़ गया। उन्होंने सशंक होकर कहा, यूरोप की यात्रा के बाद वर्ण भेद नहीं रहा। आपकी नम्रता को धन्य है, संसार में ऐसे सज्जन लोग भी कम हैं। मैं भी कर्मों से ही वर्ण मानता हूँ। नम्रता, शील, विनय, आचार, धर्मनिष्ठा और विद्या प्रेम, ये सब ब्राह्मणों के गुण हैं और मैं आपको ब्राह्मण ही समझता हूँ। जिसमें ये गुण नहीं वो ब्राह्मण हो भी नहीं सकता। रत्ना को आपसे बड़ा प्रेम है, आज तक कोई पुरुष उसकी आंखों में नहीं जचा, किंतु आपने उसे वशीभूत कर लिया है। आचार्य जी इस धृष्टता को क्षमा कीजिए। आपके माता पिता? मेरे माता पिता तो आप ही हैं, जन्म किसने दिया ये मैं स्वयं नहीं जानता। मैं बहुत छोटा था तभी उनका स्वर्गवास हो गया, आचार्य ने कह दिया। आह, वो आज जीवित होते तो आपको देखकर उनकी गज भर की छाती होती, ऐसे सपूत बेटे कहाँ मिलते हैं। और इतने में ही रत्ना एक कागज लिए हुए आई और राय साहब से बोली, दादाजी आचार्य महाशय काव्य रचना भी करते हैं, मैं इनकी मेज पर से ये उठाकर लाई हूँ। सरोजनी नायडू के सिवा ऐसी कविता मैंने और कहीं नहीं देखी। आचार्य ने छिपी हुई निगाहों से एक बार रत्ना को देखा और झेपते हुए बोले, बस यूं ही कुछ लिख लेता हूँ, मैं काव्य रचना क्या जानूं। प्रेम से दोनों विहल हो उठे। रत्ना उनके गुणों पर मोहित थी और आचार्य उनके मोह के वशीभूत। अगर रत्ना उनके रास्ते में ना आती तो कदाचित वो उससे परिचित भी ना होते। किंतु प्रेम की फैली हुई बाहों का आकर्षण किस पर नहीं होगा। ऐसा हृदय कहाँ है जिसे प्रेम जीत न सके। आचार्य महाशय बड़ी दुविधा में थे। उनका दिल कहता था, जिस क्षण रत्ना पर मेरी असलियत खुल जाएगी उसी क्षण वो मुझसे सदैव के लिए मुंह फेर लेगी। वो कितनी ही उदार क्यों ना हो, जाति के बंधन को कितना कष्टमय समझती है वो, और इस घृणा से मुक्त नहीं हो पाएगी। इस प्रकार 3-4 महीने व्यतीत हो गए। आचार्य महाशय सोचते, ये वही राय साहब हैं जिन्होंने केवल रत्ना की चारपाई पर जरा देर लेटने के लिए मुझे मार मार कर घर से निकाल दिया था। जब उन्हें मालूम होगा कि मैं वही अनाथ आश्रयहीन बालक हूँ तो उन्हें कितनी आत्मवेदना होगी, कितनी अपमान पीड़ा होगी, कितनी लज्जा होगी और कितनी दुराशा होगी, कितना पश्चाताप होगा। एक दिन राय साहब ने कह दिया, विवाह की तिथि निश्चित कर लेनी चाहिए। इस लगन में इस ऋण से मैं उऋण होना चाहता हूँ। आचार्य महाशय ने बात का मतलब समझकर भी प्रश्न किया, कैसी तिथि, क्या कहना चाहते हैं? यही रत्ना के विवाह की। मैं कुंडली का तो कायल नहीं, पर विवाह तो शुभ मुहूर्त में ही होगा। आचार्य भूमि की ओर ताकते रहे और कुछ नहीं बोले। मेरी अवस्था तो आपको मालूम है, कुश कन्या के सिवा और किसी योग्य नहीं हूँ मैं। रत्ना के सिवा और कौन है जिसके लिए मैं। आचार्य महाशय विचारों में मग्न थे। राय साहब कह रहे थे, रत्ना को आप स्वयं जानते हैं। लेकिन आचार्य ने अवरुद्ध कंठ से कहा, महाशय आप मेरे पिता तुल्य हैं, पर मैं इस योग्य कदापि नहीं हूँ। राय साहब ने उसे गले से लगा लिया, बेटा तुम सर्वगुण संपन्न हो, तुम समाज के भूषण हो, मेरे लिए महान गौरव की बात हो। तुम जैसा दामाद पाऊं मैं आज तिथि ठीक करके कल आपको सूचना दे दूंगा। ये कहकर राय साहब उठ गए। आचार्य कुछ कहना चाहते थे पर मौका नहीं मिला, या यूं कहूं कि हिम्मत नहीं पड़ी। विवाह हुए महीना भर हो गया। रत्ना के आने से पति गृह में उजाला हो गया और पति हृदय पवित्र, सागर में कमल खिल गया। रात का समय था, आचार्य महाशय भोजन करके लेटे थे उसी पलंग पर जिसने किसी दिन उन्हें इस घर से निकलवाया था, जिसने उनके भाग्य चक्र को परिवर्तित कर दिया था। महीना भर से ये वो अवसर ढूंढ रहे थे कि रत्ना को वो रहस्य बता दें, लेकिन वो संस्कारों के कारण नहीं बता पा रहे थे। इतने में रत्ना मुस्कुराती हुई कमरे में आई। दीपक की ज्योति मंद थी। आचार्य ने मुस्कुराकर कहा, अब चिराग गुल कर दूं? तो रत्ना ने मुस्कुराकर कहा, नहीं। तो आचार्य ने कहा, हाँ वास्तव में शर्म आती है। रत्ना ने कहा, इसलिए कि मैंने तुम्हें जीत लिया। नहीं, इसलिए कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है। आचार्य का स्वर कठोर था। रत्ना ने आश्चर्य से कहा, तुम में धोखा देने की शक्ति नहीं है। तुम नहीं जानती रत्ना, मैंने तुम्हें बहुत बड़ा धोखा दिया है। सब जानती हूँ मैं, रत्ना ने निश्चिंत भाव से कहा। तो आचार्य ने भी कहा, जानती हो मैं कौन हूँ? खूब जानती हूँ और बहुत दिनों से जानती हूँ। जब हम तुम दोनों इसी बगीचे में खेला करते थे, मैं तुमको मारती थी और तुम रोते थे। मैं तुमको अपनी जूठी मिठाइयाँ देती थी और तुम दौड़ कर लेते थे। तब भी मुझे तुमसे प्रेम था, पर वो दया के रूप में व्यक्त था। आचार्य तो आश्चर्यचकित था। रत्ना, ये जानकर भी तुमने मुझसे? हाँ जानकर ही, जानती थी, ना जानती तो शायद ना करती। रत्ना ने भी बेफिक्री से कह दिया। आचार्य तो उठकर बैठ गए। ये वही चारपाई है रत्ना? आचार्य ने उसे गले लगा लिया। रत्ना, तुम सच में क्षमा की देवी हो? रत्ना ने उत्तर दिया, नहीं स्वामी, मैं तुम्हारी चेरी हूं। आचार्य ने कहा, राय साहब भी जानते हैं? तब रत्ना ने कहा था, नहीं उन्हें नहीं मालूम, और तुम उनसे भूलकर भी नहीं कहना। नहीं तो वो आत्मघात कर लेंगे। हाँ सही बात है, वो कोड़े अभी तक याद हैं, आचार्य ने कहा। और रत्ना ने कहा, अब पिताजी के पास उसका प्रायश्चित करने के लिए कुछ नहीं रह गया है। क्या अभी तुम्हें संतोष नहीं है? संतोष कर लो। और रत्ना आचार्य के कदमों में झुक गई।

0: तो ये थी जीवन की सच्चाइयों को दर्शाती अनूठी कहानी, मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी सौभाग्य के कोड़े। अब दीजिए भारती को अनुमति और सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: तो दोस्तों, ये था आज का कार्यक्रम सुनो कहानी। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए लेखक की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
3: अतुल्य भारत।
2: श्रोताओं, मैं हूं कंचन।
4: और मैं हूं आपका दोस्त प्रमोद शर्मा। श्रोताओं, हमारे कार्यक्रम का नाम है संस्कृति संवाद, और संस्कृति संवाद में आज हम बात करेंगे गाय की महिमा की।
2: गाय यानी कि गौ माता, भारतीय संस्कृति का एक ऐसा शब्द जिसने न जाने कितनी गाथाओं, कितनी कहावतों तथा कितने शब्दों का निर्माण किया है।
4: बिल्कुल ठीक।
2: पुराना चलन रहा है कि अध्यापक जब बच्चे को निबंध लिखना सिखाते थे तो सबसे पहले इसी विषय पर निबंध लिखना सिखाया जाता था। वजह ये थी कि हर घर में गाय लगभग होती ही थी, इसलिए इस पर निबंध लिखना कोई मुश्किल काम नहीं होता था।
4: हाँ, गाय का चित्र आंखों में आता और कलम लिखने के लिए हरकत में आ जाता। गाय का दूध, दही, घी और इससे बनने वाली मिठाइयां, स्वाद जीभ पर आता और शब्द बनकर कॉपी पे उतर जाता।
2: लेकिन समय बदला, संस्कृति बदली, गाय COW काऊ हो गई और केवल तस्वीरों में ही दिखने लगी। शहरों की तो छोड़िए, गांवों में भी जब खेतों में हल खींचने का काम बैलों के बजाय ट्रैक्टरों से लिया जाने लगा तो गौ संपदा को भारी हानि पहुंची। नतीजा ये हुआ कि अब गाय पर निबंध लिखने में बच्चों के हाथ पांव फूलने लगे।
4: हाँ, मुझे एक वाक्य याद आता है। एक बच्चे से एग्जाम में गाय पर निबंध लिखने को कहा गया। अब उस बेचारे ने बड़ी मासूमियत से लिख दिया अपनी कॉपी में कि गाय हमारी माता है और हमको कुछ नहीं आता है। पर परीक्षक महोदय इतने रहमदिल नहीं थे, उन्होंने भी कॉपी पर नंबर देने के बजाय एक टीप लगा दी कि बैल हमारा बाप है और नंबर देना पाप है। खैर, ये तो हुई केवल हास परिहास की बात।
2: श्रोताओं, गाय के अलावा कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो भारतीय धर्म, दर्शन, भाषा शास्त्र और अर्थव्यवस्था से इतनी गहराई से जुड़ा हो। ऋग्वेद से ही हम इसके बारे में सुनने लगते हैं और लगातार सुनते चले आते हैं। यहाँ तक आधुनिक काल में भी हिंदी के महान उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद का विश्व प्रसिद्ध उपन्यास गोदान गाय पर ही आधारित है।
4: हाँ, इस उपन्यास का नायक हौरी एक स्थान पर कहता है,

0: हो चुका है और देश विदेश के कितने पुरस्कार इसे मिले हैं इसकी कोई गिनती नहीं। काश हमारी नई पीढ़ी इसे पढ़े और अपनी जड़ों को समझे।
1: तो चलिए एक बार फिर अपनी जड़ों में झांकते हैं। आज से लगभग 4000 साल पहले की बात है, सत्तत्व सिंधु क्षेत्र में ऋग्वेद की रचनाएं लिखी जा रही थी। हमारे पूर्वजों के घर में गाय थी और मन में ईश्वर। गाय उनका पेट भी पालती थी और उन्हें ईश्वर से भी जोड़ती थी, इसलिए उनके अधिकतर शब्द गाय से शुरू होते थे। लोग बेटी को दुहिता कहते थे क्योंकि गाय दुहने का काम बेटी ही करती थी।
0: झरोके को गवाक्ष कहते क्योंकि वो उन्हें गाय की आंख जैसा दिखता था। जब किसी चीज की छानबीन और विश्लेषण करना होता तो उसे गवेषणा कहते। गाय का दूध अमृत माना जाता था, इसलिए अमृत का एक पर्यायवाची बना गौरस। जब दो राजा आपस में लड़ते तो उसे गविष्ठी कहा जाता, जिसका मतलब होता गायों की खोज। वजह ये थी कि उस दौर में युद्ध गायों के कारण ही लड़े जाते थे।
1: श्रोताओं, गेहूं का आटा आज हम सब लोग खाते हैं, पर अनाज हमारे भोजन की थाली का इतना अभिन्न अंग है कि इसके बिना हम भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते। पर क्या आप जानते हैं कि संस्कृत में गेहूं को क्या कहते हैं? गोधूम। जी हाँ, हमारे पूर्वज इस अनाज को गोधूम कहकर पुकारते थे, जिसका मतलब होता है गाय का धुआं।
0: इसी तरह जिस गोबर की खाद को आज भी हमारे वैज्ञानिक जमीन के लिए सबसे ज्यादा मुफीद मानते हैं, वो भी ऋग्वैदिक काल से ही उपयोग में लाई जा रही है। पूरा का पूरा ऋग्वेद गाय की महिमा से भरा पड़ा है। यहाँ तक इस ग्रंथ में एक पूरा का पूरा सूक्त ही गाय को समर्पित है। इसमें एक ऋषि कहते हैं, गौवे सब ऐश्वर्य का मूल है, मेरे लिए गौवे ही इंद्र हैं, गौओं का दूध ही अमृत की पहली घूंट है। हे गौ, तुम निर्बल व्यक्ति को बलवान बना देती हो और श्रीविहीन व्यक्ति को सुंदर। तुम्हारी वाणी कल्याणकारी है, तुमसे हमारा घर कल्याणकारी हो जाता है।
1: दुनिया के सबसे पुराने इस ग्रंथ में तो गाय को देवी कहा गया है और इसकी तुलना अदिति से की गई है, जो देवताओं की माता थी। कई ग्रंथों में इसे लक्ष्मी कहकर भी संबोधित किया गया है, जो सभी प्रकार के धन धान्य को देने वाली है।
0: सचमुच गाय धन और धान्य दोनों ही देती है। खेती के लिए अपना बछड़ा और अपने गोबर की खाद देकर वे धान्य देती थीं और धन तो वे स्वयं थीं, बिल्कुल अलाइव करेंसी।
1: जिस व्यक्ति के पास जितनी अधिक गाय होती थी उसे उतना ही धनी माना जाता था। आपको तो याद ही होगा कि भगवान श्री कृष्ण के पास कितनी गाय हुआ करती थी, और गाय चराने पर भी उनकी इज्जत कम नहीं होती थी। गाय जब संध्या बेला को जंगल से चरकर वापस आती थी तो उसके खुरों से धूल उड़ती थी जो आसमान में छा जाती थी, और इसलिए संध्या बेला को गोधूली बेला कहा जाता था।
0: श्रोताओं, भगवान श्री कृष्ण ने गायों को जितनी इज्जत बख्शी उसकी मिसाल दुनिया के इतिहास में कहीं भी देखने को नहीं मिल सकती। अवतार होकर भी वे गायों को चराने के लिए अपनी माँ से झगड़ा करते। इंद्रदेव के प्रकोप से गोकुल वासियों को बचाने के लिए जिस पर्वत को उन्होंने अपनी उंगली पर उठाया, दुनिया उसे श्री कृष्ण पर्वत के नाम से नहीं बल्कि गोवर्धन पर्वत के नाम से जानती है।
1: उन्होंने अपना बचपन गोकुल में बिताया, गोप गोपियों के साथ पले बढ़े, खुद भी वे गोपाल कहलाए। यहाँ तक कि मानव तन त्यागने के पश्चात स्वर्ग में भी गाय के नाम से ही उन्होंने अपना लोक बसाया और उसे नाम दिया गोलोक।
0: भगवान श्री कृष्ण के अलावा अन्य देवताओं की बात करें तो भगवान शिव का वाहन नंदी कौन है? गाय का बेटा ही तो है। आप किसी भी शिव पार्वती जी के मंदिर में चले जाइए, द्वार पर नंदी जी को प्रणाम करके ही आपको अंदर जाना पड़ेगा।
1: तो श्रोताओं, आप समझ ही सकते हैं कि गाय की जड़ें हमारे जीवन में कितनी गहरी हैं। गोबर व गोमूत्र के बिना कोई भी धार्मिक संस्कार नहीं होने वाला। चरणामृत में गाय का दूध, घी व दही पड़ना आज अनिवार्य है। यहाँ तक कहा गया है कि गाय के शरीर में 36 करोड़ देवी देवताओं का वास है। आपने गाय को पूज लिया तो सभी देवी देवताओं को पूज लिया।
0: श्रोताओं, वैसे तो कन्यादान को श्रेष्ठ दान माना जाता है, पर हमारे यहाँ गाय का दान

0: से भी अधिक श्रेष्ठ माना जाता है, इस लोक के लिए भी और परलोक के लिए भी। पिता जब अपनी बेटी की शादी करता है तो दहेज में उसे गाय देता है। पुरोहित को भी दक्षिणा गाय के रूप में ही दी जाती है।
1: श्रोताओं, ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है कि एक व्यक्ति ने 10,000 गायें दान में दे दी। आप समझ सकते हैं कि जब इतनी बड़ी संख्याओं में गाय दान दी जाती थी, यह भी आप समझ सकते हैं कि क्यों ऐसा कहा जाता है कि पुराने जमाने में हमारे देश में दूध व दही की नदियां बहा करती थीं।
0: परलोक में भी गाय ही इंसान को तारती थी, इसीलिए मृत्यु के वक्त गोदान करना अनिवार्य माना जाता था। जिसके पास गाय खरीदने के लिए पैसा न होता, वो प्रतीकात्मक गोदान करता। मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास गोदान से ये कुछ पंक्तियां हम आपको सुनवा रहे हैं।
1: हीरा ने रोते हुए कहा, भाभी दिल कड़ा करो और गोदान करा दो। दादा चले, और भी कई आवाज आई। हाँ हाँ, गोदान करा दो, यही समय है। धनिया यंत्र की भांति उठी। आज जो सुतली बेची थी 20 आने लाई थी, और पति के ठंडे हाथ में रखकर सामने खड़े दाता दीन से बोली, महाराज घर में गाय नहीं है, ना बच्चिया है, ना पैसे हैं। ये पैसे हैं और यही इनका गोदान है।
0: चलिए श्रोताओं, एक बार फिर से लौटते हैं ऋषि मुनियों की दुनिया में। जब खेती का आधार गाय, सेहत का आधार गाय, पूजा का आधार भी गाय, करेंसी तो वो भी गाय, संपत्ति गाय, इस दुनिया में गाय और उस दुनिया में भी गाय। नतीजा ये हुआ कि गाय को अघन्या कहा गया, अर्थात इस प्राणी की हत्या करने की मनाही है।
1: आधुनिक काल की बात करें तो महात्मा गांधी ने गौ संस्कृति की जबरदस्त वकालत की है। वे कहते हैं, मैं गाय की पूजा करता हूँ, इसकी पूजा के लिए अगर पूरे संसार से भी मुझे लड़ना पड़े तो मैं लड़ूंगा। गाय धरती से भी अधिक महान है, यह करोड़ों भारतीयों की माँ है।
0: लेकिन जैसे जैसे कृषि का यंत्रीकरण हुआ, गाय का महत्व कम होता गया। लोग बैलों की जगह ट्रैक्टर और मशीनें इस्तेमाल करने लगे। दूध के लिए भैंसे पाली जाने लगी और किसान गोबर की खाद को भूलकर केमिकल फर्टिलाइजर की तरफ झुकने लगे।
1: शुरू शुरू में यह ग्रीन रेवोल्यूशन सबको बड़ी अच्छी लगी। पैदावार बढ़ने लगी, किसानों की आमदनी बढ़ने लगी, अनाज के भंडार भरते चले गए। लेकिन आज इसने हमारे माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। इस ग्रीन रेवोल्यूशन ने मिट्टी को बर्बाद करके रख दिया है। कीड़े मकोड़े व बीमारियों से फसलों को बचाना मुश्किल होता जा रहा है। ग्राउंड वाटर का लेवल नीचे की तरफ उतरता जा रहा है।
0: वैज्ञानिक मानने लगे हैं कि अगर यही दौर चलता रहा तो एक दिन हम खेती से हाथ धो बैठेंगे। इसीलिए एक नया कंसेप्ट लॉन्च किया जा रहा है, एवरग्रीन फार्मिंग। इसमें खास बात यह है कि जानवर और खेती का रिश्ता फिर से बहाल करना होगा।
1: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद और कार्यक्रम है संस्कृति संवाद। और आज हम चर्चा कर रहे हैं गाय की महिमा की, और अब हम बात करेंगे भारत में गौ हत्या पर कानून के बारे में। श्रोताओं, भारत में गौ हत्या हमेशा से ही बहुत संवेदनशील मुद्दा रहा है। अगर 1857 की क्रांति को आप याद करें तो सिपाहियों की बगावत का एक प्रमुख कारण यही था कि राइफल की कारतूस में गाय की चर्बी का इस्तेमाल किया गया था।
0: आज के वक्त की बात करें तो हमारे यहाँ यानी कि मध्य प्रदेश सहित 6 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने गौ हत्या पर पूरी तरह से रोक लगा रखी है।
1: इतिहास की बात करें तो आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मुगल शासक जो कि मुसलमान थे, उन्होंने भी गोवध को पूरी तरह प्रतिबंधित कर रखा था। इसी तरह मैसूर के सुल्तान हैदर अली व टीपू ने भी अपने राज्य में गौ हत्या पर पाबंदी लगा रखी थी। यहां तक कि जो लोग गाय मारते थे या गाय का मांस खाते थे उनके हाथ काट दिए जाते थे।
0: श्रोताओं, ये तो भारत की बात हो रही है, भारत के बाहर की तस्वीर कुछ अलग ही है। आप ये सोचने की भूल न करें कि दुनिया में केवल भारत ही ऐसा देश है जो गाय की रक्षा को लेकर सजग है। बल्कि नेपाल तो हमसे भी एक कदम आगे है। इस देश में गौ हत्या पर पूरी तरह से पाबंदी है।
1: पड़ोसी देश म्यांमार की बात करें तो यहाँ पर गाय का मांस खाना पाप माना जाता है। खास करके यहाँ के बौद्ध लोग तो इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं। इतना ही नहीं, 1961 में इस देश में कानून बनाकर गौ हत्या को पूरी तरह से बंद कर दिया गया।
0: ज़ोरास्टर लोगों में कहा जाता है कि धरती की आत्मा गाय के भीतर होती है और किसी भी व्यक्ति को इस बात की इजाजत नहीं है कि इसके साथ बुरा बर्ताव करे। श्रोताओं, जिस तरह हमारे यहाँ वेद पवित्र हैं, वैसे ही पारसियों में अवेस्ता। इस ग्रंथ में कहा गया है कि गौमूत्र सभी चीजों को शुद्ध कर देता है, सभी तरह की बीमारियों के लिए ये रामबाण है।
1: चीन के लोगों की बात करें तो वहाँ कहा जाता है कि यहाँ के लोग सब कुछ खा सकते हैं, यहाँ तक कि सांप, छछुंदर, कुत्ते, बिल्ली भी। पर आपको अचरज होगा कि पुराने जमाने में चीन में गाय को मारना सर्वथा वर्जित था। इस संबंध में यहाँ का जनमत इतना प्रबल था कि राजा लोग भी गाय का मांस खाने की हिम्मत नहीं कर पाते थे।
0: जापान की बात करें तो पुराने जापान में भी गाय का मांस खाने की मनाही थी।
1: श्रोता, गो संस्कृति प्राचीन मिस्र का भी अंग रही है। वजह यह थी कि इसे हाथोर देवी का पवित्र प्रतीक माना जाता था।
0: श्रोताओं, आपने कई बार सुना होगा कि एक वृक्ष को काटने से उतना फायदा नहीं होता जितना उसके लगे रहने से होता है। ये बात वास्तव में गाय के संदर्भ में भी अक्षरशः सत्य है।
1: श्रोताओं, एक पुरानी कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। मतलब व्यक्ति का स्वभाव काफी हद तक इस पर डिपेंड करता है कि वह क्या खाता है। शराब पीने वाला तामसिक हो जाता है और वह तमाम तरह के बुरे काम में लग जाता है। लेकिन गाय के दूध की विशेषता यह होती है कि वह सात्विक प्रवृत्ति प्रदान करता है, और यही कारण है कि गाय के दूध से बनी चीजों के वाइब्रेशन भी पॉजिटिव होते हैं।
0: श्रोताओं, कहावत मिलती है कि जिस बच्चे की माँ बचपन में ही मर जाए, गाय ही उसकी माता होती है। मतलब जिस तरह एक माँ अपना दूध पिलाकर अपने बच्चे को पालती है, वैसे ही गाय भी उसे पालती है। क्योंकि भैंस का दूध ये काम नहीं कर पाता, क्योंकि बच्चे का नाजुक डाइजेस्टिव सिस्टम उसे ठीक से पचा नहीं पाता।
1: श्रोताओं, गाय के दूध के संबंध में एक बात ध्यान में आती है, वह यह कि इसका दूध हल्का सा पीलापन लिए होता है और यहाँ तक कि घी भी। इसके विपरीत भैंस का दूध घी सफेद होता है। क्या आप जानते हैं कि इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है क्रोटीन, वही क्रोटीन जो गाजर में मिलता है। श्रोताओं, कहते हैं कि गाय का दूध बल, बुद्धि व स्फूर्ति प्रदान करने वाला होता है, जबकि भैंस का दूध मोटापा व सुस्ती। ज्यादा कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं है। आप इन दोनों जानवरों को एक बार ध्यान से देख लीजिए, उत्तर आपको स्वयं ही मिल जाएगा। अरे भाई, जैसा जानवर होगा वैसा ही तो दूध होगा। आप गाय को जरा आवाज देकर देखिए, फौरन उसका सिर ऊंचा नीचा होने लगेगा, यानी कि क्विक रिस्पॉन्स। लेकिन भैंस को बुलाइए, पहले तो वह हिलेगी नहीं, और किसी तरह से हिल भी गई तो रिएक्शन इतना स्लो होगा आप खींच उठेंगे। तभी तो वही पुराना मुहावरा है कि भैंस के आगे बीन बजाए, भैंस खड़ी गुर्राए। गाय की ही तरह इसका बछड़ा भी बेहद फुर्तीला होता है, पैदा होते ही दौड़ना शुरू कर देता है। पर भैंस का पाड़ा आप खुद जानते हैं कितना सुस्त होता है।
0: श्रोताओं, यूं तो किसी भी प्राणी के मलमूत्र को खाद में बदला जा सकता है और उससे मीथेन गैस प्राप्त की जा सकती है, लेकिन गाय का गोबर इस मायने में सबसे अलग है कि इसमें कीटाणुनाशी शक्ति होती है। इसलिए पुराने जमाने से ही गाय के गोबर से घर लीपने की परिपाटी रही है।
1: गाय का गोबर जब जलाया जाता है तो इससे उठने वाला धुआं वातावरण में फैले जर्म्स को मार डालता है। कहा जाता है कि गाय का गोबर एंटी रेडियो एक्टिविटी, एंटीसेप्टिक व एंटी थर्मल प्रॉपर्टीज वाला होता है। इसलिए जब घर की फर्श दीवारें से लीपी जाती है तो उस घर में रहने वाले लोगों की न केवल बीमारियों से रक्षा होती है, बल्कि घर का वातावरण भी शीतल बना रहता है।
0: एक नई खोज में बताया गया है कि 1984 में जब भोपाल गैस कांड हुआ था, तो जो लोग गाय के गोबर से लिपे घरों में रहते थे वे बच गए थे। सुनने में तो ये भी आया है कि भारत और रूस में आज भी एटॉमिक पावर सेंटर्स को रेडिएशन से बचाने के लिए गाय के गोबर की शील्डिंग की जाती है।
1: रूस के आसपास के इलाके के लोग तो इस मामले में इतने जागरूक हैं कि किसी परमाणु दुर्घटना के समय रेडिएशन से अपनी हिफाजत सुनिश्चित करने के लिए वे अपने घरों को गाय के गोबर से रेडिएशन प्रूफ बना लेते हैं। यहाँ तक कि नासा के मानव युक्त स्पेस कैप्सूल को रेडिएशन से बचाने के लिए गाय के गोबर की एक पतली कोटिंग की जाती है।
0: गाय के गोबर में रक्षा करने का जो गुण पाया जाता है उसने इसे धार्मिक महत्व का बना दिया है। धार्मिक कार्यक्रमों में भी अगर यज्ञ वेदिका बनानी हो तो पहले उस जगह को गोबर से लीप कर पवित्र बनाया जाता है। श्रोताओं, यहाँ पर शब्दों पर ध्यान दे, गोबर से लीप कर पवित्र बनाया जाता है। तो क्या बात होगी उस प्राणी की जिसका मल तक इतना पवित्र हो।
1: एक वाक्य सुनाते हैं आपको। बनारस के पास रामनगर की एक पुरानी रियासत थी। एक बार राजा के कोई संतान न हुई। प्रश्न यह उठा कि उत्तराधिकार किसे दिया जाए। अंत में सोचा गया कि इसके लिए लोगों की परीक्षा ली जाए। कुछ लोगों को भोजन पर बुलाया गया। भोजन के बाद हाथ धोने की जगह पर एक टोकरी में साबुन और दूसरी टोकरी में गोबर रख दिया गया। केवल एक ही व्यक्ति ऐसा निकला जिसने गोबर से हाथ धोए। आप समझ गए होंगे कि गद्दी उसे ही मिली थी।
0: गोबर गैस प्लांट हमारे किसानों के लिए कितने फायदेमंद है ये तो आप जानते ही हैं। ये उनके घर में गैस का चूल्हा जलाते हैं और खेतों में सोना उगाते हैं। इस संबंध में हाल ही में एक आईटी कंपनी द्वारा एक शोध कराया गया। इस शोध में पाया गया कि 10,000 गायों की क्षमता वाली डेयरी में हर साल 2,00,000 मीट्रिक टन खाद पैदा की जा सकती है और हर दिन 3 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है।
1: गाय के एक अन्य प्रोजेक्ट गोमूत्र की बात करें तो यह हर तरह की बीमारियों के लिए कितना फायदेमंद होता है हम बार बार सुनते आ रहे हैं। कहते तो यहाँ तक हैं कि अगर टीबी का मरीज एक निश्चित समय तक गाय की बच्चे के मूत्र का सेवन करे तो उसकी टीबी जड़ से उखड़ जाती है। अहमदाबाद के पास एक रिसर्च लैब में तो गोबर व गोमूत्र का इस्तेमाल करके सीरीज ऑफ मेडिसिन बनाई जा रही है। इस लैब का दावा है कि सांसों की दुर्गंध से लेकर के कैंसर तक की बीमारियां इन दवाओं से ठीक हो सकती हैं। यहां काऊ प्रोडक्ट के रूप में साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, मॉस्किटो क्वाइल से लेकर के अनगिनत आइटम्स बनाए जा रहे हैं।
0: इस लैब के कुछ शोध नतीजे हम आपको भी सुनाना चाहेंगे। गाय के ताजे गोबर पर नंगे पांव चलें, ये बैक्टीरिया मारता है और घाव भरता है। गाय का सूखा गोबर त्वचा पर मलने से डेड स्किन निकल जाती है और रक्त संचार तेज हो जाता है। एक 42 वर्षीय गृहिणी अपने ब्लॉग में लिखती हैं, मेरा विश्वास कीजिए, अपने लीवर की बीमारी में मैंने एलोपैथ आजमाया, होम्योपैथ आजमाया, पर कोई फायदा नहीं हुआ, पर आज गौमूत्र के कारण मैं स्वस्थ हूँ।
1: कहते हैं जो लोग गाय दोहने का काम नियमित रूप से करते हैं वे कम बीमार पड़ते हैं। कारण यह है कि गौमूत्र के वेपर उनकी सांसों के माध्यम से शरीर में पहुंचते रहते हैं।
0: प्राचीन ग्रंथों में जिक्र मिलता है कि गाय की पीठ पर सूर्य केतु नामक एक नाड़ी पाई जाती है जो नेगेटिव रेडिएशंस को सोख लेती है और वातावरण को स्वच्छ रखती है। मतलब ये कि जितनी अधिक गाय उतना स्वच्छ वातावरण।
1: गाय के घी की भी बड़ी महिमा मिलती है। आपने भी सुना होगा कि तमाम तरह की बीमारियों में गाय का पुराना घी इस्तेमाल होता है। कहते हैं जब हवन में गाय के घी की आहुति दी जाती है तो इससे उठने वाला धुआं धरती के ओजोन परत को मजबूत करता है। श्रोताओं, आप सुनते होंगे कि इस समय ओजोन परत को हो रहे नुकसान से हमारे साइंटिस्ट कितने चिंतित हैं।
0: हाल ही में मीडिया में इस बात की चर्चा जोर शोर से हुई कि गाय ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो सांस लेने के दौरान ऑक्सीजन ही लेता है और ऑक्सीजन ही छोड़ता है। हालांकि किसी सर्टिफाइड लैब ने इस दावे की पुष्टि नहीं की है, पर अगर ऐसा है तो ये बहुत ही विलक्षण बात है और हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही फायदेमंद।
1: श्रोताओं, आज तो हमने ठान ही लिया है कि गाय से पूरा परिचय आपका करा कर ही छोड़ेंगे। तो लीजिए हाजिर है गाय के संबंध में कुछ और ऐसी जानकारियां जो शायद आपने अभी तक न सुनी हो।
0: गाय सीढ़ी चढ़ तो सकती है पर उतर नहीं सकती और इसकी वजह यह होती है कि उसके घुटने ठीक से मुड़ नहीं पाते। दूसरी जानकारी, गायों में सूंघने की क्षमता जबरदस्त होती है। वे लगभग 10 किलोमीटर दूर तक की चीजों को सूंघ लेती हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण जानकारी, अगर दूध की बात करें तो दुनिया में सबसे ज्यादा दूध होलस्टीन नस्ल की गाय ही देती हैं। वैसे भी दुनिया में 90% दूध गायों से ही प्राप्त किया जाता है।
1: एक गाय साल भर में औसतन 10,000 टन गोबर की खाद प्रदान करती है। कहा जाता है कि अगर गाय न रहती तो आज जंगल देखने को न मिलते। आप अचरज में पड़ गए ना। दरअसल जलाऊ ईंधन की भारी पूर्ति गोबर के उपलों से हो रही है, नहीं तो लोग जलाऊ लकड़ी के लिए अब पूरे के पूरे जंगल साफ कर चुके होते। गायें औसतन 25 साल जिंदा रहती हैं, लेकिन शर्त यह है कि लोग उन्हें जीने दें। श्रोताओं, वैसे तो हर देशभक्त को अपना देश दुनिया में सबसे न्यारा लगता है, पर भारत के संदर्भ में यह एक सच्चाई है। लोग कहते हैं कि बरसात होने पर भारत की मिट्टी में जो सौंधी सौंधी खुशबू उठती है, वैसी विदेशों में नहीं उठती।
0: गायों की बात करें तो दुनिया में दुधारू गायें एक से बढ़कर एक हैं, लेकिन उन्हें देखकर एक सुस्ती का एहसास होता है। इसके उलट भारत की गायें काफी फुर्तीली होती हैं। उनके देखने, समझने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति बड़ी ही जबरदस्त होती है। शायद इसीलिए कहावत है कि भैंस का दूध वजन बढ़ाता है, जबकि गाय का दूध दिमाग।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने। श्रोताओं, ये था हमारा कार्यक्रम संस्कृति संवाद, और आज हम चर्चा कर रहे थे गाय की महिमा की। इसका आलेख तैयार किया था श्रीमती पूनम जायसवाल ने, और स्वर थे प्रमोद शर्मा
0: और कंचन राजानी के।
1: अब हमें आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
1: अगले सप्ताह कुछ नई जानकारी के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है।
1: हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों के संगीत पर केंद्रित कार्यक्रम भारत भारती, भारत भारती

मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो मित्र प्रमिला, लेकर आई हूं आज का भारत भारती कार्यक्रम। श्रोतो, आज हम आपको इस कार्यक्रम में सुनवाने जा रहे हैं बघेली लोक संगीत। प्रस्तुत कर रही हैं शीला त्रिपाठी।

आज मैं बारिश से संबंधित कुछ चुने हुए बघेली लोकगीत आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। बघेली लोकगीतों में सबसे पहले मैं अपनी प्रस्तुति हिंडुली से करूंगी। हिंडुली गीत बारिश जब शुरू होती है तो गांव में महिलाएं जो है धान का रोपा लगाती हैं, उस समय सब मिलकर गाती हैं। मैं इसको आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ।

अनुसार श्रावण मास में झूले डालने की प्रथा है और हमारे बघेल खंड में भी झूला डलता है और हम झूला गीत गाते हैं। उन्हीं झूला गीतों में से एक झूला गीत मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ।

हमारे ग्रामीण परिवार में वहाँ का जो पुरुष समुदाय है वो बाहर प्रदेश में कमाने के लिए चला जाता है और बारिश के दिनों में केवल घर में महिलाएं ही रहती हैं। तो जो महिलाओं के ऊपर गुजरती है बारिश के दिनों में खपड़ैल मकान रहते हैं उसका मैं आपको थोड़ा सा कुछ बताना।

भगवान शंकर के जितने भी रूप हैं उनमें सब में विविधता पाई जाती है, उतनी शायद अन्य किसी देव में नहीं पाई जाती। लोग परंपरा माने भगवान भोला और माँ गौरा के रूप में अपने अपने रूप में किस तरह से प्रकट करता है, आइए सुनते हैं इस श्रृंगार समाप्त।

बीनी के बाद बोने के समय किसान प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, बारिश होगी तभी हरियाली आएगी और हमारा अन्न फलेगा और फूलेगा। गाय को चारा नहीं मिलेगा तो गाय के बछड़े को दूध भी नहीं मिलेगा। तो मेवा जी,

राखी का त्यौहार आते ही बहनें अपने पीहर को जाने के लिए खुशी और उल्लास के साथ तैयारी करने लगती हैं। उसी खुशी का वर्णन इस गीत में प्रस्तुत है। सुनो हो सहेली ओ अलबेली, सावन महीनो आयो महाराज, बीरज के राखी बांधाना।

जब सावन के झूले गांवों में बंद जाते हैं तब सब सखियां मिलकर झूला झूलने जाती हैं। झूला झूलते समय उसे जब डर लगता है और डर और घबराहट को हम इस गीत में प्रस्तुत करेंगे जिसके बोल हैं, ओ सहेली झूला चढ़े तो डर लागे वो, मन दूरो दूरो भागे वो।

शादी के बाद ससुराल में जब लड़के को झूला झूलने के लिए उसकी सखियां बुलाने आती है, तब उसे ये संकोच होता है कि झूला झूलने की इच्छा कामना को वो अपने सास ससुर को कैसे बताएं, कैसे कहें कि मुझे झूला झूलना है, मस्ती करना है, खुशियां लेना है। तो नदियां किनारे झूले बांधे हो कि सैया हमारी झूलवाने आजे हो, तो आई झूला गीत।

बरसात के बाद जब चारों ओर हरियाली छाती है, तब पूरी धरा हरियाली से श्रृंगारित हो जाती है। हर तरफ हरा भरा माहौल होता है। हो हरियाली आंगन छाई, धरती माता को श्रृंगार, धरती माता को श्रृंगार, आता जाता की मनवा। अंतिम प्रस्तुति के साथ ये गीत प्रस्तुत है।

0: आज के भारत भारती कार्यक्रम में आपने शीला त्रिपाठी से बघेली लोक संगीत सुना
1: और सोनी पवार और उनकी सखियों का बुंदेली लोक गायन।
0: अब ये कार्यक्रम समाप्त होता है, इजाजत दीजिए प्रमिला को, नमस्कार।
2: हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों के संगीत पर केंद्रित कार्यक्रम भारत भारती, भारत भारती।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर यह रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। देश का चैनल देश के लिए, सुनते रहिए।
1: पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: शुभ संध्या। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून इन किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। सांध्यकालीन प्रसारण सेवा लेकर मैं हूँ आपके साथ, आपकी रेडियो मित्र डॉक्टर रानी रैकवार भारती। शाम 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक रहेगा अब आपका और हमारा साथ। आप हमारा प्रसारण ऑनलाइन लाइव ब्रॉडकास्ट सुन सकते हैं मिक्सलर ऐप पर, रेडियो गार्डन पर, पॉडकास्ट स्पॉटिफाई पर, एप्पल पॉडकास्ट पर, Amazon पॉडकास्ट और साथ ही YouTube पॉडकास्ट पर भी। तो बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। सांध्यकालीन प्रसारण सेवा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी हम आपको दे दें। बस कुछ ही देर में सुनिएगा कार्यक्रम अक्षय निधि, जिसमें आप मंडल 2 के सूक्त 16 का वाचन सुनेंगे। 5:10 का समय रहेगा कार्यक्रम भक्ति संगीत का। वतन का राग जोरावर सिंह बारहट पर केंद्रित है, जो 6 बजे पेश किया जाएगा। 6:30 पर सुनिए कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से, रानी दुर्गावती के युद्ध का इतिहास आप सुन सकते हैं भाग 6। योग संवाद कार्यक्रम 7 बजे पेश किया जाएगा, पुरुषार्थ की श्रेष्ठता और देववाद की निराकरण पर आधारित है ये कार्यक्रम। भारत विभूति के शंकर पिल्लई पर आधारित है, जो पेश किया जाएगा 7:30 पर। 8:30 पर सुनिए कार्यक्रम हिंदोस्तां हमारा, भारत रत्न राजर्षि पुरुषोत्तम मदास टंडन पर केंद्रित है। डॉक्टर रश्मि मिश्रा का गायन भाग 2 सुनेंगे आप सुरसागर कार्यक्रम में रात 9 बजे। और 9:30 पर सुनिए युग प्रवर्तक विवेकानंद के भाग 43 का। तो ये थी हमारी सांध्यकालीन प्रसारण सेवा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए, अपने रेडियो मित्र डॉक्टर रानी रैकवार भारती के साथ। वेद, पुराण, आख्यान, ये हमारी भारतीय संस्कृति की विरासत हैं, धरोहर हैं, और इसी पर आधारित है हमारा विशेष कार्यक्रम अक्षय निधि। तो लीजिए पेश है कार्यक्रम अक्षय निधि।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि। अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 16वें सूक्त से वाचन। ऋषि हैं गृत्समद और भार्गव शौनक। देवता हैं इंद्र। छंद है जगति और त्रिष्टुप।
3: प्रवह सताम ज्येष्ठ तमाय सुष्टि तिमग्ना विव समिधाने हविर्भरे इंद्र मजुरियम जरयंत मुक्षितम सनाद्युवान मवसे हवा महे। हम देवों में सर्वश्रेष्ठ इंद्र देव के निमित्त अत्यंत दीप्तिमान अग्नि में सुंदर स्तुतियों के साथ आहुतियां समर्पित करते हैं। उन सनातन शक्ति संपन्न कभी भी नष्ट न होने वाले शत्रुनाशक तथा सोम से तृप्त इंद्र देव का तुम्हारे संरक्षण के लिए आवाहन करते हैं। यस्मादिंद्राद् बृहतः किम् चनेमृते विश्वान्यस्मिन् संभृताधिवीर्या जठरे सोमम् तन्वी सहो महो हस्ते वज्रम् भरति शीर्षणी क्रतुम। इस विराट संसार में इंद्रदेव ही सबसे महान हैं। वे पराक्रम से युक्त इंद्रदेव उदर में सोमरस, शरीर में तेजस्वी बल, हाथ में वज्र तथा शिर में महान ज्ञान धारण किए हुए हैं। न क्षोणीभ्याम परिभ्वे त इंद्रयम् न समुद्रैः पर्वतैरिन्द्र ते रथः न ते वज्रमन्वश्नोति कश्चन यदा शुभिः पतसि योजनापुरु। हे इंद्रदेव, आप जब अपने द्रुतगामी अश्वों के द्वारा अनेक योजन पार करते हैं, उस समय आपकी शक्ति को द्यावा पृथ्वी भी नहीं नाप सकती। हे इंद्रदेव, आपके रथ को पर्वत तथा समुद्र भी नहीं रोक सकते, तथा कोई भी शक्तिशाली वीर आपके वज्र को नहीं रोक सकता। विश्वे यस्मै यजताय धृष्णवे क्रतुम भरन्ति वृषभाय संचते वृषा यजस्व हविषा विदुष्टरः पिबेन्द्र सोमं वृषभेण भानुना। शत्रुनाशक पूज्य बलशाली तथा स्तुत्य इंद्रदेव के निमित्त सभी लोग यज्ञ करते हैं। हे यजमान, तुम देवगणों को सोमरस प्रदान करने वाले तथा मेधावान हो, अतः हविष्यान्न की आहुतियों सहित इंद्रदेव की स्तुति करो। हे इंद्रदेव, आप बलशाली एवं तेजस्वी रूप में सोमरस का पान करें। वृष्णः कोशः पवते मध्व उर्मिर वृषभान्नाय वृषभाय पातवे वृषणार्ध्वर्यु वृषभासो अद्रयो वृषणम् सोमं वृषभाय सुष्वति। तृप्तिकारक बलवर्धक अन्नयुक्त मधुर सोमरस की धारा बलशाली इंद्रदेव के पान के लिए स्रवित होती है। अध्वर्युगण बलशाली इंद्रदेव की तृप्ति के लिए सुदृढ़ पत्थरों में पुष्टिकारक सोमरस तैयार करते हैं। वृषा ते वज्र उत ते वृषा रथो वृषणा हरि वृषभाण्या युधा वृष्णो मदस्य वृषभ त्वमीशिष इंद्र सोमस्य वृषभस्य त्रिष्णुहि। हे शक्तिशाली इंद्रदेव, आपका वज्र, आपका रथ, आपके अश्व तथा आपके आयुध सभी शक्ति से भरपूर हैं। आप बलशाली आनंद का स्वामित्व करते हैं, अतः बल युक्त सोमरस का पान करके आप तृप्त हों। प्रतेनावम न समने वचस्युवम ब्रह्मणायामी सवनेषु दाधृषिः कुविन्नो अस्य वचसो निबोधि षदिन्द्रमुत्सम न वसुनः सिचामहे। हे इंद्रदेव, आप शत्रुनाशक हैं, नाव के समान आप युद्ध में स्तोताओं का उद्धार करते हैं। यज्ञ स्थल में आपके स्तोत्रों का उच्चारण करते हुए हम जाते हैं। हे ऐश्वर्य के भंडार इंद्रदेव, कुएं के समान हम सोमरस से आपको सींचते हैं, आप हमारी प्रार्थना को स्वीकारें। पुरा संबाधादभ्या ववृत्स्व नो धेनुर्न वत्सम यवसस्य पिप्युषी सकृत्सु ते सुमति भी शतक्रतो सम पत्नी भिर न वृषणो नसी मही। हे शतकर्मा इंद्रदेव, जिस प्रकार गाय घास खाने के बाद संतुष्ट होकर बछड़े को दूध पिलाने हेतु पहुंच जाती है, उसी प्रकार आप विपत्तियां आने से पूर्व ही हमारे पास पहुंचे। हे इंद्रदेव, जिस प्रकार पत्नियां पतियों को हर्षित करती हैं, उसी प्रकार हम उत्तम स्तोत्रों के द्वारा आपको प्रसन्न करें। नूनम साते प्रतिवरम जरित्रे दुहीय दिंद्र दक्षिणा मघोनी शिक्षा स्तोत्रिभ्यो माति धक भगो नो बृहद्वदेम विदथे सुवीराह। हे इंद्रदेव, यज्ञ के समय आपके द्वारा स्तोताओं के लिए दी गई ऐश्वर्य युक्त दक्षिणा निश्चित ही उत्तम धन प्राप्त कराती है। स्तोताओं के साथ हमें भी वह ऐश्वर्य युक्त दक्षिणा प्रदान करें। हम यज्ञ में महान पराक्रम करने वाले स्तोत्रों का उच्चारण करें।
2: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 16वें सूक्त से वाचन, प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी।
1: भगवत आराधना के सुमधुर भक्तिमय संगीत स्वर सुनिए कार्यक्रम भक्ति संगीत में। तो आपके लिए पेश है कार्यक्रम भक्ति संगीत। श्रद्धा का अर्थ है आत्मविश्वास, और आत्मविश्वास का अर्थ है ईश्वर विश्वास, जो तमाम विपत्तियों से घिर जाने पर भी विचलित नहीं होता, वही सच्चा श्रद्धावान है।

हमारी वजह से कोई रोए तो हम व्यर्थ हैं, हमारे लिए कोई रोए तो समझ लो हमारे जीवन का बहुत अर्थ है।

जहां तक रास्ता दिख रहा है वहां तक चलिए, आगे का रास्ता वहां पहुंचने के बाद खुद ब खुद दिखने लगेगा।

एक समय में सभी को खुश रखने का प्रयास मत कीजिए। जो काम हाथ में है केवल उसके ऊपर लक्ष्य रखिए, बाकी सब समय के हाथ में छोड़ दीजिए।

0: दोपहिया वाहन की सवारी करते समय हेलमेट जरूर पहने। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद पर मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
2: ये मेरा इंडिया।
1: देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, मैं हूं अभिजीत दा, अभिजीत भट्टाचार्य, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। देश को आजादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है, जिन्होंने भारत माता को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराया। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है कार्यक्रम वतन का राग।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत वतन का राग कार्यक्रम में आज हम आत्मीय स्मरण कर रहे हैं महान क्रांतिकारी और अमर बलिदानी जोरावर सिंह बारहट का।

0: आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गर्जे।
1: ये वतन का
2: साम्राज्य शक्ति शत्रु भी सर्वस्व ठसो कढ़ गया, वीर पुत्र प्रताप हुआ वेदी बलि पर चढ़ गया। भ्राता जोरावर हुआ प्यारा निछावर पथ बही, पतित पावन दीन बंधो शरण एक तेरी गही। केसरी सिंह बारहट की लिखी ये पंक्तियां इस बात का प्रमाण है कि राजस्थान से ताल्लुक रखने वाले जोरावर सिंह बारहट के पूरे परिवार ने स्वाधीनता संग्राम में भाग लेते हुए देश पर सर्वस्व बलिदान की परंपरा का निर्वहन किया। जोरावर सिंह बारहट का जन्म 12 सितंबर 1883 को उदयपुर में हुआ था। उनका पैतृक गांव भीलवाड़ा की शाहपुरा तहसील का देवखेड़ा है। उनके पिता कृष्ण सिंह बारहट इतिहासकार और साहित्यकार थे। उनके बड़े भाई केसरी सिंह बारहट देशभक्त क्रांतिकारी विचारक थे। इतिहास वेत्ता किशोर सिंह उनके भाई थे। जोरावर सिंह बचपन से ही देश के प्रति समर्पित थे। वो कृष्ण सिंह के तीन पुत्रों में सबसे छोटे थे। उनका बचपन उदयपुर में बीता तथा आरंभिक शिक्षा भी वहीं हुई। पिता कृष्ण सिंह को जब जोधपुर नरेश जसवंत सिंह ने अपनी सेवा में बुला लिया तो जोरावर सिंह भी पिता के साथ उदयपुर से जोधपुर आ गए। उनकी आगे की शिक्षा जोधपुर में हुई। जब उनके पिता का निधन हो गया तो जोधपुर के राजा ने उन्हें रानी के महल के प्रबंधक के रूप में नियुक्त कर दिया। बड़े भाई के सानिध्य में रहकर जोरावर सिंह के भीतर देश के लिए कुछ कर गुजरने की भावना बलवती होने लगी। जोधपुर में उनका संपर्क प्रसिद्ध क्रांतिकारी भाई बाल मुकुंद से हुआ, जो राजकुमारों के शिक्षक थे और उन्हें दिल्ली षड्यंत्र के अभियोग में फांसी हुई थी। इस तरह समय उनके जीवन की दिशा तय कर रहा था। कुछ समय बाद जोरावर सिंह का विवाह कोटा रियासत के ठिकाने अतरलिया के चारण ठाकुर तख्त सिंह की बेटी अनूप कंवर के साथ संपन्न हुआ। लेकिन वैवाहिक जीवन उन्हें रास नहीं आया। राजसी वैभव और गृहस्थी छोड़कर वो स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। देश के प्रति पूर्ण समर्पित भाव से कार्य करने की उनकी भावना ने ही उन्हें सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी रास बिहारी बोस से मिला दिया और तब क्रांति क्रांति और क्रांति ही उनके जीवन का लक्ष्य बन गया और देश की आजादी उनके जीवन का उद्देश्य। अदम्य साहस और जोश से भरे हुए क्रांतिकारी जोरावर सिंह लगातार आगे बढ़ते गए। क्रांति पथ में उनके समक्ष जो भी व्यवधान उपस्थित हुआ उन्होंने उसे मार भगाया, लेकिन स्वयं कभी पीछे नहीं हटे। भारत माता को स्वतंत्र कराने हेतु उन्होंने लगभग 25 वर्ष जंगलों और पहाड़ों में भटकना स्वीकार किया। वो भटकते रहे और विप्लव का स्वर बुलंद करते रहे। घर बार पत्नी परिजन सब कुछ पीछे छूट गए। सामने था तो सिर्फ अपना देश, अपनी भारत माता और उसकी जय की कामना।

स्वाधीनता संघर्ष का समय अद्भुत ऊर्जा और भावों से भरा हुआ समय था। लाखों लोग अपनी अपनी तरह से आजादी के इस महायज्ञ में अपनी आहुति डाल रहे थे। देश की आजादी के लिए अनगिनत क्रांतिकारी अपना सब कुछ छोड़कर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी कमी धन को लेकर थी। इसलिए जोरावर सिंह ने योजना के अनुसार बिहार के आरा के एक निजाम के महंत पर हमला किया और धन लूट लिया। इस बीच क्रांतिकारी भाई बालमुकुंद ने लॉर्ड हार्डिंग को जान से मारने की योजना बनाई। उन्होंने इस कार्य के लिए बारहट भाइयों यानी जोरावर सिंह और प्रताप सिंह बारहट को हार्डिंग पर बम फेंकने की जिम्मेदारी सौंपी। ये वो समय था जब कलकत्ता से भारत की राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित किया जा रहा था। कलकत्ता से वॉयसराय लॉर्ड हार्डिंग को रेल से दिल्ली पहुंचना था और फिर हाथी पर बैठकर उसकी सवारी निकलनी थी। सभी नरेश, उद्योगपति और संभ्रांत जन इस जलसे में आमंत्रित थे। उद्देश्य यही था कि भारत की गुलाम जनता ये देखे और माने कि ब्रिटिश साम्राज्य अजेय है। 23 दिसंबर 1912 की तारीख तय थी कि जब वायसराय लॉर्ड हार्डिंग का जुलूस दिल्ली के चांदनी चौक से गुजरने वाला था। अपनी योजना के अनुसार जोरावर सिंह और कुंवर प्रताप सिंह ने बुर्का ओढ़कर यमुना पार किया और नियत तिथि को दिल्ली के चांदनी चौक में पंजाब नेशनल बैंक की बिल्डिंग की छत पर जाकर बैठ गए। बारहट बंधुओं के साथ वसंत कुमार विश्वास भी इस योजना में शामिल थे। जैसे ही लॉर्ड हार्डिंग बिल्डिंग के नीचे से गुजरा, वैसे ही जोरावर सिंह ने उस पर बम फेंक दिया, लेकिन बम पास खड़ी महिला के हाथ से टकरा गया और निशाना चूक गया। इस घटना में हार्डिंग्स तो बच गया, लेकिन उसका छत्र रक्षक महावीर सिंह मारा गया। क्रांतिकारियों के इस प्रयास में छिपे प्रतिरोध के स्वर को सभी ने सुना और भारत की राजनीतिक स्थिति दुनिया के सामने स्पष्ट हो गई। ब्रिटिश राज के लिए ये बुरा लक्षण था। भारत के वायसराय के ऊपर जानलेवा हमला होने से ब्रिटिश सरकार की जड़ें हिल गई थीं। सरकार में कोहराम मच गया। अंग्रेज शासन प्रशासन के हाथ पांव फूल गए थे। जोरावर सिंह और प्रताप सिंह बारहट वहां से निकलकर कोटा और बूंदी के बीहड़ों में छुप गए। किसी तरह अंग्रेज सैनिकों ने प्रताप सिंह को पकड़ लिया, लेकिन जोरावर सिंह भागने में कामयाब रहे।

ये वो समय था जब दुनिया भर में ब्रिटिश शासन अनेक देशों पर राज कर रहा था। इस बम कांड से उन गुलाम देशों में एक राजनीतिक भूकंप आ गया। भारतवासी ब्रिटिश शासन को वरदान के रूप में स्वीकार करते हैं। अंग्रेजी राज से भारतवासी संतुष्ट और प्रसन्न हैं। अंग्रेजों के इस झूठे प्रचार का भवन अब ढह चुका था। जोरावर सिंह पर आरा बिहार केस में पहले ही वारंट जारी हो चुका था। अब इस बम कांड के बाद पुलिस और गुप्तचर एजेंसियां उनकी खोज में जुटी हुई थीं। जोरावर सिंह लगभग 25 वर्षों तक राजस्थान और मध्य प्रदेश के जंगलों में भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी और वर्षा सहते हुए आजादी की अलख जगाते रहे। इसके बाद जोरावर सिंह मध्य प्रदेश के करंडिया एकलगढ़ मंदसौर में साधु अमरदास बैरागी के नाम से रहे। वे कभी कभार गुप्त रूप से अपने परिजनों से मिलते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। जोरावर सिंह को सन 1903 से 1939 तक यानी लगभग 36 वर्ष की अवधि में अंग्रेज सरकार गिरफ्तार नहीं कर सकी। इतिहास के पन्नों में ऐसी जानकारी मिलती है कि एक बार अंग्रेज सरकार को जोरावर सिंह के आसपास होने की भनक लगी तो उन्होंने सीतामऊ के तत्कालीन राजा राम सिंह को आदेश दिया कि वो जोरावर सिंह को गिरफ्तार कर उनके सुपुर्द कर दें। राम सिंह नहीं चाहते थे कि वो किसी क्रांतिकारी को गिरफ्तार करें, इसलिए उन्होंने जोरावर सिंह तक ये खबर पहुंचाई कि वो सीतामऊ से बाहर निकल जाएं। इस पर जोरावर सिंह ने महाराज को रहीम का एक भावपूर्ण दोहा लिख भेजा। जोरावर सिंह ने लिखा, सर सूखे पंछी उड़े औरन सरन समाहे, दीन मीन बिनु पंख के कहो रहीम कहाँ जाहे। दोहा पढ़कर राजा राम सिंह की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने जोरावर सिंह बारहट तक ये खबर भिजवाई और कहा कि आप मेरे राज्य में निर्भय रहें, किसी प्रकार की कोई चिंता न करें, मैं आपके साथ हूं। इस तरह जोरावर सिंह अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आ सके। वो जब तक जिंदा रहे अंग्रेज सरकार उन्हें ढूंढती ही रही, लेकिन कई सालों तक इसी तरह राजस्थान और मध्य प्रदेश के जंगलों में भटकते भटकते उन्हें कई बीमारियों ने जकड़ लिया था। जोरावर सिंह के विरुद्ध आरा बिहार केस में गिरफ्तारी वारंट भी निकला हुआ था और इस बम कांड में भी उनकी खोज लगातार जारी थी। 1937 में जब ब्रिटिश सरकार के प्रांतों में चुनाव हुए और सरकारें बनी, तब पुरुषोत्तम दास टंडन के प्रयासों से जोरावर सिंह की गिरफ्तारी का वारंट रद्द कर दिया गया। पर दुखद ये था कि जिस दिन जोरावर सिंह की गिरफ्तारी के वारंट रद्द होने के समाचार अखबारों में छपे, उसी दिन यानी 17 अक्टूबर 1939 को जोरावर सिंह बारहट ने इस संसार से विदा ले ली। नमन ऐसे महान क्रांतिकारी और अमर बलिदानी को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर।
1: कुछ यादें उन्हें भी कर लो।
2: मैं हूँ मधुश्री, सुनते रहिए 90.8 रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: नमस्कार, मैं हूं रूप कुमार राठौड़। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
1: मैं हूं पवन सिन्हा और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 रेडियो आज़ाद हिंद पर। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, भारत को प्रणाम कीजिए, यह है तो हम हैं। हम जिन्हें पूजते हैं वो भी इसी भारत माता की संतान है। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: वैसे हमसे किसी ने कहा नहीं कहने को, फिर भी हम कह रहे हैं कि हम हैं लल्लन जी। अरे लापता गंजे वाले, पीडब्ल्यूडी में काम करते, पीडब्ल्यूडी में कौन ऐसे वैसे आदमी नहीं बताए तेरे। हाँ नहीं तो, और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से।
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। और अब समय है कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से का। इतिहास के पन्नों से, इतिहास के पन्नों से। नमस्कार, मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा, और आज हम अपने कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से इसकी छठी कड़ी में प्रवेश कर रहे हैं। इस श्रृंखला की पांचवी कड़ी में हमने सुना था कि 16वीं सदी में मध्य भारत के एक विशाल भूभाग पर गोंड राजवंश द्वारा स्थापित गढ़ा राज्य पर महाप्रतापी राजा संग्राम शाह की पुत्रवधु वीरांगना रानी दुर्गावती का 1550 ईस्वी से लेकर 1564 ईस्वी तक का शासन था। रानी के लोक उपयोगी कार्यों के कारण उनकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी थी। समकालीन दिल्ली के मुगल दरबार पर भी इसका असर दिखने लगा था, चाहे वो सोने और हाथी के रूप में दिया गया लगान हो, गोसाई विट्ठल नाथ जी का गढ़ा आगमन हो, मठ मंदिरों का निर्माण या रानी का सच्चरित्र। मुगल दरबार गढ़ा राज्य की चर्चा करने लगा था, और कहीं ना कहीं रानी के ये गुण मुगल दरबार को खलने लगे थे, जिसका परिणाम गढ़ा राज्य पर आक्रमण के रूप में हमारे सामने आया। रानी अत्यधिक चरित्रवान, साहसी और अच्छी योद्धा थी। उनकी तारीफ अबुल फजल बदायूनी फरिश्ता जैसे मुगल दरबारी लेखकों तक ने की है, लेकिन अबुल फजल ने इस ओर भी इशारा किया कि गोंड रानी दुर्गावती मुगल शासक अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। पिछली कड़ी में हमने सुना कि अकबर ने उनका मनोबल तोड़ने के लिए अनेक प्रयास किए, और उन्हीं प्रयासों को आगे ले जाते हुए अकबर ने किसी को वहां पर भेजा। किसे भेजा, कैसे भेजा, क्या थी पूरी बात, फिर से हमारे साथ एक बार हैं स्टूडियो में पूजा सक्सेना जी, प्रसिद्ध पुरातत्वविद। और पूजा जी, फिर से एक बार आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: हम सब उत्सुक हैं आपसे आगे की कहानी जानने के लिए।
3: अकबर का एक सेनापति था आसफ खां, हमने पिछली बार सुना, वो मालवा में तैनात था और कड़ा उसकी जागीर थी। आसफ खां गढ़ा राज्य की गतिविधियों की सूचना दिल्ली के मुगल दरबार तक बार बार पहुंचा रहा था। रानी दुर्गावती के बढ़ते हुए सैन्य ताकत और प्रतिष्ठा ने मुगल दरबार को विचलित कर दिया। दोनों राज्यों के बीच तनातनी बढ़ती जा रही थी। यह वो समय था, हमें याद रखना चाहिए, जब गढ़ा के राजा दलपत शाह की मृत्यु हुए कई वर्ष बीत चुके थे।
2: जी हाँ।
3: रानी ने पुत्र वीर नारायण की संरक्षिका बनकर 14 वर्ष तक गढ़ा राज्य को खूब समृद्ध किया था। हम सब जानते ही हैं, रानी इस समय लगभग 40 वर्ष की एक अधेड़ महिला रही होगी और एक बच्चे की माँ भी।
2: जी।
3: तो उनका संघर्ष और मुगल सेना का संघर्ष, दोनों के बीच में ये एक बेसिक डिफरेंस रहा होगा, ये हमें ध्यान में जरूर रहना चाहिए।
2: बिल्कुल।
3: उधर दूसरी तरफ अगर हम देखें तो आसफ खां एक लड़ाका था। उसके परिवार के लोग हुमायूं की सेना में भी रह चुके थे और कई युद्ध लड़ चुके थे।
2: जी।
3: आसफ खां ने मुगल राज्य के एक भगोड़े अमीर था गाजी खां तन्नूरी,
2: जी,
3: उसको मारा था, जिससे कि इस घटना के बाद जो शासक था अकबर उसकी नजरों में आ गया
2: और वो उनका खास बना और उन्होंने उसको
3: मालवा की कड़ा जागीर दे दी।
2: जी।
3: तो यहाँ से अब आसफ खान जो है उसकी नजर अपने आसपास के जो राज्य थे उन पर लग गई कि वो अपने राज्य का विस्तार जागीर से बड़ा राज्य कैसे बनाए।
2: जी।
3: इस और उसका ध्यान था, उसे गढ़ा राज्य कई मायनों में आकर्षित कर रहा था। एक तो ये जनजाति बहुल क्षेत्र था जिसकी बड़ी जनसंख्या जंगलों में रहती थी।
2: बिल्कुल।
3: और अपने काम से काम रखती थी, उन्हें युद्धों से इससे उससे कोई खास मतलब नहीं था। दूसरा, यह राज्य बहुत समृद्धशाली होता जा रहा था, हम सब देख ही रहे थे। हाथी भी एक बड़ा कारण थे, वन संपदा थी, वन संपदा एक बहुत बड़ा कारण बन के आती है इस समय, क्योंकि इस समय हम देख रहे हैं कि बहुत बड़े स्तर पर जहाजों का निर्माण हो रहा है, पानी के जहाजों का। उसके लिए अच्छी किस्म की सागौन की लकड़ी चाहिए
2: जी,
3: और वो तो हमारे मध्य भारत में बड़ी बहुलता के साथ में होती है। तो वन संपदा भी एक बहुत बड़ा कारण थी, जड़ी बूटियां, दूसरी चीजें। इसके अलावा दक्कन जाने तक का जो व्यापारिक मार्ग था वो भी यहाँ से होकर गुजरता था, और जहाँ से व्यापारिक मार्ग गुजरता है वहाँ पर जो कर वसूला जाता है तो उससे राज्य समृद्ध होते हैं। तो हर एक राज्य चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारिक मार्गों पर उसका अधिकार हो, तो ये भी एक बड़ा कारण बन के उभरा। वहीं दूसरी तरफ जो संत हुए पुष्टि मार्गीय विट्ठलनाथ जी, जिनके बारे में हमने पिछली काफ़ी चर्चा की, उनका प्रभाव जो बढ़ रहा था, दूसरी तरफ जो धर्मांतरण बड़े स्तर पर रुक रहे थे, इन सब कारणों से एक स्थिति बन रही थी कि गढ़ा और मुगलों के बीच में एक युद्ध के आसार साफ नजर आ रहे थे।
2: और इन्हीं सब कारणों के चलते जो आसफ खां था वो मुगल दरबार को, अकबर को उकसाया करता था कि वो यहाँ पर हमला करें।
3: बिल्कुल, अगर हम जैसे मुगल दरबारी लेखक हैं बदायूनी, अबुल फजल, इनके वर्णनों को पढ़ें तो हमें पता चलता है कि आसफ खां मुगल शासक अकबर को गढ़ा राज्य पर आक्रमण करने के लिए खूब उकसाया करता था
2: जी।
3: लेकिन गढ़ा राज्य के प्रति वह हमेशा मित्रतावत व्यवहार रखता था, यानी कि आसफ खां वहां तो लड़ाई की तैयारियों में था
2: जी।
3: लेकिन यहाँ पर गढ़ा राज्य के साथ वो अपने मित्रता के संबंध दिखाया
2: करता था। तो न सिर्फ युद्ध नीति में कुशल था, वो कूटनीति में भी कुशल था।
3: बिल्कुल बिल्कुल, उसने गढ़ा राज्य से शत्रुता का खुलासा ही नहीं किया कभी, इसीलिए गढ़ा राज्य उसके प्रति चिंतित भी नहीं था। और वो गुपचुप तरीके से गढ़ा राज्य के संचार साधनों, आय व्यय और गढ़ा राज्य की आंतरिक स्थितियों को जानने के लिए गुप्तचरों और व्यापारियों को लगातार भेजता रहता था। गढ़ा राज्य के अंदर की सारी जानकारियां इकट्ठा करता था
2: जी।
3: और वो ये जानने की कोशिश करता रहता था कि कहाँ कितनी संपत्ति है, कहाँ रखी है, कहाँ कितनी सेना है, कितना असला है, क्या स्थिति है उसकी। ये सब जानकारियाँ वो बहुत लंबे समय से एकत्र कर रहा था, जो गढ़ा के लिए एक मुश्किल उसने बाद में पैदा की
2: जी।
3: धीरे धीरे आसफ खान ने मुगल शासक अकबर को इस बात का यकीन दिला दिया कि गढ़ा जैसा समृद्धशाली राज्य उसके शासनाधिकार में नहीं है। यानी ये एक बड़ी चिंता की विषय है मुगल दरबार के लिए कि गढ़ा जैसा समृद्ध राज्य उसके अधिकार में ही नहीं है। तो अकबर जो है उससे विचलित होने लगा, और भारत का जो मध्य भूभाग है वो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, गौंड जनजाति और उसके संसाधनों पर उसका अधिकार नहीं है। इसके बाद आसफ खान ने इस बात पर भी अकबर को मनाना शुरू कर दिया कि गढ़ा राज्य पर आक्रमण के अतिरिक्त कोई विकल्प बचा ही नहीं है, यानी आक्रमण अब करना ही होगा
2: जी।
3: युद्ध अति आवश्यक है। आखिरकार मुगल शासक अकबर ने गढ़ा राज्य पर आक्रमण करने के लिए आसफ खां को सन 1564 में इजाजत दे दी।
2: यहाँ पर आक्रमण करने के लिए अकबर की सेना नहीं आई थी, आसफ खां की ही सेना यहाँ पर आई।
3: हाँ, कभी भी अकबर गढ़ा राज्य पर आक्रमण करने के लिए नहीं आया, उनका जो सेनापति था आसफ खां उन्होंने गढ़ा राज्य पर आक्रमण किया था। आसफ खां पहले से ही गुपचुप तरीके से अपनी सेना को भी सुदृढ़ कर रहा था, उधर अकबर को भड़का रहा था और इधर सेना भी अपनी तैयार कर रहा था। हाथी, घोड़े, पैदल सैनिक को कई वर्षों तक एकत्र करता रहा। अकबर की इजाज़त मिलते ही भारी भरकम मुगल सेना का साथ भी उसको मिल गया। यह बात जानकर कि मुगल सेना गढ़ा राज्य पर आक्रमण कर रही है, तो जो छोटे छोटे राज्य थे जो अकबर को लगान दिया करते थे, अप्रत्यक्ष रूप से मुगल राज्य के अधीन थे, उन सब ने भी अपनी सेनाएं आसफ खां को दे दी। तो इस तरह आसफ खां के पास एक बहुत ही विशाल सेना हो गई, जो कि बड़े हाथियों से, घोड़ों से और हथियारों से लैस थी।
2: तो क्या पूजा जी ये भी कह सकते हैं कि इसके पीछे खुद आसफ खां की जो महत्वाकांक्षा थी वो भी जोर मार रही थी, क्योंकि खुद चाहता था कि वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह गढ़ा राज्य का सिरमौर बन जाए।
3: बिल्कुल, आसफ खां अपनी जगह बनाने में लगा हुआ था
2: जी।
3: और उसने अकबर का सहारा लिया।
2: बिल्कुल,
3: अकबर के लिए ये एक कहीं विचलित करने वाली बात थी कि भारत का जो मध्य भूभाग है वो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है
2: जी।
3: तो ये सब मिलकर ही तो स्थितियां पैदा कर रहे थे।
2: और उस समय रानी दुर्गावती कहाँ थी?
3: जिस समय आसफ खां गढ़ा राज्य के लिए षड्यंत्र रच रहा था, उसी समय रानी दुर्गावती गढ़ा राज्य को समृद्ध करने में लगी हुई थी
2: जी।
3: जब आसफ खां दमोह की तरफ आ गया, उस समय तो रानी सिंगौरगढ़ में थी और उन्हें इस षड्यंत्र की भनक तक नहीं थी, क्योंकि वह तो मित्रवत व्यवहार करता था। तो रानी ने नहीं सोचा कि इस तरीके का कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है। रानी के पास अचानक से सूचना पहुंची कि आसफ खां दमोह तक पहुंच चुका है। इससे रानी की सेना के खेमे में हलचल मच गई। उस समय रानी युद्ध के लिए तैयार तो थी नहीं
2: जी।
3: कहते हैं कि उनकी सेना में उस समय केवल 500 सैनिक थे।
2: अच्छा।
3: लेकिन गोंड रानी दुर्गावती ने इस कठिन समय में भी साहस नहीं खोया और मुगल सेना का सामना करने के लिए आगे बढ़ी
2: जी।
3: रानी को छोटी सी सेना के साथ युद्ध के लिए पलायन करने की तैयारी देखते हुए उनके जो मंत्री थे आधार कायस्थ, उन्होंने रोका और कूटनीति का सहारा लेने को कहा। इस समय गोंड सेना में सैनिकों की कमी थी, युद्ध की तैयारी थी नहीं। और सामने विशाल मुगल सेना का होना चिंताजनक तो था।
2: बिल्कुल।
3: इसलिए ये सलाह दी गई कि इस समय रानी युद्ध के लिए पलायन ना करें
2: जी।
3: लेकिन रानी को ये सलाह तो दी गई कि वह युद्ध में नहीं जाएं, पर रानी के लिए युद्ध में ना जाना कायरता का प्रदर्शन करने जैसा था। ये उनके आदर्शों के भी खिलाफ था
2: जी।
3: युद्ध से मुंह मोड़ लेना ये तो सवाल ही नहीं उठता था उनके लिए।
2: बिल्कुल। और इसीलिए हम उन्हें रानी दुर्गावती के नाम से आज भी संबोधित करते हैं।
3: रानी दुर्गावती ने सोचा कि अपमानजनक जीवन जीने से अच्छा है सम्मानजनक तरीके से मर जाना।
2: वाह, क्या बात है। तो फिर क्या उन्होंने मतलब ठान तो लिया ही था, तो क्या सामना किया उन्होंने आसफ खां की सेना का?
3: रानी अब गढ़ा राज्य की आन बान की रक्षा के लिए युद्ध में जाने की तैयारी कर चुकी थी
2: जी।
3: रानी का साहस देखकर अब उनकी सेना में लगभग 2000 सैनिक सम्मिलित हो गए। कहां 500 की सेना थी
2: जी।
3: और लोग अपने आप से आए उनकी सेना में सम्मिलित होने के लिए। तो रानी ने अपनी सेना को तैयार कर लिया और सेना कूच कर गई
2: जी।
3: जिस ओर मुगल सेना बैठी हुई थी उस ओर उन्होंने 4 पड़ाव पार भी कर लिए।
2: अच्छा।
3: इसकी सूचना आसफ खां को लग गई और वो भी आगे बढ़ रहा था
2: जी।
3: तो जैसे ही सूचना मिली तो वो दमों में ठिटक गया।
2: अच्छा।
3: वहीं रुक गया
2: जी। जी।
3: उसने अपने संदेश वाहक मुगल दरबार में भेजे
2: जी।
3: अकबर से और अधिक सेना की टुकड़ियां भेजने की मांग की।
2: लेकिन पूजा जी, पहले ही उसके पास 10,000 लोगों की सेना थी और रानी तो यहाँ पर सिर्फ 2000 सैनिक लेकर के चलनी थी, तो आसफ खां को ये अंदाजा नहीं था कि रानी के पास सेना कम है, या वो डरा हुआ ज्यादा था?
3: रानी के शौर्य की गाथाएं वो सुन चुका था
2: जी।
3: और गोंड भी बड़े पराक्रमी होते हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
3: तो संभवतः यही कारण था कि इतना अधिक आंतरिक जानकारियां जुटाने के बाद भी
2: जी।
3: और 10,000 की सेना लेने के बाद भी उसने और टुकड़ियों की डिमांड अकबर के सामने रखी
2: जी।
3: अगर हम ऐतिहासिक ग्रंथ देखें, जैसे आईने अकबरी है जिसे अबुल फजल ने लिखा है, तो हमें उसमें पढ़ के पता चलता है कि आसफ खां की सेना में हाथी घोड़े पैदल सैनिक सहित 10,000 की सेना थी।
2: पहले से ही थी जी।
3: पहले से ही थी। इसके अलावा मुगल शाही आदेश से जो मुगलों के जो इफ्तादार हुआ करते थे, जैसे नाम मिलते हैं हमको मुहब्बिब अली खान, मोहम्मद मुराद खान, वजीर खान, बाबाई काकशाल, नाजिर बहादुर और आक मोहम्मद, ये सभी जो हैं इफ्तादार थे मुगल दरबार के
2: जी।
3: और ये सभी भी अपनी सेनाएं लेकर अब आसफ खां से मिल गए।
2: सैन्य सहायता

0: अपनी सेना के साथ दमोह की ओर कूच कर रही थी।
1: जी
0: उधर दूसरी ओर तेजी से आता हुआ आसफ खां यह जानकर कि गढ़ा की सेना कूच कर गई है दमोह में रुक गया था
1: जी,
0: तो गढ़ा राज्य के मंत्रियों ने रानी दुर्गावती को यह सलाह दी कि किसी सुरक्षित स्थान पर सेना को रुक जाना चाहिए
1: जी।
0: और वहां हमें अपनी सेना का एकीकरण कर लेना चाहिए क्योंकि अभी अभी बहुत सारे सैनिक आकर जुड़े हैं, तो सेना का एकीकरण करना बहुत जरूरी था
1: जी।
0: तो रानी को यह परामर्श ठीक लगा
1: जी।
0: और उन्होंने अपनी सेना को गढ़ा के पश्चिम में स्थित सघन जंगलों की ओर मोड़ लिया
1: जी।
0: इन जंगलों में अनेक वनवासी गोंड राज्य पर आई विपदा की जानकारी पाकर सेना में शामिल होने के लिए अपने आप ही चले आए
1: जी।
0: इस तरह रानी की सेना में स्वेच्छा से अनेक लोग जुड़ने लगे। अब लगभग 2000 की सेना रानी के पास में
1: इस तरह से 2000 लोग हो गए थे 500 से जी।
0: तो यहाँ जंगलों में सेना का एकीकरण करने के बाद रानी ने फिर दक्षिण पश्चिम की तरफ कूच किया
1: जी।
0: और वह एक स्थान पर पहुंची जो नरई के नाम से जाना जाता है।
1: अच्छा।
0: नरई नर्मदा नदी और गौर नदी के बीच की एक घाटी है
1: जी।
0: ये घाटी चारों ओर से पहाड़ियों से घिरी हुई है
1: जी।
0: गढ़ा की सेना ने यहाँ नरई में अपना शिविर गाड़ दिया। अबुल फजल ने भी नरई के बारे में लिखा है, वहां प्रवेश करना और वहां से बाहर आना इस घाटी से बहुत ही मुश्किल था
1: जी।
0: ऐसा अबुल फजल ने लिखा। इस स्थान के चारों ओर ऊंचे पर्वत हैं, सामने गौर नदी बहती है, ये भी अबुल फजल ने लिखा है। दूसरी ओर तो नर्मदा जोर जोर से पहाड़ों से टकराती हुई बहती है, यानी इस दुर्गम स्थान का बड़ा विस्तृत वर्णन अबुल फजल ने आईने अकबरी में किया। और उसने ये भी लिखा कि केवल एक सकरा सा रास्ता है जो बसाहट की तरफ जाता है।
1: तो निश्चित रूप से ये परिस्थितियां, ये जो स्थान था, ये तो रानी दुर्गावती के लिए एक प्लस पॉइंट था वहां पर, और उन लोगों के लिए तो निश्चित रूप से बड़ा ये दुरूह कार्य रहा होगा, क्योंकि वो सब जानते थे कि गोंड जनजाति के लोग हैं, जंगलों का रास्ता जानते हैं, दुर्गम स्थानों को बहुत अच्छे से पहचानते हैं।
0: हर एक राजवंश का अपनी प्रकृति को जानना उसका एक प्लस पॉइंट तो होता ही है
1: जी।
0: साथ ही हर एक राजवंश का अपनी एक तकनीक भी होती है युद्ध की।
1: बिल्कुल।
0: तो इनकी तकनीक में प्रकृति का उपयोग करते हुए लड़ना शुरू से ही शामिल था
1: जी।
0: तो नरई को चुनना रानी की एक स्ट्रेटजी का एक बहुत अच्छा भाग था
1: जी। तो इससे मालूम चलता है कि जो रानी दुर्गावती थी वो युद्ध की रणनीति बनाने में भी अत्यधिक कुशल थी
0: जी। हाँ।
1: तो श्रोताओं, मतलब इसका के देखिए, जो रानी दुर्गावती थी वो युद्ध नीति में भी बहुत कुशल थी, रणनीति बनाने में बहुत कुशल थी। उन्हें मालूम था कि उनके पास कितनी कम सेना थी, पहले 500 लोग थे और अब तो जो उनके पास सैनिक आकर के भी जुड़े, जैसे कि हमें पुरातत्वविद पूजा जी ने बताया कि जो 2000 लोग भी हुए वो कोई कुशल योद्धा नहीं थे, वो सिर्फ गोंड जनजाति के ऐसे लोग थे जो गढ़ा राज्य के रहवासी थे और वो रानी की भक्ति से सराबोर होकर, रानी की भक्ति से प्रभावित होकर उनकी सेना में जुड़ गए। तो आगे भी ये बात जारी रहेगी। हम कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से सुन रहे हैं, हमारे साथ पुरातत्वविद पूजा सक्सेना जी हैं जो लगातार हमें बहुत इंटरेस्टिंग जानकारियां दे रही हैं। और अब युद्ध तक बात आ चुकी है, युद्ध का बिगुल बज चुका है, आसफ खां ने धोखा दे दिया है और अब देखते हैं कि रानी किस तरह से आसफ खां की एक लंबी चौड़ी सेना का मुकाबला करती हैं। उसके लिए आपको सुनना होगा हमारा अगला एपिसोड, जिसके लिए हम आपको जल्द ही मिलेंगे। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। इतिहास के पन्नों से, इतिहास के पन्नों से।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। अगले कार्यक्रम की कीजिए प्रतीक्षा, बस एक अंतराल के बाद।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। खुलकर

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

0: जिंदा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त रजा मुराद और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्रवंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।

0: नमस्ते, मैं हूँ रानी मुखर्जी और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: स्वस्थ जीवन का आधार है स्वस्थ मन, मस्तिष्क और शरीर। योग हमारे शरीर को भी स्वस्थ रखता है और मन मस्तिष्क को भी संवारता है, सहेजता है और उसे सुदृढ़ बनाता है। इसी विषय पर आधारित प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम योग संवाद।
2: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह, लेकर उपस्थित हूं हमारी सनातन योगिक परंपरा पर प्रकाश डालता कार्यक्रम योग संवाद। श्रोताओं, आज के योग संवाद में हम प्रवेश कर रहे हैं उस विचार भूमि में जहां मनुष्य के जीवन का मार्ग अदृश्य भाग्य की रेखाओं से नहीं बल्कि उसके संकल्प, साधना और पुरुषार्थ से आकार देता है। योग वासिष्ठ हमें याद दिलाता है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, मनुष्य के भीतर उन्हें बदलने की शक्ति विद्यमान है। दैव के भरोसे बैठ जाना चेतना को जड़ करता है, जबकि पुरुषार्थ जीवन में गति, दिशा और संभावना भरता है। तो आज का संवाद इसी प्रश्न के साथ कि क्या भाग्य मनुष्य को चलाता है या मनुष्य अपने पुरुषार्थ से अपना भाग्य रचता है, क्या दैव के आगे हाथ जोड़ देना ही नियति है या अपने कर्मों की लौ से अंधकार को हटाना ही मनुष्य की पहचान है। आइए योग वासिष्ठ के आलोक में समझें पुरुषार्थ की श्रेष्ठता और दैववाद के निराकरण को। इस बातचीत के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं योग, अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी। नमस्कार शशिकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में आपका।
3: जी नमस्कार।
2: पुरुषार्थ की श्रेष्ठता और दैववाद का निराकरण आज इस अंक में होने जा रहा है, तो सबसे पहले तो मैं ये चाहती हूँ कि जो हमारे सुनने वाले हैं उन्हें आप बताएं कि दैववाद से तात्पर्य क्या है।
3: दैववाद को महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि श्री राम पूर्व जन्म के पौरुष से ही दैव का जन्म होता है, यानी पूर्व जन्म का पुरुषार्थ ही दैव है, ऐसा व्यक्ति को मानना चाहिए। और सामान्यतया लोग समझते हैं कि हम अपने पुरुषार्थ को भोग रहे हैं, सामान्यतया लोग समझते हैं कि हम अपने प्रारब्ध को भोग रहे हैं। प्रारब्ध वास्तव में देखें तो पूर्व का कर्म है, यानी प्रारब्ध कर्म है, प्रारब्ध भोग नहीं है।
2: जी, जी, जी।
3: तो ऐसे में बार बार वशिष्ठ जी राम जी को इस चीज के प्रति सचेत कर रहे हैं कि कर्म के अतिरिक्त यहाँ कुछ भी नहीं है, कर्म ही फल का निर्माण करता है। और जो व्यक्ति ऐसा मान लेता है कि जो फल है वो देव दैव भरोसे मिल रहा है, ये बहुत बड़ी मूर्ता है, ऐसा है नहीं, वो पूर्व के कर्म का ही परिणाम है ये फल।
2: तो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि पूर्व जन्म के कर्म का जो परिणाम है वही प्रारब्ध है और इसको इस जन्म के कर्म से बदला भी जा सकता है।
3: जा सकता है, क्योंकि ये दोनों जो कर्म हैं, खासकर प्रारब्ध कर्म और इस समय का जो क्रियमाण कर्म है, ये दोनों कर्म आपस में संघर्ष करते हैं। और अगर आप अपने वर्तमान के कर्म से, वर्तमान के प्रयत्न से पूर्व के कर्म को आप बदल सकते हैं, उसको क्षीण कर सकते हैं, और अगर वर्तमान में आप कर्महीन हो जाएंगे तो पूर्व का कर्म प्रभावित करेगा आपको। तो इस तरीके से आपके पास जो विकल्प है वो है पुरुषार्थ करने का, पुरुषार्थ से च्युत होने का कोई प्रावधान नहीं है यहाँ।
2: जी, जी जी जी। तो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि पुरुषार्थ हर स्थिति में आवश्यक है। अच्छा, जीवात्मा का संसार से उद्धार कैसे हो ये बताएं आप।
3: इसमें बड़ा सुंदर कहा है वशिष्ठ जी ने, कहा है कि हे राम, जो अपने को दैव के अधीन समझते हैं और सोचते हैं कि मैं कर्म करने में स्वतंत्र नहीं हूँ, हुई है सोई जो राम रच राखा, का कोई तर्क बढ़ावे साखा। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये जो ऐसे लोग हैं, ऐसी विचारधारा ठीक नहीं है। इस विचारधारा को सत्संग तथा सतशास्त्र के अभ्यास के द्वारा मन से दूर करके जीवात्मा इस संसार से बलपूर्वक उद्धार करें अपना, ऐसा करें कि आपको इसके लिए लगातार प्रयास करने की आवश्यकता है कि आपके जीवन में ऐसी अगर घटनाएं घट रही हैं जो आपको लगता है कि ये आपके अनुकूल नहीं है, तो ऐसे में आपको इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि आप किं कर्तव्य विमूढ़ हो जाएं, इसका अर्थ ये हुआ कि आप और सजगता के साथ और जागरूकता के साथ अपने कर्म के प्रति सचेत हों और कर्म करने के प्रति तत्पर हों, क्योंकि आपने सुना होगा कई बार लोक साहित्य में संतों ने कहा है कि बोया पे बबूल का आम कहाँ से खाए, तो अब ऐसे में जो हम बोते हैं वही हम काटते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा फल लग जाता है जो आपके कर्म से अलग हो, तो कर्म और फल का इतना गहरा संबंध है, और ऐसे लोग जो कर्म फल के बारे में सोचते हैं वो निश्चित ही बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, क्योंकि कर्म फल का निर्माण कर्म करता है। तो ऐसे में हमारा ध्यान कर्म पर होना चाहिए, न कि कर्म फल पर। इसी को भगवान कृष्ण ने गीता में कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचना। जबकि संसार का आदमी क्या करता है, वो हमेशा फल पर अपने को केंद्रित करता है। और देखिए, फल पर केंद्रित होने से आप एक बात अपने कर्म में चूकते तो हैं ही, साथ ही साथ आपके जीवन में भय, आपके जीवन में संशय, आत्मविश्वास की कमी, तमाम सारे ऐसे और विकृतियों के जन्म लेने की संभावना बढ़ जाती है जब आप कर्म फल के बारे में सोचते हैं। जबकि कर्म के बारे में आप सोचें तो निश्चित ही आपके बहुत सारे संशय दूर होंगे। इसीलिए कहा भी जाता है, एक वर्ड आता है प्रोकास्टिनेशन, जहां पर हम जब भी कोई काम करने चलते हैं तो सोचते हैं कि इसका क्या होगा, या ऐसा मैंने किया था तो उसका परिणाम नहीं आया। तो इस तरीके से सोचने में ये मन की चालाकी है, ये कह सकते हैं कि आपका मन आपको धोखा दे रहा है। जबकि महर्षि वशिष्ठ जी इसी चीज को दूर करने के लिए राम से कहते हैं कि तुम्हें सिर्फ कर्म करना है, और जो भी भोग है वो कर्म का ही है। इसलिए प्रारब्ध जो है वो जो दैव शब्द है वो पूर्व का कर्म है, पूर्व जन्म का कर्म है, या पूर्व का कर्म कह लें कि पहले के कर्म का परिणाम आज आप भोग रहे हैं।
4: जी जी,
3: जो भी परिणाम बनता है वो कर्म से ही तो बनेगा।
4: बिल्कुल जी। तो आपने दैव को बताया और बार बार पौरुष का जिक्र इसमें हो रहा है, तो आप बताएं कि वशिष्ठ जी पौरुष किसे कहते हैं?
3: वशिष्ठ जी पौरुष कहते हैं आप जो दैव की संज्ञा दे रहे हैं उस संज्ञा को छोड़कर उसको अपने पूर्व का प्रयत्न अगर माने आप तो उसको वो पौरुष कहते हैं, कि पूर्व जन्म के उस पौरुष को ही कोई दैव की संज्ञा देना चाहे तो दे सकता है, लेकिन वो पूर्व जन्म का पौरुष है, वो दैव नहीं है। आप संज्ञा दे रहे हैं दीजिए, लेकिन उस संज्ञा से अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। अर्थ जो है, जब भी दैव की बात आएगी तो वो पूर्व का पौरुष है, न कि वो कोई और पौरुष के अतिरिक्त कुछ है। तो वो बार बार उस पौरुष की तरफ उनका ध्यान खींच रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? इसके पीछे राम जी ने जो जगत को देखा, जगत में जो दृश्य को देखा तीर्थाटन के दौरान, तो उनको ऐसा लगा कि बहुत सारे लोग कर्म तो कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन प्रयत्न के बाद भी जो उनको भोग में मिल रहा है वो दुख मिल रहा है, दुख से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। तो उन्होंने प्रयत्न से अपने को विरत करने का प्रयास किया, और उसी प्रयास में जो है इस ग्रंथ के द्वारा उन्हें उपदेश दिया जा रहा है।
4: जी जी।
3: तो ऐसे में प्रयत्न से व्यक्ति कभी भी ना चूके, यानी प्रयत्न करना उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, ये मान करके वो अपने जीवन की यात्रा करे, इस बात पर बार बार ध्यान दिलाया गया है। इसीलिए योग को कर्मयोग भी कहा गया है, कि योग कर्म योग है, कर्म से विरत होने का योग नहीं है।
4: योग नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत ही सुंदर तरीके से आपने ये समझाया। अच्छा, बताएं कि ये ग्रंथ क्या कहता है कि इस जगत में कौन दीन और दुखी है?
3: दीन और दुखी वो लोग हैं जो विषय सुखों के क्षणिक लोभ में फंसकर उस पूर्वकृत कर्म पौरुष या दैव को वर्तमान जन्म के पुरुषार्थ द्वारा जीतने का प्रयत्न नहीं करते।
4: अच्छा,
3: वो लोग दीन हैं, प्रयत्न नहीं करते तथा सदा दैव के भरोसे बैठे रहते हैं। वे दीन, पामर और मूढ़ हैं, क्योंकि पुरुषार्थ के बिना आत्मकल्याण कभी भी सिद्ध नहीं होगा,
4: कभी भी संभव नहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश हो गया
3: जी, कि जो लोग पूर्व के भरोसे बैठे हैं वो कतई वही दीन हैं।
4: हाँ।
3: जो आज कर्म कर रहे हैं या वर्तमान में पूर्व के परिणाम को बदलने के लिए प्रयत्नशील है,
4: प्रयत्नशील
3: वो लोग दीन नहीं हैं। हाँ। और जो ये मान के बैठे हैं कि यही लिखा था भाग्य में,
4: ये
3: हो रहा है,
4: यही होना था,
3: तो वो दीन हैं, पामर हैं, मूढ़ हैं।
4: जी, जी जी,
3: क्योंकि पुरुषार्थ से ही आप अपने आत्मकल्याण को सिद्ध कर सकते हैं।
4: तो आपने पुरुषार्थ की बात की है, तो मेरे मन में एक प्रश्न है कि पुरुषार्थ के भी प्रकार हैं, अगर हैं तो कितने हैं?
3: आपने सुंदर कहा कि पुरुषार्थ दो प्रकार का यहाँ पर इन्होंने कहा है कि एक पूर्व जन्म के जो कर्म है उनके द्वारा पुरुषार्थ, और एक जो वर्तमान में आप प्रयत्न कर रहे हैं ये इस समय का पुरुषार्थ वर्तमान में।
4: जी, जी,
3: ये
4: जी,
3: दोनों आपके प्रयत्न की बात है। तो कहते हैं ये दोनों आपस में भेड़ों की तरह लड़ते हैं, और उनमें जो भी बलवान होता है वह दूसरे को क्षण भर में पछाड़ देता है, पीछे छोड़ देता है। तो दो तरह के पुरुषार्थ की संकल्पना वशिष्ठ जी ने दी राम जी को, कि जो एक प्रारब्ध है वो पुरुषार्थ जो आपने पहले किया है और जो वर्तमान में आप कर रहे हैं। तो ये दोनों आपस में संघर्षरत हैं। अगर आप चाहें कि वर्तमान के प्रयत्न से पूर्व के पुरुषार्थ को बदलना तो ये संभव है। हाँ, ये असंभव नहीं है। इसलिए हर व्यक्ति को इस संसार में, खासकर इस ग्रंथ के उपदेश को अपने जीवन में अंगीकार करना चाहिए कि हमें कभी भी पुरुषार्थ से च्युत नहीं होना चाहिए, और ऐसा कोई विचार जो हमें पुरुषार्थ करने में बाधा उत्पन्न करे, हाँ, उन विचारों से हमें अपने को मुक्त रखना चाहिए, नहीं तो वो हमें दीनता की श्रेणी में लाके खड़ा कर देंगे। दीन वह है जो अपने पर भरोसा नहीं करता, अपने पुरुषार्थ पर भरोसा नहीं करता और किसी और भरोसे अपने आप को बिठा दे, कर्म छोड़ दे, ऐसे लोग दीन है।
4: अच्छा, कर्म और भाग्य की लड़ाई तो बहुत इस पर चर्चा होती है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस ग्रंथ में क्या बताया गया है कि प्रारब्ध और प्रयत्न में बलवान कौन है।
3: प्रारब्ध और प्रयत्न में हमेशा प्रयत्न बलवान है। ऐसा वशिष्ठ जी कहते हैं कि पूर्वकृत कर्मों के फल स्वरूप प्रारब्ध और वर्तमान जन्म के पुरुषार्थ, इन दोनों में वर्तमान जन्म का पुरुषार्थ ही प्रत्यक्षता बलवान है। इसलिए जो ज्ञानी है, अधिकारी मनुष्य, को पुरुषार्थ का सहारा लेकर हमेशा सत शास्त्रों का अभ्यास और सत्संग द्वारा बुद्धि को निर्मल बनाकर संसार सागर से अपना उद्धार कर लेना चाहिए। तो संसार सागर से उद्धार करने का जो साधन है वो है सत शास्त्रों का अभ्यास, पहला काम, क्योंकि सत शास्त्रों में आपको इस तरह की देशना मिलेगी जिसके द्वारा आप अपनी दीनता को दूर करें, भटकाव से अपने आप को बचाएं और ऐसी किसी भी भ्रामक मन स्थिति को अपने पर हावी न होने दें जिसकी वजह से आपका वर्तमान जो प्रयत्न है वो किसी प्रकार से बाधित हो। और दूसरा, सत्संग द्वारा। अब सत्संग द्वारा बुद्धि, यहाँ पर सत्संग की महिमा बहुत बार बताई गई है, क्योंकि सत्संग के द्वारा ही आप अपने बुद्धि को निर्मल कर सकते हैं। बुद्धि जो तमाम असत चीजों का संग कर ली है उससे मिटाने के लिए आपको सत्संग की आवश्यकता है। और गोस्वामी तुलसीदास जी तो कहते ही हैं कि बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो बिना सत्संग के विवेक का दीप नहीं जलता। जिस विवेक के प्रकाश में आप नीर छीर, जो विवेकी दृष्टिकोण कहते हैं, जिसको हंस से कबीरदास जी हंस कहते हैं, कि ये दृष्टि आप में सद असद विवेक, यानी सत्य और असत को जानने का जो विवेक है, वो सतशास्त्र के अभ्यास और सत्संग से बुद्धि को निर्मल करने के बाद ही आप उसके योग्य बनते हैं और उसको धारण कर पाएंगे।
4: अच्छा, अर्थ और कामना की जो सिद्धि है वो किस तरह से होती है?
3: हाँ, ये सुंदर आपने प्रश्न किया। ये कहते हैं वशिष्ठ जी कि राम, इस संसार में जो लोग अर्थ और कामना के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, उनको इस बात को भली भांति जानना चाहिए कि पूर्व कृत कर्म, यानी पूर्व का जो पुरुषार्थ है, वो अर्थ और काम को सिद्ध करने में वो सहयोगी है। लेकिन जो आपका प्रयत्न है वो धर्माचरण करने में और मुक्ति को दिलाने में आपका वर्तमान प्रयत्न जो है आपको साधक बनाएगा, सिद्ध करेगा वो। अच्छा। तो पूर्वकृत कर्म से आप अपने जीवन में अर्थ और काम की सिद्धि कर सकते हैं, उसमें उसका सहयोग है,
4: होती है।
3: हाँ, होती है,
4: अपने आप होती है।
3: अपने आप तो ना कहिए, लेकिन उसमें उसका एक बल होता है, वो आपको उस तरह से, इसीलिए आप संसार में देखेंगे कि बहुत सारे लोग अपनी कामना की पूर्ति और अर्थ को सिद्ध करने में लगातार प्रयत्न करते हैं, लेकिन प्रयत्न के बाद भी वो विफल होते हैं। तो इस विफलता से कई बार निराशा भी आती है
4: जी।
3: तो ये निराशा जीवन में ना आए, तो इसके रहस्य को बताने के लिए उन्होंने ये कहा कि पूर्वकृत कर्म या प्रारब्ध कर्म जो है वो आपके अर्थ और काम की सिद्धि में सहयोग करेगा, और जो प्रयत्न आपका है वो प्रयत्न आपके धर्म और मोक्ष की सिद्धि करेगा।
4: लेकिन अब एक मेरे मन में ये प्रश्न है कि अर्थ और कामना की सिद्धि अगर पूर्व जन्म के कर्म से या पूर्व के कर्म से प्रारब्ध से है, तो इसे परिवर्तित किया जा सकता है या नहीं?
3: बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि जब आप प्रयत्न पूर्वक धर्म करेंगे तो धर्म से अर्थ आएगा
4: जी।
3: तो अर्थ जब आएगा, धर्म से आने वाला अर्थ कामनाओं को सिद्ध करता है, अधर्म से प्राप्त जो धन है उस धन से कभी भी कामनाएं सिद्ध नहीं होती। इसीलिए आप देखिएगा कि जो वर्तमान का जो प्रयत्न है वो आपको, धर्म का मतलब यहाँ कतई बहुत सीमित अर्थ में ना लिया जाए, धर्म का मतलब अपने कर्तव्य कर्म का निर्वाह करना भी धर्म है। जैसे आप उदाहरण देखिए, मैं सहज बच्चों के लिए उदाहरण दूंगा कि आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ऐसे घर में पैदा होते हैं जहाँ साधनों का अभाव है, माता पिता के पास संसाधन नहीं, नहीं है, लेकिन उन्हें इस बात का अगर वो विचार पूर्वक विवेक से विचार करते हैं और सोचते हैं कि हम अपने घर की स्थिति या अपने माता पिता की स्थिति को कैसे बदल सकते हैं, तो वो अपने को अपने कर्तव्य कर्म में अगर तल्लीन करते हैं, अपने धर्म का सही आचरण करते हैं, तो देखते हैं कि वो सारी बाधाओं के पार निकल के वो अचीव करते हैं जो बहुत अच्छे घरों के बच्चे नहीं कर पाते। तो क्या है, उन्होंने अपने प्रयत्न से धर्म को साधा, तो फिर ये जो अर्थ और काम कि सिद्धि तो अपने आप हो गई। तो ऐसे में आप देखें, एक किसी मोटिवेशनल स्पीकर ने कहा कि आप अगर किसी गरीब के घर में पैदा हुए हैं, ये आपका भाग्य हो सकता है, लेकिन आप गरीब अगर मर रहे हैं तो ये आपके भाग्य का विषय नहीं है। इसका मतलब कि आपने कर्म का विषय, आपने प्रयत्न नहीं किया, तो ये कितनी बड़ी बात है। तो अंततः ये भी यही बात वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि आपको अपने प्रयत्न से अपने धर्म का आचरण करना चाहिए, जिसके परिणाम स्वरूप आप अपने वर्तमान की परिस्थितियों से मुक्त हो जाएंगे। ये ठीक है कि वर्तमान परिस्थितियां चाहे अनुप्रतिकूल हो अनुकूल हो अलग बात है, लेकिन उनको बनाए रखने में वर्तमान का प्रयत्न ही आपको सहायक होगा। आप प्रारब्ध के भरोसे बैठ जाएं तो आप उन्हें सिद्ध नहीं कर सकते।
4: तो ये बहुत आशा देने वाली बात है।
3: जी बिल्कुल
4: जी। अच्छा, मोह के बंधन से मुक्ति किसे मिलती है, क्या कहता है ये ग्रंथ?
3: जी, मोह के बंधन से मुक्ति के लिए ये ग्रंथ कहता है कि जो जगत के मोह के फंदे में लोग फंसे हुए हैं, ऐसे पुरुष सदाचार के द्वारा अपने कर्म को करकर इस संसार के मोह रूपी बंधन से उसी प्रकार मुक्त हो जाते हैं जैसे पिंजरे से सिंह निकल जाता है। जो पुरुष उदार स्वभाव से युक्त एवं सत्कर्म के लिए प्रयत्न करने में कुशल हैं, सदाचार ही जिसका लीला विहार है, वह इस जगत के मोह रूपी फंदे से उसी प्रकार निकल जाता है जैसे सिंह पिंजरे से निकल जाता है। तो ऐसा कह रहे हैं वो। तो इसका मतलब कि सदाचार और सत्कर्म यानी सत प्रयत्न, यही दो ऐसे संसाधन हैं कि जिनके द्वारा आप जगत रूपी बंधन को काटकर अपने को मुक्त कर सकते हैं।
4: जी जी जी। तो ये तो आपने मुक्ति की बात की, अब मैं मनुष्य के स्वार्थ की बात करना चाहती हूँ।
3: जी,
4: स्वार्थ चारों तरफ दिखाई देता है संसार में। हर इंसान का कहना है कि मनुष्य बहुत स्वार्थी है। तो संसार में मनुष्य के स्वार्थ का जो कारण है वो क्या है?
3: मनुष्य के स्वार्थ का जो कारण है वो सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति, यही मनुष्य का स्वार्थ है। आप देखें तो किसी भी कर्म के पीछे, किसी भी विचार के पीछे आप जो मूल तत्व पाएंगे जिसकी वजह से वो विचार या वो कर्म करने की प्रेरणा मिल रही है, वो यही है कि आपको सुख मिले और या फिर आपके दुख से आपकी निवृत्ति मिले। तो मूल स्वार्थ यही है और यही मनुष्य का स्वार्थ है। उस स्वार्थ की प्राप्ति कराने वाले जो आवश्यक कर्तव्य या साधन है, एकमात्र उसी में तत्पर रहने को ही विद्वान लोग पौरुष कहते हैं। यानी दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति कराने में जो साधन है, उन्हीं साधनों में जो लोग तत्पर हैं, वही अपने पौरुष का उपयोग कर रहे हैं, वही अपने पुरुषार्थ को सिद्ध कर पाएंगे। लेकिन जो उन साधनों से हट करके कहीं और अपनी ऊर्जा या अपना समय बिता रहे हैं या अपना प्रयत्न कर रहे हैं, तो उनके हाथ तो विफलता ही लगेगी। तो इसलिए जो पौरुष शब्द है, वो पौरुष शब्द इसीलिए है कि आप अपने स्वार्थ मतलब सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति, इसको सिद्ध करने में लगातार साधन करें।
4: जी जी,
3: न कि साधन से अपने आप को विरत करें। जी।
4: अच्छा, इसमें मुझे परमार्थ की सिद्धि की बात भी नजर आई थी, तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे सुनने वालों को ये बताएं कि परमार्थ की जो सिद्धि है वो कैसे होती है।
3: जी, परमार्थ के लिए उन्होंने कहा है कि परमार्थ है अपने परम तत्व को जानना, अपने जो मतलब जो आपका मूल स्वरूप है, जिसको आप ब्रह्म स्वरूप कह लें, उसकी अभिप्राप्ति कैसे हो, वो है परमार्थ, परम अर्थ। जिसका स्वार्थ में तो ये आ गया कि आप अपने सुख की कामना को सिद्ध करें और दुख से मुक्त हों, लेकिन परम जो है, जिसको कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, जो वर्ड आता है कि आप अपना आत्म साक्षात्कार करें, तो आत्म साक्षात्कार करने के लिए आप वही हैं जिसमें ये सारा जगत है और जिसकी वजह से सारे जगत में चेतना है। तो उसको जब आप प्राप्त करते हैं या उसको सिद्ध करते हैं, तब जाके आप अपने परमार्थ को सिद्ध कर पाते हैं। अधिकारी पुरुष का जन्म पुरुषार्थ के सिद्ध होने पर ही सफल होता है, अन्यथा नहीं। ऐसा जानकर सदा अपना आत्म कल्याण करने में ही प्रयत्न करना चाहिए, तब जाकर के परमार्थ की सिद्धि होगी। आत्म कल्याण के लिए जब आप प्रयत्न करेंगे तो परमार्थ की सिद्धि होगी।
4: अच्छा, ये बताएं कि इस ग्रंथ में जन्म मरण रूपी भवरोग को शांत करने का उपाय भी बताया गया है, तो वो थोड़ा सा उसकी आप व्याख्या कर दें ताकि हमारे सुनने वालों के लिए बात आसान हो जाए।
3: जी, इसमें उन्होंने कहा है कि अधिकारी जो लोग हैं वह नित्य संतुष्ट एवं उत्तम ज्ञानी जनों की सेवा रूप अमोघ मधुर और उत्कृष्ट औषध से जन्म मरण की परंपरा रूप भवरोग को शांत करें। ऐसा वशिष्ठ जी कहते हैं कि वो जो ज्ञानी लोग हैं ज्ञानी जनों की सेवा करें, और ऐसे नित्य संतुष्ट लोग जो मैंने हमेशा संतुष्ट हों। ज्ञानी होने का मतलब ये नहीं कि आपको बहुत सारा ज्ञान है, वो ज्ञान आपके संतोष में कितना सहयोगी है, और अगर आप असंतुष्ट हैं तो आपका ज्ञान कभी भी कह सकते हैं कि वो सत्य ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि संतोष से प्राप्त होने वाला जो सुख है वो परम सुख है।
4: जी।
3: और यहाँ पर संसार में जो देखते हैं हम लोग कि संतोष को हम लोग मानते हैं कि संतोष एक प्रकार का कह सकते हैं कि अपने कर्म से पलायन करने की एक विधा है कि जो है मिल गया है वो उसमें संतुष्ट रहो। संतुष्ट, संतोष का मतलब चित्त की शांति। जब चित्त शांत होगा तो उस चित्त के द्वारा जो विचार होगा वो सद्विचार होगा, सदकर्म होगा, स्वाध्याय होगा, शास्त्रों का मतलब सही चुनाव होगा। अशांत चित्त में सही विचार नहीं आते, तो तब जाकर के सुख का अनुभव होता है। तो ऐसे में यही वो औषधि है जिससे आप जन्म मरण रूप जो भवरोग है, इस भवरोग में अच्छा जन्म मरण को हम लोग सोचते हैं कि शरीर का जन्म हुआ और शरीर मर गया, ऐसा नहीं है। आप देखिए कामनाओं का भी जन्म होता है, कामनाएं भी मरती हैं। तो ऐसे में जन्म मरण का मतलब ये हुआ कि आप ऐसी किसी विचार के साथ जो विचार ने जन्म लिया और उसकी वजह से आपको दुख हो रहा है या सुख हो रहा है तो उसका बदलाव होगा। तो इस परम सत्य को जानते हुए आप इस संसार में अगर व्यवहार करें तो आप हर पल संतुष्ट रह सकते हैं और एक जीवन में शांति बनी रहेगी और परम पुरुषार्थ जो है वो सिद्ध होगा।
4: अच्छा, मैं चाहती हूँ कि चूंकि समय समापन की ओर है तो मैं चाहती हूँ कि जो भी चर्चा हमने आज की है उसे एक संक्षेप में आप हमारे सुनने वालों के लिए उनके लिए रखें और एक संदेश अपनी तरफ से। आप,
3: मैं इस संदेश में यही दूंगा उन्हें कि आप हमेशा सतशास्त्रों का स्वाध्याय करें, सत्संग करें, क्योंकि मन को निर्मल करने का ये अमोघ अस्त्र है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपका मन जिन मलिनता की वजह से दूषित हुआ है या फिर कहते हैं विषाद से ग्रस्त हुआ है, दुखी हुआ है, या तमाम तरह के आपके मन में ऐसे उथल पुथल चल रहे हैं जिससे आप अपने प्रयत्न में बाधा महसूस कर रहे हैं, तो ऐसा अगर लगातार आप अभ्यास करते हैं तो निश्चित ही आप मन को निर्मल कर पाएंगे, और जो निर्मल मन का होगा वो निश्चित ही उसके चित्त में भगवान या वो परम तत्व जिसको हम कहते हैं परम पुरुषार्थ से जिसकी सिद्धि होती है उसका आत्म कल्याण होगा। तो हमें लगातार सतशास्त्रों का स्वाध्याय और सत्संग करना चाहिए, यही मैं अपने श्रोताओं से अपेक्षा रखूंगा।
4: जी जी, और पुरुषार्थ और दैववाद को भी संक्षेप में आप एक बार और मतलब एक अपील की तरह कहने मैं चाहती हूँ, क्योंकि ये बात बहुत रहती है लोगों के मन में, बहुत होती है, और जीवन में जब भी कठिन परिस्थितियां आती हैं तो कई बार की लगातार की परेशानियों को देखने के बाद मनुष्य इस तरह से सोचने लगता है कि यही हमारा जीवन है, यही हमारा भाग्य है, ऐसा ही लिखा है। तो एक उत्साहवर्धन की तरह
3: मैं इसे ही कहूंगा कि देखिए ये भी एक मन का आपको शांत करने का या कह सकते हैं बेचैनी से दूर करने का एक आधार है कि चलो आप उससे अपने आप को व्यथित होने से रोक लें,
4: या कहें कि उस परिस्थिति को सहने का एक
3: सहने का आधार है, ये कह सकते हैं एक मैकेनिज्म
4: है। तो
3: बिल्कुल, ये माइंड मैकेनिज्म है कि जब आप किसी भी चीज को जब अपने वश में नहीं कर पाते तो ऐसा है कि ना आप उस नाम से टूटे नहीं, बल्कि आप अपने आप को संभाल कर आगे फिर अच्छे प्रयत्न के लिए अपने को बनाए रखें।
4: जी, जी।
3: तो ये भी कहा जाता है, लेकिन इसके साथ साथ जो आपने दैववाद के निराकरण की बात की, उन्होंने कहा कि ये भी जो आपके जीवन में अनचाहा परिणाम आ रहा है ये परिणाम आपके पूर्व के कर्म का परिणाम है, यानी पूर्व में आपने ऐसा कर्म किया है, तो उस घटना को याद करके आप वर्तमान में ऐसे कर्म से अपने आप को बचाएं कि फिर ऐसे किसी परिणाम की प्राप्ति आपको न हो जो आपके मन में क्षोभ उत्पन्न करे। सुकरात एक बहुत बड़े चिंतक हुए हैं जो बड़े क्रूप थे, लेकिन वो दर्पण देखते थे बार बार, तो दर्पण देखते थे तो लोग सोचते थे कि आप बार बार अपना चेहरा देखते होंगे तो ये कुरूपता दिखती होगी, हाँ, हाँ। तो फिर आपको तो क्षोभ होता होगा कि ये क्यों कर रहे हैं, तो आप अपने आप को बार बार कष्ट क्यों पहुंचाते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं अपने को कष्ट नहीं पहुंचाता, मैं बार बार अपने चेहरे को इसलिए देखता हूं कि मेरा चेहरा तो लोगों के आकर्षण के योग्य नहीं है, तो ऐसे में मेरे द्वारा कोई ऐसा कर्म न हो जो लोगों को हमसे दूर ले जाए। हमें सजग बनाए रखे।
4: क्या बात है।
3: और जो लोग सुंदर हैं उनको तो मैं कहूंगा कि वो और अपने चेहरे को देखें, क्योंकि वो अपनी सुंदरता को बनाए रखने के लिए ऐसे कर्म करें ताकि कहीं उनकी सुंदरता लोग भूल करके उनको कर्मों से उनको याद न करने लगे। तो उन्हें अपने सौंदर्य के अनुसार अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। तो यही बात वशिष्ठ जी ने भी कही है कि आपके हाथ में आपका प्रयत्न है, जो वर्तमान का क्रियमाण कर्म है, इस कर्म से आप पूर्व के भोग को भी बदलने में सक्षम हो सकते हैं। लेकिन अगर वर्तमान में आपने कर्म से अपने को अलग किया, विरत किया, तो पूर्व का जो भोग है वो तो है ही, आपने और भविष्य के लिए ऐसे भोगों का निर्माण कर लिया जो आपको विषाद में ले जाएंगे, दुख में ले जाएंगे। तो इसलिए वर्तमान में सजगता हमेशा कर्मों के प्रति होनी चाहिए। कहा भी जाता है कि जब आप जो बीज बो रहे हैं, यानी जो कर्म कर रहे हैं, उस कर्म के प्रति जागरूक अगर हों तो परिणाम निश्चित ही वही होगा जो आप चाहते हैं।
4: बिल्कुल।
3: अनचाहा कर्म करके मनचाहा परिणाम नहीं पाया जा सकता।
4: क्या बात है। बिल्कुल। तो बहुत ही सुंदर बात कि अनचाहा कर्म करके मनचाहा परिणाम नहीं मिल सकता है, तो बहुत सतर्क होने की जरूरत है। तो शशिकांत जी, आज की चर्चा बहुत अच्छी रही, बहुत रोचक रही। आपका हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
3: नमस्कार।
4: तो श्रोताओं, योग संवाद कार्यक्रम में आज हमने चर्चा की पुरुषार्थ की श्रेष्ठता और दैववाद के निराकरण पर। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। चलते चलते आपको हम बता दें कि इस कार्यक्रम में विशेषज्ञ के तौर पर हमारे बीच उपस्थित थे योग अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी। मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा का था। परिकल्पना अदिति गौड़। ध्वनि संपादन अमित कुंदानी। समन्वय सहयोग सतीश बाथम। और आपसे बातचीत कर रही थी मैं सुनीता सिंह। अब अनुमति दें इस कार्यक्रम से। नमस्कार। आप सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम योग संवाद। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। धुलकर

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

0: कि मैं हूँ मुकेश खन्ना, आपका शक्तिमान, या आप कह लो भीष्म पितामह, और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आज़ाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: नब्बे दशमलव आठ मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून इन किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है कार्यक्रम भारत विभूति।
2: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.8 रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम भारत विभूति। आज हम आपसे चर्चा करेंगे पद्म भूषण से सम्मानित महान चित्रकार कार्टूनिस्ट के शंकर पिल्लई के बारे में। साथियों, कला केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, कला समाज का दर्पण है, समय का दस्तावेज है और परिवर्तन का माध्यम है। और जब हम के शंकर पिल्लई के बारे में बात करते हैं तो केवल एक कलाकार के बारे में नहीं बोल रहे होते। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक युग के बारे में, एक आंदोलन के बारे में।
3: बिल्कुल, 31 जुलाई 1902 को केरल के छोटे से शहर कायमकुलम में जन्मे के शंकर पिल्लई ने अपने जीवन की शुरुआत बेहद साधारण परिस्थितियों में की थी। उनके पिता एक साधारण डाक कर्मचारी थे और परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर थी, लेकिन इस साधारण परिवार के बच्चे में छिपी थी एक असाधारण प्रतिभा, एक ऐसी प्रतिभा जो आगे चलकर भारत की पहचान बनी।
2: के शंकर पिल्लई ने कभी कोई औपचारिक कला शिक्षा नहीं ली, उनके हाथ में कोई महंगा ब्रश नहीं था, कोई विदेशी डिग्री नहीं थी, लेकिन था तो बस एक अटूट जुनून, चित्रकारी का जुनून, अभिव्यक्ति का जुनून, सच बोलने का जुनून। बचपन में वे दीवारों पर कोयले से चित्र बनाते थे, स्कूल की किताबों के हाशिए पर अपने शिक्षकों के कार्टून बनाते थे, और यही शौक, यही जुनून उन्हें मुंबई ले गया, सपनों के शहर में, जहां संघर्ष था, चुनौतियां थीं, लेकिन अवसर भी थे।
3: बिल्कुल, तो आइए आज हम आपको लिए चलते हैं के शंकर पिल्लई की जीवन यात्रा की ओर। एक ऐसी यात्रा जो शुरू होती है केरल के एक छोटे से गांव से और पहुंचती है पूरे भारत के दिलों तक। ऐसी यात्रा जिसमें है संघर्ष के अनगिनत पड़ाव, सपनों की उड़ान, असफलताओं का सामना और अंततः सफलता का वो शिखर जो आज भी हम सबको प्रेरित करता है।
2: केशव शंकर पिल्लई का जन्म 31 जुलाई 1902 को केरल के त्रावणकोर राज्य के कायमकुलम नामक छोटे से शहर में हुआ था। ये स्थान आलप्पुझा जिले में स्थित है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और बैकवाटर्स के लिए प्रसिद्ध है। उनका जन्म एक परंपरागत नायर परिवार में हुआ था, जो केरल की प्रमुख जातियों में से एक है। उनके पिता केशवर नायर एक साधारण सरकारी कर्मचारी थे, वे डाक विभाग में काम करते थे और परिवार की आय बहुत सीमित थी। माता लक्ष्मी अम्मा एक धार्मिक और संस्कारी महिला थीं, जो घर परिवार की देखभाल करती थीं। परिवार में शंकर के अलावा और भी भाई बहन थे और सभी को एक साथ पालना आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण था।
3: केरल उस समय शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी था और शंकर के माता पिता चाहते थे कि उनके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। हालांकि आर्थिक तंगी थी, फिर भी उन्होंने शिक्षा पर समझौता नहीं किया। शंकर बचपन से ही बेहद जिज्ञासु और कल्पनाशील थे। कायमकुलम की हरी भरी प्रकृति, नारियल के पेड़, बैकवाटर्स की नावें और स्थानीय बाजार का रंगीन जीवन, ये सब उनकी कल्पना को उड़ान देते थे। वे घंटों बैठकर लोगों को देखते और उनकी विशेषताओं को अपने दिमाग में उतारते रहते थे।
2: उनकी माँ को याद है कि 5-6 साल की उम्र में ही शंकर घर की दीवारों पर कोयले से चित्र बनाते थे। एक बार उन्होंने अपने पिता का चेहरा दीवार पर बना दिया, जिसे देखकर पूरा परिवार हैरान रह गया। चेहरे की समानता इतनी सटीक थी कि लोग पहचान गए कि ये किसका चित्र है।
3: बिल्कुल, और माँ अक्सर चिंतित होती थी कि शंकर अपनी पढ़ाई की किताबों में भी चित्र बनाते रहते थे। गणित की किताब के हाशिए पर फूल, पत्ते, चिड़िया और लोगों के चेहरे बने होते थे। कभी कभी तो पूरा पन्ना ही चित्रों से भर जाता था और पाठ पढ़ने के लिए जगह नहीं बचती थी।
2: शंकर की प्रारंभिक शिक्षा कायमकुलन के स्थानीय स्कूल में हुई। वे पढ़ाई में औसत दर्जे के छात्र थे। गणित उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन इतिहास और भूगोल में उनकी रुचि थी, क्योंकि इन विषयों में चित्र और नक्शे होते थे। स्कूल के शिक्षक उनसे परेशान रहते थे, क्योंकि वे कक्षा में ध्यान ही नहीं देते थे। एक बार संस्कृत के शिक्षक पाठ पढ़ा रहे थे और शंकर अपनी कॉपी में कुछ बना रहे थे। शिक्षक ने गुस्से में कॉपी छीन ली, लेकिन जब उन्होंने देखा कि शंकर ने उनका ही एक बेहद सटीक कार्टून बनाया है, जिसमें वे संस्कृत श्लोक बोलते हुए दिख रहे हैं, तो वे हंसे बिना नहीं रह सके। उस दिन के बाद वे शिक्षक शंकर को प्यार से छोटे चित्रकार कहने लगे।
3: जी हाँ, और स्कूल में शिक्षक के कुछ करीबी दोस्त थे जो उनकी कला के बेहद प्रशंसक थे। वे अक्सर शंकर से अपने चित्र बनवाते और अपने घर ले जाकर रखते थे। धीरे धीरे पूरे स्कूल में शंकर की प्रतिभा की चर्चा होने लगी। 10वीं कक्षा में एक और महत्वपूर्ण घटना घटी। स्कूल में वार्षिक उत्सव था और प्रतियोगिता भी रखी गई थी, जिसमें विद्यार्थियों को महात्मा गांधी का चित्र बनाना था। शंकर ने जो चित्र बनाया वो इतना जीवंत था कि देखने वालों को लगा जैसे गांधी जी खुद वहां खड़े हों। उन्हें प्रथम पुरस्कार भी मिला और स्कूल के प्रधानाचार्य ने कहा, ये लड़का एक दिन देश का नाम रोशन करेगा।
2: हाई स्कूल पूरा करने के बाद शंकर ने त्रावणकोर के महाराजा कॉलेज में दाखिला लिया। ये केरल का एक प्रतिष्ठित कॉलेज था। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, इसलिए शंकर को छात्रवृत्ति मिली थी, लेकिन ये भी पर्याप्त नहीं थी और उन्हें बहुत कठिनाई से अपना खर्च चलाना पड़ता था। कॉलेज में शंकर ने बीए में दाखिला लिया, लेकिन उनका मन पढ़ाई में कम और चित्रकारी में ज्यादा लगता था। वे कक्षाओं में बैठकर प्रोफेसरों के कार्टून बनाते रहते। एक बार इतिहास के प्रोफेसर पढ़ा रहे थे और शंकर उनका चित्र बना रहे थे। प्रोफेसर ने पूछा, शंकर मैं क्या पढ़ा रहा हूं? शंकर खड़े हो गए और बोले, सर मुगल साम्राज्य के बारे में। प्रोफेसर ने कहा, अच्छा तो तुम सुन रहे हो, लेकिन तुम्हारे हाथ में क्या है? शंकर ने झिझकते हुए अपनी कॉपी दिखाई। प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए कहा, कला अच्छी है, लेकिन परीक्षा में ये नहीं चलेगा।
3: जी हाँ, बिल्कुल। कॉलेज के दिनों में शंकर को अपनी आर्थिक स्थिति से भी बहुत जूझना पड़ा था। कई बार उनके पास किताबें खरीदने के भी पैसे नहीं होते थे। वे दोस्तों से किताबें उधार लेते और पूरी रात जाग कर पढ़ते थे। खाने पीने में भी कटौती करनी पड़ती थी। कभी कभी तो केवल चाय और बिस्किट से ही उनका दिन गुजरता था। लेकिन इन कठिनाइयों ने शंकर की हिम्मत नहीं तोड़ी। उन्होंने कॉलेज की पत्रिका के लिए चित्र बनाने शुरू कर दिए। कॉलेज के वार्षिक समारोह के पोस्टर भी वे बनाते थे और धीरे धीरे उनकी ख्याति फैलने लगी।
2: एक दिन कॉलेज के प्रिंसिपल ने उन्हें बुलाया और कहा, शंकर तुम्हारी कला अद्भुत है, लेकिन तुम्हें अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देना होगा, नहीं तो डिग्री कैसे मिलेगी? शंकर ने जवाब दिया, सर मुझे लगता है कि कला ही मेरा असली विषय है, मैं इसी में अपना भविष्य बनाना चाहता हूँ। अंततः शंकर ने अपनी डिग्री तो पूरी कर ली, लेकिन उनके मन में स्पष्ट था कि उन्हें एक कलाकार बनना है, किसी ऑफिस में बाबू नहीं। 1920 के दशक के अंत में जब शंकर की उम्र लगभग 25-26 साल की थी, उन्होंने एक साहसिक निर्णय लिया। उन्होंने गांव और परिवार को छोड़कर मुंबई जाने का फैसला लिया। उस समय मुंबई भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक शहर था और यहाँ अवसरों की कमी नहीं थी।
3: लेकिन ये निर्णय इतना आसान नहीं था। उनके पिता चाहते थे कि शंकर कोई सरकारी नौकरी कर ले और परिवार को आर्थिक सहारा दे। माँ को डर था कि बड़े शहर में उनका भोला भाला बेटा कैसे रहेगा, लेकिन शंकर ने अपने सपनों को पूरा करने की तो ठान ली थी।
4: है दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान।
3: मुंबई पहुंचने पर शंकर के पास बहुत कम पैसे थे। वे दादर के एक छोटे से कमरे में रहने लगे, जहां तीन और लोग रहते थे। कमरा इतना छोटा था कि चारों लोगों के बिस्तर फर्श पर एक के बाद एक लगाने पड़ते थे। शुरुआती दिन बेहद कठिन थे। शंकर को रोजगार नहीं मिल रहा था। उन्होंने कई जगहों पर अपने चित्र दिखाए, लेकिन किसी ने भी उन्हें उस वक्त काम नहीं दिया।
2: एक समय ऐसा आया जब उनके पास खाने के पैसे भी नहीं बचे। उन दिनों की याद करते हुए शंकर ने बाद में कहा था, मुंबई की सड़कों पर मैंने भूख का असली मतलब समझा, लेकिन हर भूखी रात के बाद मुझे लगता था कि अगली सुबह जरूर कुछ बेहतर होगा। जब हालात बहुत बिगड़े तो शंकर को जीवन चलाने के लिए कोई भी काम करना पड़ा। उन्होंने पहले एक कपड़ा मिल में क्लर्क की नौकरी की। काम बहुत नीरस था, रोज लेजर में आंकड़े दर्ज करने होते थे, लेकिन वेतन नियमित मिलता था और कम से कम पेट भर भोजन तो हो ही जाता था।
3: जी हाँ, और मिल में काम करते हुए भी शंकर ने अपनी कला का अभ्यास जारी रखा। शाम को काम के बाद वे अपने छोटे से कमरे में घंटों स्केच बनाते रहते थे। वे मुंबई की सड़कों पर घूमते, लोगों को देखते और उनके चेहरों को अपनी ड्राइंग बुक में उतारते थे। इसके बाद उन्होंने रेलवे में भी कुछ समय काम किया। ये नौकरी थोड़ी बेहतर थी क्योंकि इसमें कभी कभार यात्रा करने का मौका मिलता था। ट्रेन में बैठकर शंकर विभिन्न यात्रियों के चित्र बनाते। किसान, व्यापारी, छात्र, बुजुर्ग, महिलाएं, हर चेहरे में एक कहानी होती थी और शंकर उस कहानी को पकड़ने की पूरी कोशिश करते थे।
2: 1932 का साल शंकर के जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ बना। एक दिन उन्होंने मुंबई के प्रसिद्ध अखबार द फ्री प्रेस जर्नल के दफ्तर जाने का साहस किया। उन्होंने अपने कुछ बेहतरीन कार्टून एक फाइल में रखे और संपादक से मिलने की इच्छा जताई।
3: रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें टालने की पूरी कोशिश की, लेकिन शंकर ने हिम्मत नहीं हारी। वे पूरे दिन वहां बैठे रहे। शाम को जब संपादक बाहर निकले तो शंकर ने उनके सामने अपनी फाइल रख दी। संपादक ने कहा, तुम्हारी कला में दम है, लेकिन कार्टून बनाना सिर्फ अच्छी ड्रॉइंग नहीं है, इसमें समाज को समझना पड़ता है, राजनीति को समझना पड़ता है और सबसे जरूरी व्यंग को समझना पड़ता है। क्या तुम ये कर सकते हो?
2: शंकर ने जवाब दिया, सर मुझे एक मौका दीजिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। संपादक ने कुछ सोचा और फिर बोले, ठीक है, अगले हफ्ते मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की एक बैठक है जिसमें पानी की कमी के मुद्दे पर चर्चा होगी, इस पर एक कार्टून बनाकर लाओ। शंकर ने पूरे हफ्ते मेहनत की। उन्होंने अखबार पढ़े, पानी की समस्या को समझा और एक शानदार कार्टून बनाया जिसमें म्यूनिसिपल कमिश्नर को प्यासे मुंबई वासियों से घिरे हुए दिखाया गया था, जबकि कमिश्नर खुद नारियल पानी पी रहे थे।
3: क्या बात है। और जब शंकर ये कार्टून लेकर गए तो संपादक बेहद प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, बधाई हो शंकर, तुम्हारा ये कार्टून कल के अखबार में छपेगा। और अगले दिन जब शंकर ने अपना पहला प्रकाशित कार्टून देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। वर्षों के संघर्ष के बाद उनकी मेहनत रंग ला रही थी। द फ्री प्रेस जर्नल में शंकर के कार्टून नियमित रूप से छपने लगे। शुरुआत में उन्हें प्रति कार्टून कुछ रुपए मिलते थे, जो उनकी रेलवे की नौकरी से ज्यादा नहीं थे, लेकिन संतुष्टि उन्हें बहुत मिलती थी।
2: धीरे धीरे शंकर के कार्टून मुंबई में चर्चा का विषय बनने लगे। लोग सुबह अखबार खोलते और सबसे पहले शंकर का कार्टून देखते। उनके कार्टूनों में समाज की विसंगतियां, राजनीतिक पाखंड और ब्रिटिश शासन की नीतियों पर तीखा व्यंग होता था। 1930 के दशक में भारत में स्वतंत्रता आंदोलन अपने चरम पर था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। शंकर ने अपनी कला को इस राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा। उनके कार्टून ब्रिटिश शासन के अत्याचारों को उजागर करते थे।
3: जी हाँ, और एक बार तो उन्होंने एक कार्टून बनाया जिसमें ब्रिटिश वायसराय को एक विशाल हाथी के रूप में दिखाया गया था जो भारत के गरीब किसानों को कुचल रहा था। ये कार्टून इतना प्रभावशाली था

0: उसका इंतजार कर रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था, न खुशी न गम, बस एक शांत स्वीकृति कि जो होना है वो होगा। शंकर ने सोचा कि ये चेहरा तो करोड़ों भारतीयों का चेहरा है, वो आम आदमी जो हर रोज संघर्ष करता है, सरकारी दफ्तरों में धक्के खाता है, महंगाई से परेशान होता है, राजनेताओं के वादे सुनता है, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारता।
1: बिल्कुल, जब शंकर ने पहली बार इस चरित्र को कार्टून में इस्तेमाल किया तो पाठकों की प्रतिक्रिया अद्भुत थी। लोगों ने लिखा, ये तो मैं हूँ, ये मेरे पिता हैं, और कईयों ने लिखा, ये तो हर भारतीय है। कॉमन मैन भारत के आम आदमी का प्रतीक बन गया। शंकर के हर कार्टून में ये चरित्र किसी न किसी रूप में दिखाई देता। कभी महंगाई से परेशान, कभी भ्रष्ट नेताओं से पिसता, कभी सरकारी योजनाओं का इंतजार करता, और कभी अपने बच्चों के भविष्य की चिंता में डूबा हुआ।
0: आज 80 साल बाद भी कॉमन मैन भारतीय कार्टून का सबसे पहचाना जाने वाला चरित्र है। जैसे जैसे शंकर की ख्याति बढ़ी, अन्य अखबारों ने भी उन्हें काम के लिए बुलाया। 1948 से पहले शंकर ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए भी काम करना शुरू किया। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर कार्टून बनाए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उनके कार्टून बहुत चर्चित रहे। हिटलर, मुसोलिनी, चर्चिल सभी शंकर के कार्टूनों में नजर आते थे।
1: बिल्कुल, लेकिन शंकर का असली फोकस भारत की समस्याओं पर था। गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, अशिक्षा, ये सब उनके कार्टूनों के विषय थे। लेकिन उनके कार्टून कभी नकारात्मक नहीं होते थे। उनमें हमेशा एक आशा की किरण होती थी, एक विश्वास की भारत बेहतर होगा। 1940 के दशक में जब भारत स्वतंत्रता के करीब पहुंच रहा था, शंकर के कार्टून और भी तीखे और प्रभावशाली हो गए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके कार्टून ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक मौन लेकिन शक्तिशाली हथियार बन गए थे।
0: महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल जैसे नेता शंकर के कार्टूनों की सराहना करते थे। गांधी जी ने एक बार कहा था, शंकर का कार्टून हजार शब्दों से ज्यादा प्रभावी है।
1: और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। ये शंकर के जीवन का भी एक नया अध्याय था। उन्होंने सोचा कि अब उन्हें अपनी एक पत्रिका शुरू करनी चाहिए जो पूरी तरह से कार्टून और व्यंग पर आधारित हो। इसके लिए पैसों की जरूरत थी। शंकर ने अपनी कुछ जमा पूंजी लगाई और कुछ मित्रों से उधार ले लिया। 1948 में उन्होंने शंकर्स वीकली नामक साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत कर दी। पहला अंक छपा तो शंकर की धड़कनें और तेज हो गईं। क्या लोग इसे पसंद करेंगे, क्या ये बिकेगी? उनकी सारी पूंजी दांव पर लगी थी।
0: लेकिन उनकी चिंता निराधार निकली। पहला अंक हाथों हाथ बिक गया। लोगों ने इसकी जमकर तारीफ की, अखबारों में समीक्षाएं छपी। एक नई तरह की पत्रिका, व्यंग का अद्भुत नमूना। शंकर ने भारतीय पत्रकारिता में नया अध्याय जोड़ा। शंकर्स वीकली जल्दी ही भारत की सबसे लोकप्रिय पत्रिकाओं में से एक बन गई। हर सप्ताह लाखों लोग इसका इंतजार करते थे। पत्रिका केवल कार्टून नहीं थी, इसमें राजनीतिक व्यंग, सामाजिक टिप्पणी, कहानियां, कविताएं और बच्चों के लिए एक अलग ही सेक्शन होता था।
1: और पत्रिका का एक विशेष आकर्षण यू सेड इट कॉलम था, जिसमें प्रसिद्ध लोगों के विरोधाभासी बयानों को एक साथ रखकर व्यंग किया जाता था। राजनेता जो आज कुछ कहते थे और कल उसके उलट बोलते थे, उनके दोनों बयान को एक साथ छापा जाता था। ये बेहद लोकप्रिय था और राजनेताओं को सावधान रहने पर मजबूर भी करता था। पत्रिका में नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, मुरारजी देसाई सभी के कार्टून छपते थे, लेकिन शंकर का व्यंग कभी व्यक्तिगत नहीं होता था। वे नीतियों और कार्यों पर टिप्पणी करते थे, व्यक्तियों पर हमला नहीं करते थे।
0: पंडित जवाहरलाल नेहरू और शंकर पिल्लई के बीच एक अनोखा रिश्ता था। नेहरू शंकर के कार्टूनों के बड़े प्रशंसक थे, हालांकि उनमें अक्सर खुद नेहरू का मजाक बनाया जाता था। एक बार शंकर ने एक कार्टून बनाया जिसमें नेहरू को दिखाया गया था कि वे एक साथ बहुत सारी चीजें संभालने की कोशिश कर रहे हैं और सब कुछ उनके हाथ से गिर रहा है। ये उनकी अति व्यस्तता पर व्यंग था। जब ये कार्टून छपा तो नेहरू के कुछ करीबी सहयोगियों ने उन्हें शिकायत की कि शंकर बहुत ज्यादा आजादी ले रहे हैं, लेकिन नेहरू ने हंसते हुए कहा, शंकर बिल्कुल सही कह रहा है, मैं वाकई बहुत सारी चीजें एक साथ करने की कोशिश कर रहा हूं, उसका

0: कार्टून मुझे याद दिलाता है कि मुझे प्राथमिकताएं तय करनी चाहिए।
1: जी हाँ, और एक और दिलचस्प किस्सा है। एक बार नेहरू ने शंकर को 3 मूर्ति भवन प्रधानमंत्री निवास में बुलाया। शंकर घबराए हुए थे कि शायद किसी कार्टून पर आपत्ति होगी, लेकिन नेहरू ने मुस्कुराते हुए कहा, शंकर, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है क्योंकि मुझे तुम्हारे कुछ कार्टून बहुत पसंद आए हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम उनकी मूल प्रतियां मुझे दे दो। मैं उन्हें अपने कमरे में लगाना चाहता हूँ। क्या था, शंकर हैरान रह गए। प्रधानमंत्री अपने ही मजाक उड़ाने वाले कार्टून अपने कमरे में लगाना चाहते हैं। नेहरू ने समझाया, ये कार्टून मुझे याद दिलाते हैं कि मैं भी एक साधारण इंसान हूँ और आम लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं।
0: शंकर भी नेहरू के विजन की सराहना करते थे, हालांकि उनके कार्टूनों में नेहरू की आलोचना जारी रहती थी। नेहरू जी की मृत्यु के बाद शंकर ने एक बहुत मार्मिक कार्टून बनाया जिसमें कॉमन मैन नेहरू की तस्वीर के सामने सिर झुकाए खड़ा था और आंखों में आंसू थे। कैप्शन था, गुरु चला गया। ये कार्टून देखकर करोड़ों भारतीयों की आंखें नम हो गईं।
1: शंकर ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा संगठन बनाया जाए जो बच्चों के लिए सस्ती और अच्छी किताबें प्रकाशित करे। साल 1957 में उन्होंने चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट CBT की स्थापना की। शुरुआत में काफी मुश्किलें आईं। प्रकाशक कहते थे कि बच्चों की किताबों में पैसा नहीं है, लेकिन शंकर ने तब भी हार नहीं मानी। उन्होंने खुद पैसा लगाया और पहले किताबें प्रकाशित की।
0: CBT की किताबें रंगीन और आकर्षक होती थीं। कहानियां भारतीय संस्कृति और मूल्यों पर आधारित होती थी। कीमत इतनी कम रखी जाती थी कि मध्यम वर्ग का बच्चा भी खरीद सके। धीरे धीरे CBT की किताबें लोकप्रिय हो गईं। आज CBT ने 3000 से ज्यादा किताबें प्रकाशित की हैं और करोड़ों बच्चों तक पहुंची हैं।
1: शंकर खुद भी बच्चों के लिए कहानियां लिखते थे और चित्र बनाते थे, लेकिन शंकर का सबसे बड़ा सपना था बच्चों के लिए एक ऐसी जगह बनाना जहां वे अपनी रचनात्मकता को खुलकर अभिव्यक्त कर सकें, जहां वे कला, संगीत, नृत्य, थिएटर सीख सकें, जहां कोई परीक्षा ना हो, कोई नंबर ना हो, बस सीखने का आनंद हो।
0: 1 नवंबर 1961 को बाल भवन का उद्घाटन हुआ। नेहरू खुद इस कार्यक्रम में आए। उन्होंने अपने भाषण में कहा, शंकर ने जो काम किया है वो केवल एक इमारत बनाना नहीं है, उन्होंने बच्चों के सपनों के लिए एक घर बनाया है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ से निकलने वाला हर बच्चा एक बेहतर इंसान बनेगा।
1: बिल्कुल, और बाल भवन में विभिन्न विभाग थे, आर्ट, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, साइंस और फोटोग्राफी। बच्चे शाम को स्कूल के बाद यहाँ आते और अपनी रुचि की चीजें सीखते थे। शंकर खुद अक्सर बाल भवन आते थे। वे बच्चों से बातचीत करते, उनके चित्र देखते और उन्हें प्रोत्साहित करते। कई बच्चे जो आज सफल कलाकार हैं, उन्हें याद है कि कैसे शंकर अंकल ने उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा था, बहुत अच्छा बनाया है, ऐसे ही बनाते रहो। बाल भवन की ये सफलता के बाद देश भर में 25 से ज्यादा शहरों में बाल भवन खोले गए। आज भी ये संस्थाएं लाखों बच्चों को कला और शिक्षा दे रही हैं।
0: शंकर ने एक और महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने 14 नवंबर को नेहरू के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाने का विचार दिया। नेहरू जी की मृत्यु के बाद 1964 में शंकर ने सुझाव दिया, क्योंकि नेहरू को बच्चों से बहुत प्यार था। ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और तब से हर साल 14 नवंबर को भारत में बाल दिवस मनाया जाता है। इस दिन स्कूलों में विशेष कार्यक्रम होते हैं, बच्चों के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं।
1: शंकर्स वीकली में हर साल बाल दिवस पर एक विशेष अंक निकलता था जिसमें बच्चों की रचनाएं, कहानियां, चित्र छापे जाते थे। देश भर के बच्चे अपनी रचनाएं भेजते थे और चुनी गई रचनाएं पत्रिका में प्रकाशित होती थीं। किसी बच्चे के लिए शंकर्स वीकली में छपना बहुत बड़ी उपलब्धि होती थी। शंकर के व्यक्तिगत जीवन के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि वे अपने निजी जीवन को मीडिया से दूर रखते थे। उनका विवाह केरल की एक शिक्षित महिला से हुआ था। उनकी पत्नी बहुत संयमी और समझदार थी, जो शंकर के काम को समझती थी।
0: उनकी बेटियों को याद है कि कैसे पिता रविवार की शाम को उनके साथ बैठते और उन्हें चित्र बनाना सिखाते थे। वे बच्चों को कभी दबाव नहीं डालते थे कि वे भी कलाकार बने, बल्कि उन्हें अपनी रुचि के अनुसार करियर चुनने की आजादी देते थे। एक रोचक बात, शंकर घर पर बहुत सादा जीवन जीते थे। उनके पास महंगी गाड़ी नहीं थी, ना ही बड़ा बंगला। वे दिल्ली के एक साधारण इलाके में मध्यम आकार के घर में रहते थे। उनकी पत्नी रसोई में खुद ही खाना बनाती थीं।
1: शंकर अक्सर देर रात तक काम करते थे और सुबह देर से उठते थे। उनकी पत्नी को ये आदत बहुत परेशान करती थी, लेकिन वो जानती थी कि रात का वो समय जब घर में शांति होती थी शंकर के लिए सबसे रचनात्मक समय था। शंकर केवल एक कलाकार नहीं थे, वे एक सामाजिक चिंतक भी थे। उन्हें समाज की समस्याओं की गहरी समझ थी। उन्होंने कॉमन मैन को सरकारी दफ्तरों में धक्के खाते हुए अनगिनत बार देखा था और दिखाया भी था।
0: शंकर जातिवाद और सांप्रदायिकता के खिलाफ थे। 1947 के भारत पाकिस्तान विभाजन के समय हुए दंगों ने उन्हें बहुत दुखी किया। उन्होंने कई मार्मिक कार्टून बनाए। महिला सशक्तिकरण में भी उनका विश्वास था। उनके कार्टूनों में महिलाएं कमजोर नहीं दिखाई जाती थीं। उन्होंने कई बार समाज में महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव पर कार्टून बनाए।
1: व्यक्तिगत रूप से शंकर बेहद विनम्र और सरल इंसान थे। उन्हें कोई अहंकार नहीं था। युवा कलाकार जब उनसे मिलने आते तो वे बहुत प्यार से मिलते और उन्हें मार्गदर्शन देते। 1960 और 70 के दशक में शंकर ने विभिन्न देशों की यात्राएं भी की। उन्हें कई अंतर्राष्ट्रीय कार्टूनिस्ट सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए बुलाया भी जाता था।
0: उन्होंने अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और एशिया के कई देशों का दौरा किया। हर जगह उनके कार्टूनों की प्रदर्शनी लगाई गई। विदेशी कलाकार उनकी शैली से बहुत प्रभावित होते थे। एक बार लंदन में एक प्रदर्शनी के दौरान एक अंग्रेज कार्टूनिस्ट ने शंकर से कहा, तुम्हारे कार्टून में जो गर्माहट और मानवीयता है वो पश्चिमी कार्टूनों में नहीं होती। तुम लोगों पर व्यंग करते हो लेकिन नफरत नहीं फैलाते।
1: तब शंकर ने जवाब दिया था, ये भारतीय संस्कृति का असर है। हम समस्याओं को दिखाते हैं लेकिन व्यक्तियों से नफरत नहीं करते। हमारा मकसद सुधार लाना है, ना कि किसी को नीचा दिखाना। विदेश यात्राओं के दौरान शंकर ने कई प्रसिद्ध हस्तियों से मुलाकात भी की। उन्होंने ब्रिटेन की महारानी, अमेरिकी राष्ट्रपति, विभिन्न प्रधानमंत्रियों और कई प्रसिद्ध कलाकारों से मुलाकात की, लेकिन इन मुलाकातों के बावजूद उनमें कोई अहंकार कभी नहीं आया।
0: एक दिलचस्प घटना है, 1965 में उन्हें मॉस्को में एक अंतर्राष्ट्रीय कार्टून प्रतियोगिता में जूरी सदस्य के रूप में आमंत्रित किया गया। वहां दुनिया भर के 50 देशों से कार्टूनिस्ट आए थे। शंकर भारत के प्रतिनिधि थे। प्रतियोगिता में एक युवा रूसी कार्टूनिस्ट ने बहुत प्रभावशाली काम प्रस्तुत किया। जब पुरस्कार की घोषणा हुई तो कुछ पश्चिमी जजों ने उस रूसी कलाकार को पुरस्कार देने में आपत्ति जताई, क्योंकि वे सोवियत यूनियन के थे और शीत युद्ध का दौर था। बाद में उस कलाकार ने शंकर से मिलकर कहा, आपने मेरे लिए न्याय किया, मैं आपका आभारी हूं। शंकर ने जवाब दिया, मैंने कोई एहसान नहीं किया, मैंने सिर्फ सही किया।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने। स्वतंत्रता के बाद के दशकों में शंकर ने भारतीय राजनीति पर लगातार व्यंग किए। पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर आपातकाल तक हर महत्वपूर्ण घटना पर उनके कार्टून छपते थे। 1962 के चीनी आक्रमण पर उनके कार्टून बेहद प्रभावशाली थे। उन्होंने भारत की तैयारियों की कमी और सरकार की लापरवाही को दिखाया, लेकिन साथ ही भारतीय सैनिकों के साहस की भी सराहना की।
0: 1977 में जब आपातकाल खत्म हुआ और चुनाव हुए तो शंकर ने एक यादगार कार्टून बनाया जिसमें कॉमन मैन को मतपेटी के सामने खड़े दिखाया गया था और उसके चेहरे पर संकल्प का भाव था। कैप्शन था, अब मेरी बारी है। ये कार्टून लोकतंत्र की विजय का प्रतीक बन गया।
1: बिल्कुल, और आर के लक्ष्मण जो आगे चलकर भारत के सबसे प्रसिद्ध कार्टूनिस्टों में से एक बने, शंकर के ही मार्गदर्शन में आगे बढ़े थे। लक्ष्मण अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, शंकर मेरे गुरु थे। उन्होंने मुझे सिखाया कि कार्टून केवल मजाक नहीं है, ये समाज का दर्पण है। अब्बू अब्राहम, मारियो मिरांडा जैसे कई प्रसिद्ध कार्टूनिस्टों ने शंकर से प्रेरणा ली। शंकर का स्टूडियो युवा कलाकारों के लिए हमेशा खुला रहता था। कोई भी आकर अपना काम वहां दिखा सकता था।
0: शंकर अक्सर कहते थे, प्रतिभा तो बहुत लोगों में होती है लेकिन मेहनत और निरंतरता से ही सफलता मिलती है, और सबसे जरूरी है ईमानदारी। अपनी कला के प्रति ईमानदार रहो। शंकर को उनके जीवन काल में कई सम्मान मिले, लेकिन वे इन सम्मानों को अपनी उपलब्धि नहीं बल्कि कला की महत्ता के रूप में देखते थे। 1966 में उन्हें भारत सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया। ये भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने शंकर से कहा, आपने कला के माध्यम से समाज को दर्पण दिखाया है। यह सम्मान केवल आपकी कला के लिए नहीं बल्कि आपके सामाजिक योगदान के लिए भी है।
1: और तब शंकर ने विनम्रता से जवाब दिया, महोदय, ये सम्मान केवल मेरा नहीं है, ये उन करोड़ों कॉमन मैन का है जिनकी आवाज में अपने कार्टून के जरिए उठाने की कोशिश करता हूँ। साल 1974 में उन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया, जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। हालांकि उन्हें ये पुरस्कार नहीं मिला, लेकिन नामांकन ही उनकी प्रतिष्ठा का प्रमाण था।
0: 1980 के दशक में शंकर की उम्र 80 के पार हो चुकी थी, लेकिन उनका उत्साह कम नहीं हुआ था। वे अभी भी नियमित रूप से कार्टून बनाते थे, बाल भवन जाते थे और युवा कलाकारों से मिलते थे। हालांकि उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। 1989 में उन्हें कई बार अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, लेकिन अस्पताल में भी वे अपनी स्केच बुक साथ में रखते। एक बार उनके डॉक्टर ने उनसे कहा, आप अब आराम कीजिए, इतनी उम्र में भी आप काम कर रहे हैं। शंकर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, डॉक्टर साहब, कला करना मेरे लिए काम नहीं है, ये मेरी सांस है, जब तक सांस है तब तक कला रहेगी।
1: और वो दिन 26 दिसंबर 1989 की शाम, जब शंकर ने अपनी अंतिम सांस ली, उनकी मृत्यु की खबर फैलते ही पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। अखबारों में श्रद्धांजलि छपी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और देश भर के लोगों ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा, शंकर जी ने अपनी कला से भारतीय लोकतंत्र को मजबूत किया, उनका कॉमन मैन हमेशा हमें याद दिलाता रहेगा कि सरकार किसके लिए है। आज देश भर में 25 से ज्यादा शहरों में बाल भवन है जो लाखों बच्चों को कला की शिक्षा दे रहे हैं। दिल्ली का बाल भवन आज भी सक्रिय है और हर साल हजारों बच्चे वहाँ आते रहते हैं।
0: CBT आज भी बच्चों के लिए किताबें प्रकाशित कर रहा है। 60 साल में इसने 3000 से ज्यादा किताबें प्रकाशित की हैं, जो 100 से ज्यादा भाषाओं में उपलब्ध है। हालांकि शंकर्स वीकली अब प्रकाशित नहीं होती, लेकिन इसने भारतीय व्यंग पत्रकारिता की नींव रखी। आज के कई व्यंग कार्यक्रम और पत्रिकाएं शंकर्स वीकली से प्रेरित है।
1: आज के कई प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट शंकर को अपना प्रेरणा स्रोत बताते हैं। उनकी शैली, सरल रेखाएं, गहरा संदेश और मानवीय स्पर्श आज भी कलाकारों को बेहद प्रभावित करता है।
0: के शंकर पिल्लई का जीवन एक साधारण केरल के लड़के से लेकर भारत के सबसे प्रतिष्ठित कार्टूनिस्ट और समाज सेवक बनने की अद्भुत यात्रा है। उन्होंने साबित किया कि कला केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि समाज को जागरूक करने और बदलाव लाने का शक्तिशाली माध्यम है। बचपन में दीवारों पर कोयले से चित्र बनाने वाला वो बच्चा जिसकी माँ चिंतित रहती थी कि ये शौक पढ़ाई में बाधा न बन जाए, आखिरकार देश का गौरव बन गया।
1: जी हाँ, मुंबई की सड़कों पर भूखे पेट घूमने वाला वो युवक जिसने कभी हार नहीं मानी, आजाद भारत की आवाज बन गया। वो कलाकार जिसने अपने कॉमन मैन के जरिए करोड़ों भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया, आज भी हर भारतीय के दिल में जिंदा है। शंकर पिल्लई केवल एक कार्टूनिस्ट नहीं थे, वे एक दूरदर्शी, एक शिक्षक, एक समाज सुधारक और सबसे बढ़कर एक अच्छे इंसान थे जो अपने देश और उसके लोगों से बेइंतहा प्यार करते थे।
0: उनका जीवन हमें सिखाता है कि सपने देखो, मेहनत करो, अपनी प्रतिभा को समाज की सेवा में लगाओ और कभी भी अपने मूल्यों से समझौता मत करो। आज भी जब हम कॉमन मैन को देखते हैं, हमें शंकर की याद आती है, वो महान कलाकार जिसने अपनी कला से लाखों दिलों को छुआ और भारतीय लोकतंत्र को मजबूत किया। कला जीवन का दर्पण है और कलाकार समाज का प्रहरी। के शंकर पिल्लई। श्रोताओं, तो आज हमने प्रस्तुत कार्यक्रम भारत विभूति में चर्चा की के शंकर पिल्लई जी के बारे में। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, लेखक अखिलेश कुमार वर्मा और मैं था आपका दोस्त दीपक नेमा।
1: मैं आपके साथ डॉक्टर रानी रैकवार भारती।
0: तो दोस्तों, सुनते रहिए 90.8 रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। नमस्कार।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम भारत विभूति 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून इन किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है रेडियो रिपोर्ट।

0: आइए चलते हैं कुछ पलों के लिए टैगोर नाट्य महोत्सव में।
1: अरे वो जानता था कि ये ठीक नहीं है, शायद दोनों को पाना संभव ही नहीं, पर फिर भी वो शर्मिष्ठा का साथ चाहता था। एक अजीब मीठी सी कसर उसके मन में घर कर गई थी।
2: अगली सुबह स्टेशन पर राजकिशोर जी और सुनंदा जी के साथ वो भी आई, उन्हें सी ऑफ कर दी और गाड़ी आने तक वो सुरेखा से ही बातें करती रही। और जब दूर क्षितिज पर गाड़ी का इंजन दिखा तो वो सौमित्र के पास गई और बोली,
3: कब आएंगे?
4: आप कभी तो अपनी रुक जाएं। जब आप बुलाएंगे?
3: बुलिएगा नहीं, जल्दी आइएगा।
1: गाड़ी में से हाथ खिलाते हुए सुमित्र ने देखा कि शर्मिष्ठा अपनी आंखों के कोर में आए आंसू पोंछ रही थी। ये आंसू किसके लिए थे? सुमित्र के लिए या सुरेखा के लिए? शर्मिष्ठा उसका मन गहरी उदासी से भर आया।
5: राजनगर से बटा हुआ मन लेकर वापस लौटा, उसमें सुरेखा का सहज आत्मीय प्यार था तो शर्मिष्ठा का गहरा आवेग भी। सुरेखा की शांत स्नेहिलता थी तो शर्मिष्ठा की ऊष्म चंचलता भी। और सुरेखा के साथ धरती पर रहने की आकांक्षा थी तो शर्मिष्ठा के साथ नीले आकाश में उड़ने की इच्छा भी।
2: उसका किसी काम में मन नहीं लगता, वो शर्मिष्ठा के बारे में सोचता रहता। सुरेखा के लिखे पत्रों में वो खोजता क्या, उसके बारे में कुछ पूछा? और आखिर लंबे खत के बाद सौमित्र कैसे हैं?
6: अरे शर्मिष्ठा के फोन आने पर वो उसके इर्द गिर्द ही घूमता रहता था ताकि उसे भी बात करने का मौका मिले। और जब सुनंदा उसे कहती कि शर्मिष्ठा तुम्हारे बारे में पूछ रही थी तो उसका मन बल्ले उछलने लगता था।
7: अरे सुनो, उसने राजनगर ट्रिप का एक फोटो जिसमें वो सुरेखा और शर्मिष्ठा समित के समुद्र किनारे खड़े हुए हैं अपने ऑफिस की ड्रॉर के अंदर छुपा के रखा हुआ है। और रोजाना, हाँ सही कह रहा हूँ, रोजाना कम से कम एक बार तो निकाल कर उसे देख ही लेता है। इस पर उसका ये मन कहता उससे,
6: दिस इज मैडनेस, ये पागलपन है।
2: सो व्हाट, मुझे अच्छा लग रहा है।
6: अरे तो तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा।
2: क्या पता कुछ हासिल हो ही जाए,
6: तो एक बार फोन करके बात कर लो, बात और हो जाए।
2: अरे ऐसी भी क्या जल्दी है,
6: चलो बाहर में जाओ।
3: शर्मिष्ठा आ रही है।
6: हैं? अच्छा बात, कैसे?
3: कैसे क्या, हम से मिलने आ रही है। बहुत दिनों से पहले थी तुम्हारी याद आ रही, मैंने कहा आ जाओ एक दो दिन साथ में। सुनो, तुम दो एक दिन की छुट्टी ले लेना, कहीं घूमने चलेंगे।
6: दो एक दिन की छुट्टी क्या, मैं तो पूरे 15 दिन की छुट्टी ले रहा हूँ। हाँ, देखते हैं।
3: मैं नहा कर आती हूँ, उसके बार मैं तुम्हें बहुत अच्छी कॉफी पिलाऊंगी।
8: ओके

0: अगले दिन टूर का बहाना करके वो शहर से बाहर चला गया और कुछ महीनों तक वो ऐसा ही करता रहा। उसके मन में अजब सा तूफान मचा था और अगर ऐसा था तो फिर वो समझ क्यों नहीं पाया।
1: आखिर वो कह तो ठीक ही रही, उसे खुद कोई भ्रम नहीं पालना चाहिए था।
0: तो भी पर वो फिर खुद क्यों आगे बढ़ी?
1: क्या बात कर रहे हो, वो कब आगे बढ़ी? सिवा दशमी नॉर्मल प्रवाह में और प्रसन्न थे तुम ही ने उसने आप निकाली।
0: जो भी पर अभी अवसाद कैसे हटे, कैसे हटे?
1: तुम्हें शुरू में ही कहा था भागो मत, गिरोगे।
0: कई बार खुद की बात मानने का मन नहीं करता, सीमा रेखा तोड़ने की क्या होती है?
1: कुनाक में भी तुम्हें चिताया था
0: पर मना भी तो नहीं किया था।
1: अब इससे क्या फायदा, अब तुम मना भी कर दिया।
0: मैं भी कठोरता बरती
1: नहीं, कठोरता नहीं, याद करो वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोर देकर

0: वो अगले 20 सालों तक शर्मिष्ठा से नहीं मिला। सुलेखा कभी कहती थी कि शर्मिष्ठा का फोन आया था तो मैं याद कर रही थी तो वो टाल जाता। एक आठ बार जब वो इंदौर आई तो स्वामी से टूर पर चला गया और तब तक नहीं लौटा जब तक वो वापस नहीं चली गई।
1: लौटते हुए राजनगर धुआना मुझे उसे देखने की बहुत मन कर रहा।
2: चलो ना,
1: मेरा जाना नहीं हो पाएगा, बच्चों की परीक्षा है। तुम जाओ, आकर मुझे खबर दे देना, फिर कभी साथ चलेंगे।
2: ठीक है, मैं तो कलकत्ता जा ही रहा हूँ, लौटते समय एक दो दिन राजनगर होता हूँ। और शर्मिष्ठा
0: आज अचानक उसे बहुत तीव्रता से शर्मिष्ठा की याद आई और पूरा घटनाक्रम एक चलचित्र की तरह उसकी आंखों के सामने से गुजर गया। स्वामित्व के मन में पीड़ा की एक लहर सी उठी।
3: उसे शर्मिष्ठा के साथ ये बेरुखी नहीं बरतनी चाहिए थी, नहीं बरतनी चाहिए।
4: कलकत्ता से राजनगर जाते समय वो इन्हीं सवालों और स्मृतियों में डूबा रहा। इस बार जब वो स्टेशन पर उतरा तो रसायन की गंध उतनी तीखी नहीं थी और स्टेशन मास्टर के स्थान पर एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति बैठा था जिसने एक क्षण देखने के बाद उससे कहा,
5: अरे सुमित्र बाबू, अरे इतने साल बाद हमारे चेहरे हैं।
2: आप चैटर्जी बाबू है ना?
5: हाँ।
2: आप अभी तो यही है?
5: अरे नहीं नहीं, मैंने पूरा उड़ीसा घुमाया है, टिटलागढ़, टीकमपुर, पुरी सब जगह चलाया है और रिटायरमेंट पास है ना, इसलिए यही घर बना दिया। आप कैसा है?
2: ठीक है।
5: सुरेखा क्या?
2: अरे सुरेखा भी ठीक है, बच्चे भी ठीक है, सब इंदौर में है।
5: इंदौर में? वो तो बहुत दूर है, मैं भी एक बार वहाँ गया था। कभी पता सबको लेकर यहाँ आओ ना।
2: जरूर जरूर आऊंगा। अच्छा चैटर्जी बाबू, अभी चलता हूँ, मिलूंगा मैं आपसे।
5: जरूर जरूर।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। खुलकर

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8
1: देश का चैनल देश के लिए। हम हैं
0: रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई।
1: रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
0: तो सुनते रहिए रेडियो आज़ाद हिंद देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार। पर

0: मैं हूं पिनाज मसानी और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद।
1: दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको, दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको।

0: दोपहिया वाहन की सवारी करते समय हेलमेट जरूर पहनें। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी।
1: जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, ओ लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो।

0: नमस्कार, मैं नितिन मुकेश। आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
1: नमस्कार, मैं हूं कनिका तिवारी और आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: हेलो पप्पू पेजर बोल रहा हूँ। ए झंटू ले झटक दादा ना मटक और मेरी बात गले में सटक।
1: नमस्कार मैं हूँ सतीश कौशिक, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: स्वाधीनता संग्राम स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका इतिहास, इस देश का इतिहास जो आ पहुंचा है आपके पास आपको सुनाने फिर से एक वीर की गाथा। लेकिन तारीख कहाँ है? अरे तारीख, तुम वहां क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें देखा ही नहीं।
2: नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी तारीख, आपकी अपनी तारीख जो यहाँ आ पहुंची है देने इतिहास का साथ। और आज तो इतिहास से पहले ही आ गई हूँ मैं।
1: क्या बात है, आज तो बड़े उत्साह में दिखाई पड़ती हो। भाई बात क्या है, हम भी तो जाने।
2: बिल्कुल सही कहा, मैं तो हूँ ही उत्साहित। अब भाई आखिर मैं तारीख हूँ, उत्साहित नहीं रहूंगी क्या? लेकिन आज मेरे उत्साह का एक और कारण है।
1: अच्छा, तो हम सबको भी तो बताओ वो कारण।
2: इतिहास, आपने ही तो कहा था कि आज आप ऐसे नायक के बारे में बताएंगे जिसे राजनीति में ऋषि का प्रादर्श कह सकते हैं।
1: बिल्कुल तारीख, देखो राजनीति का ऋषि पहले एक प्रादर्श क्रांतिकारी होता है, इसलिए ये कहना चाहिए कि क्रांति नायक राजर्षि।
2: ओ हाँ, अब याद आया, आप आज राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन के बारे में हम सबको बताने वाले हैं, है ना? जिन्हें राजर्षि की उपाधि स्वयं जनता ने दी है।
1: वाह, तुम्हें याद है, बहुत खूब तारीख। भाई मान गए तुम्हें, देर से ही सही लेकिन तुम्हें याद तो आया।
2: अरे आप मेरी तारीफ छोड़िए और राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी के बारे में बताइए।
1: ये तो मेरा सौभाग्य होगा तारीख, तुम्हें पता है उनके लिए एक कविता हमेशा कही जाती है।
2: वाह कविता, अरे मैं क्या, हम सब सुनना चाहेंगे इतिहास, जरूर सुनाइए।
1: तो सुनो, दे राजर्षि की उपाधि देश ने जिनका था सम्मान किया, निरासक्त उन महतापी ने क्या था अपना नहीं दिया, व्रती भीष्म सदृश थे वे शिव सामान अवढर थे, पुत्र भारती का हो कोई उनके सबके हित कर थे।
2: सुना है वो हिंदी की उन्नति के लिए भीष्म थे और हरीशचंद्र की तरह दृढ़ प्रतिज्ञ थे। आज हिंदी अगर राष्ट्रभाषा के पद पर है तो वो उन्हीं की साधना का फल है।
1: हाँ तारीख, बिल्कुल सही सुना है तुमने। चलो अब हम और हमारे साथी सुनते हैं एक देशभक्ति से ओतप्रोत गीत।

0: राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी का जन्म 1882 की 1 अगस्त को प्रयाग के खुशहाल पर्वत नामक मोहल्ले में हुआ था। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी के पिताजी का नाम सालिग्राम और माताजी का नाम बिट्टन देवी था, जो कि बाद में राधास्वामी धर्म में दीक्षित होने के चलते शरण देवी हो गया। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन ने प्रारंभिक शिक्षा घर पे लेने के बाद 1897 में गवर्नमेंट हाई स्कूल से मैट्रिक और 1899 में कायस्थ पाठशाला कॉलेज से इंटर और उसके पश्चात 1904 में म्योर सेंट्रल कॉलेज से बीए और फिर 1906 में वकालत की परीक्षा पास की। इसके साथ ही साथ वकालत की पढ़ाई करते हुए उन्होंने इतिहास में एमए भी किया।
1: हाँ, और 1899 में ही उनका विवाह चंद्रमुखी देवी से करवा दिया गया था और चंद्रमुखी देवी ने भी कस्तूरबा जी की ही तरह हमेशा अपने पति के सिद्धांतों का अनुसरण किया। इस प्रकार चंद्रमुखी देवी भी ऋषि पत्नी होने का एक प्रादर्श है।
0: वकालत करते करते राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी का संपर्क महामना मालवीय जी से हुआ। 1914 में मालवीय जी ने राजर्षि को पंजाब के नाभा राज्य के दीवान के पद पर नियुक्ति दिलवाई, लेकिन उसे अपनी प्रवृत्ति और प्रकृति के प्रतिकूल पाकर राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी ने जल्द ही उस पद से मुक्ति ले ली।
1: राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी जन्मजात देशभक्त तो थे ही साथ जन्मजात रूप से अनाचार और अत्याचार के विरुद्ध निडर होकर खड़े होने वाले योद्धा भी थे। जब वे एक विद्यार्थी के रूप में अपनी शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर रहे थे, तभी उन्हें अपनी देशभक्ति के चलते कांग्रेस का साथ मिला और वो कांग्रेस के साथ हो लिए।
0: हाँ, तारीख कांग्रेस पार्टी में वे सबसे पहले 1905 में वाराणसी में हुए कांग्रेस अधिवेशन में स्वयंसेवक के रूप में शामिल हुए और उस अधिवेशन की अध्यक्षता श्री गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। इसके बाद 1908 में इलाहाबाद में हुए कांग्रेस अधिवेशन में प्रतिनिधि बनकर शामिल हुए राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन उर्फ राजर्षि।

0: वो समय आ चुका था जबकि भारत का इतिहास करवट बदल रहा था। शांतिपूर्वक भारत का शासन भारतीयों को देने के वादे से अंग्रेज सरकार मुकर गई थी। और तो और इससे भी बढ़कर एक जो बहुत ही बुरी बात हुई थी वो ये कि रोलेट एक्ट कानून भी पास कर दिया गया था। क्रांतिकारी कांग्रेस सरकार ने उसे काला कानून नाम दिया और इस कानून के विरुद्ध एक जन आंदोलन छिड़ गया।
1: इसी समय की बात है, देश में जलियांवाला कांड भी हो चुका था। कांग्रेस ने इस क्रूर कांड की जांच समिति बनाई जिसके एक सदस्य पुरुषोत्तम दास टंडन उर्फ राजर्षि भी नियुक्त किए गए। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ असहयोग आंदोलन की घोषणा कर दी। पुरुषोत्तम दास टंडन भी राजसी आय वाली वकालत छोड़कर इस आंदोलन में शामिल हो गए। सारे ठाट बाट छोड़कर उन्होंने अपने परिवार को भी सारी सुविधाओं से वंचित कर दिया। वे गांव गांव घूमकर विदेशी कपड़ों की होली जलाते, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करते, चरखे का प्रचार, अदालतों का बहिष्कार, अंग्रेजी शिक्षा का बहिष्कार करते और इस तरह आजादी की अलख जगाने में जुट गए। इसका परिणाम ये हुआ कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 1.5 बरस का कारावास हुआ।
0: कितने महान होते थे वो वीर सपूत जो अपनी सारी सुविधाएं भूलकर भारत माता की आजादी के लिए जेल जाने में अपना सुख खोज लेते थे। कितने खुशनसीब थे वो जेल जिनमें ऐसे सपूतों के चरण पड़ते थे।

0: समय धीरे धीरे करवट ले रहा था। चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था और सभी राजनीतिक बंदी मुक्त कर दिए गए थे।
1: इस दौर में पुरुषोत्तम दास टंडन उर्फ राजर्षि की पत्नी चंद्रमुखी जी ने अपने पति को दिए वचन का पालन करने के लिए न किसी की मदद ली और न ही याचना की।
0: जेल से निकलने के बाद लाला लाजपत राय ने उनकी प्रचारक क्षमता को ध्यान में रखते हुए पुरुषोत्तम दास टंडन को अछूतोद्धार के कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए आमंत्रित किया और इसके लिए उन्हें 500 रुपए मासिक वेतन देने का वायदा भी किया। लाला जी चाहते थे कि पुरुषोत्तम दास टंडन की आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार आ जाए, बस राजर्षि इस बात को भांप गए और मदद न लेने की अपनी नीति के चलते उन्होंने लाला जी के आमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। पुरुषोत्तम दास टंडन उर्फ राजर्षि का मानना था कि देश सेवा का प्रतिदान आजादी का फल पाने के लिए होता है, न कि आर्थिक उन्नति करने के लिए।
1: वाह, क्या विचार थे! देश सेवा का प्रतिदान आजादी का फल पाने के लिए होता है, न कि आर्थिक उन्नति करने के लिए। हाँ, परंतु लाला जी ने भी हार नहीं मानी होगी, है ना?
0: हाँ, लाला जी भी कहाँ हार मानने वाले थे। आखिरकार लाला लाजपत राय ने पुरुषोत्तम दास टंडन जी को लाहौर बुलाकर उनकी नियुक्ति पंजाब नेशनल बैंक के सचिव के पद पर करवा ही दी। यहाँ राजर्षि लाला जी का लिहाज करके काम भी करते रहे, लेकिन 1928 में जब लाला जी इस दुनिया को त्याग कर चले गए, तब पुरुषोत्तम दास टंडन ने भी अपने पद का त्याग कर दिया और ये नौकरी छोड़ दी। और फिर राजर्षि लोक सेवा मंडल के अध्यक्ष के रूप में फिर से इलाहाबाद आ गए। इलाहाबाद में उन्होंने गांधी जी के नमक सत्याग्रह आंदोलन के सहयोग में नमक कानून तोड़ा, जिसके फलस्वरूप वे अंग्रेज शासन द्वारा पुनः जेल भेज दिए गए। 1935 में गांधी जी ने गांधी इरविन समझौते के तहत आंदोलन वापस ले लिया और राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जेल से छूट गए।
1: इस दफे पुरुषोत्तम दास टंडन ने किसानों को संगठित करना शुरू किया और उनकी कोशिशों से इलाहाबाद में एक बहुत बड़ा किसान सम्मेलन हुआ, जिसकी अध्यक्षता श्री वल्लभ भाई पटेल ने की।
0: उत्तर प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने उन्हें बतौर स्पीकर चुना, लेकिन 1940 में उन्होंने इस पद को भी त्याग दिया। कांग्रेस ने देशव्यापी भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया और इसमें राजर्षि की सक्रियता को देखकर अंग्रेज सरकार ने उन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया और 1945 तक वे जेल में ही रहे।
1: कांग्रेस के जो कार्यकर्ता जेलों में बंद थे, उन्हें कांग्रेस ने आर्थिक सहायता भी पहुंचाई, लेकिन राजर्षि की पत्नी ने ये सहायता लेने से साफ इनकार कर दिया।
0: फिर कांग्रेस की सरकार बनी और 1945 में पुरुषोत्तम दास टंडन जेल से छूट कर आए और पुनः चुनाव जीत कर उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष बने। 1947 में भारत आजाद हुआ, लेकिन राजर्षि विभाजन के विरुद्ध थे। जब सभी लोग आजादी का जश्न मना रहे थे, तब राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन एकांत में बैठकर आंसू बहा रहे थे, क्योंकि वो ये विभाजन कभी नहीं चाहते थे।

0: 1950 में भारत के संविधान निर्माण के लिए गठित समिति में एक सदस्य राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन भी थे। उन्हीं के कारण हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया। इसके बाद 1952 में वो लोकसभा के अध्यक्ष भी चुने गए और 1955 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने। 1961 में भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न की उपाधि से विभूषित किया।
1: अंततः एक निरासक्त कर्मयोगी ने 1 जुलाई 1932 में बीमारी के चलते अपनी अंतिम सांस ली। वे एक सिद्ध के आशीर्वाद स्वरूप इस धरती पर जन्मे थे और एक सिद्ध के रूप में ही दूसरों के लिए सोचते करते चिर निद्रा में लीन हुए। एक सिद्ध योगी के रूप में राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन इतिहास में भी अपना नाम सिद्ध पुरुष के रूप में दर्ज करा गए।
0: उन्होंने अपने जीवन में जितने काम किए दूसरों के लिए ही किए। दूसरों की खुशियों, दूसरों के सुख से ही स्वयं सुख की अनुभूति पाने वाले उस कर्मवीर को इतिहास कभी नहीं भुला पाएगा। सच्चे शब्दों में सदा उन्हें राजर्षि के रूप में याद किया जाएगा। क्रांति नायक राजर्षि।

अभी आप सुन रहे थे आजाद हिंद कार्यक्रम का प्रसारण। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून इन किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई। रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है। तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

0: दोपहिया वाहन की सवारी करते समय हेलमेट जरूर पहने। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी।
1: जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, ओ लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो,

0: नमस्कार, मैं नितिन मुकेश। आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। जय हिंद।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद का प्रसारण अपनी रेडियो मित्र भारती के साथ। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर सागर।

0: इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं गायन वादन, लोकगीत, गजलें और बहुत कुछ। आज आप सुनेंगे डॉक्टर ऋषि मिश्र का गायन।
1: मुखड़ा देखिएगा,

बोल है गगन सघन घेरी आए पड़त गूंज छहरी छहरी नव पल्लव नव कुसुम सब नए पत्ते नए फूल जगाए हरि तज नित मन लुभाए प्रभु के मन को वो लुभा रहा है।

दादुर मोर पपीहा बोले, जब बारिश छोटा है तो मोर पपीहा सब बोलते हैं, कोयल बन कूं के कूं के। इतना सुंदर वातावरण है, लेकिन उस खूबसूरत वातावरण को देखकर बिरहन का मन हूंक हूंक हो रहा है। बड़े पीड़ा में है वो, क्योंकि उसका पति या उसका प्रेमी उसके साथ

और ये देखकर जो इसके रचयिता हैं मेरे गुरुजी पंडित गणेश प्रसाद मिश्र जी, उनका तन जल रहा है ये देखकर, ऐसा दृश्य कहां भगवान खुश थे और वो इतना पीड़ा में है ये देख।

पत्ताल की एक रचना है, मेघ मल्लार में ही याद आ गया, तो वो थोड़ा सा सुनाते हैं, बस दो चार मिनट सुनाएंगे। वो बड़ा अच्छा उसका मुखड़ा देखिएगा, आप लोग इतना प्यार से सुन रहे हैं तो सुनाने का मन कर गया मुझे, मुखड़ा देखिएगा।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर सागर। आप हैं रेडियो आजाद हिंद के प्रसारण के साथ 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। देश का चैनल, देश के लिए।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है।

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

नमस्कार, मैं हूँ मधुश्री और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूँ देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून इन किया है रेडियो आजाद हिंद। प्रस्तुत है कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद रेडियो रूपक।
1: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: अमेरिका के पूर्वी तट पर स्वामी जी विभिन्न नगरों में घूम घूम कर व्याख्यान देते रहे। 28 जून को प्रातःकाल वे फिर न्यूयॉर्क में आए। इस बार स्वामी जी ने अपना व्याख्यान ज्ञान योग और राजयोग पर केंद्रित किया। व्याख्यान के बाद प्रश्नोत्तर काल होता। वहां भारी भीड़ होती। कमरा बहुत बड़ा न था। उत्सुक छात्र छात्राओं को जगह कम पड़ती थी। फिर भी वे भारतीय पद्धति के अनुसार पैर समेटकर अपने प्रिय आचार्य को घेर कर बैठते थे। राजयोग के विषय पर उनके भाषणों को सुनकर कई लोगों का आग्रह इतना बढ़ गया कि उन्होंने स्वामी जी से योग शिक्षा ग्रहण करना प्रारंभ किया और इस विषय में सफल होने के लिए योग शास्त्र के निर्देशानुसार ब्रह्मचर्य सात्विक आहार इत्यादि नियमों को भी श्रद्धा के साथ पालन करने लगे।
1: इस समय स्वामी जी ने भी योगी की तरह शारीरिक कठोरता का अवलंबन किया, क्योंकि वे सदैव ही शिष्यों के सामने एक जीते जागते आदर्श के रूप में विराजमान रहते थे। इस प्रकार उनका न्यूयॉर्क का छोटा सा निवास गृह सन्यासी व संयमशील व्यक्तियों की नवीन आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्ति की लगातार चेष्टा से मानो एक छोटा सा मठ ही बन गया। एक शिष्य ने उन दिनों का वर्णन करके लिखा है,
2: स्वामी जी द्वारा राजयोग पर दिए गए भाषणों की ख्याति इतनी व्यापक बन गई कि जिस दिन राजयोग के संबंध में भाषण होने का कार्यक्रम रहता था, उस दिन नगर के दार्शनिक वैज्ञानिक व अध्यापकों के आगमन से उनका छोटा सा कमरा भर जाता था और वे लोग बड़ी लगन के साथ उनकी योग शास्त्र की युक्तिपूर्ण वैज्ञानिक व्याख्या सुनते थे। इस प्रकार जून मास के भीतर उनके भाषणों का संग्रह स्वरूप राजयोग नामक पुस्तक प्रकाशित हुई। स्वामी जी ने उनके परिशिष्ट में पातंजल दर्शन का एक विस्तृत व युक्तिपूर्ण भाष्य भी जोड़ दिया। इसमें संदेह नहीं कि इस पुस्तक ने उच्चतम मनस्तत्व के सूक्ष्म व युक्तिपूर्ण विश्लेषण की दृष्टि से मनीषी पाठकों के समाज में चिरकाल के लिए प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली है। इस पुस्तक का अध्ययन कर अमेरिका के विश्वविख्यात मनस्तत्वविद प्रोफेसर जेम्स महोदय इतने मुग्ध हुए कि वे स्वयं स्वामी जी के निवास स्थान पर जाकर उनसे परिचित हुए और अंत में उनके एक अभिन्न मित्र बन गए। इस पुस्तक के प्रकाशित होने के कुछ ही सप्ताह के बीच में उनके 3 संस्करणों की आवश्यकता हुई थी। इसी से समझा जाता है कि अमेरिका निवासी विद्वानों ने स्वामी जी की अलौकिक प्रतिभा से उत्पन्न इस प्रथम पुस्तक की सादर अभ्यर्थना करने में कोई कोर कसर नहीं रखी थी।
0: इस बीच स्वामी जी ने अनेक प्रतिष्ठित शिष्य तथा प्रचार कार्य के लिए सभी तरह के सहायक मित्र प्राप्त कर लिए थे। उनमें से मैडम मैरी लुई, डॉक्टर लैंड्सबर्ग, ओली बुल, डॉक्टर एलेने डी, कुमारी वॉल्डो, प्रोफेसर वमैन ओराइट, डॉक्टर स्ट्रीट तथा अनेक मिशनरी व सामान्य शिक्षित व्यक्ति भी स्वामी जी की शिक्षा में विशेष रूप से आकृष्ट हुए थे। कुछ दिनों बाद विख्यात गायिका श्रीमती काल्वे ने उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। अमेरिका के धनी समाज के श्री व श्रीमती फ्रांसिस लेगेट और कुमारी जे मैकग्लाउंड भी स्वामी जी का शिष्यत्व ग्रहण कर विविध प्रकार से उनके प्रचार कार्य में सहायता करने लगे।
1: सन 1895 में स्वामी जी को अमेरिका में कठोर परिश्रम करना पड़ता था, परंतु अमेरिका के घोर विलास के बीच उनकी अंतरात्मा समय समय पर विद्रोही बन बैठती थी। उस समय कभी कभी आजन्म त्यागी सन्यासी गहरे क्षोभ के साथ अपने जीवन के विगत दिनों की याद करते हुए कह उठते थे,
3: मैं तो अपने चिथड़े मुंडित मस्तक वृक्षों तले निद्रा और भिक्षा के रूखे भोजन के लिए तरस गया हूं।
0: लगातार उच्चतम दार्शनिक तत्वों का विश्लेषण करते हुए भाषण देने तथा शिक्षा दान के कार्य से थक कर स्वामी जी ने कुछ दिन एकांत में विश्राम लाभ की आवश्यकता का अनुभव किया। सेंट लॉरेंस नदी के बीच थाउसेंड आइलैंड पार्क, जिसे हम सहस्त्र द्वीपों का उद्यान कहते हैं, नामक द्वीप में उनकी एक शिष्या की बड़ी सुंदर कुटिया थी। उन्होंने विशेष आग्रह के साथ स्वामी जी से प्रार्थना की कि वे कृपया उसका उपयोग कर उसे पवित्र करें। स्वामी जी प्रस्ताव से सहमत होकर अपने कुछ अंतरंग शिष्य शिष्याओं के साथ वहां गए। उन्हीं शिष्याओं में से एक थीं कुमारी वॉल्डो। उन्होंने लिखा है,
4: इस गंधर्व राज्य में हमने आचार्य देव के साथ 7 सप्ताह दिव्य आनंद से उनके संदेशों से युक्त अपूर्व वचनों को सुनते हुए व्यतीत किए थे। उस समय हम भी जगत को भूल गए थे और जगत भी हमें भूल गया था। उस समय प्रतिदिन सायंकाल का भोजन समाप्त कर हम सभी ऊपर के बरामदे में जाकर आचार्य देव के आने की प्रतीक्षा करते थे। बहुत देर तक प्रतीक्षा न करनी पड़ती थी क्योंकि हमारे समवेत होने के साथ ही उनके कमरे का दरवाज़ा खुल जाता था और वे धीरे धीरे बाहर आकर अपने नियत आसन पर बैठ जाते थे। वे प्रतिदिन हमारे साथ 2 घंटे और कभी कभी इससे भी अधिक समय बिताया करते थे। एक अपूर्व सुंदर रात्रि में बात करते करते चंद्रास्त हो गया। जिस प्रकार हम समय बीत जाने के बारे में कुछ न जान सके, स्वामी जी भी उसी प्रकार न जान सके थे। उन सब भाषणों को लिख लेना संभव नहीं हुआ, पर हाँ, उन्हें हम में से कोई भूल न सकेगा। उन अवसरों पर स्वामी जी हृदय का द्वार खोल दिया करते थे। स्वामी विवेकानंद जैसे व्यक्ति के साथ निवास करना ही लगातार उच्च अनुभूतियों को प्राप्त करना है। प्रातःकाल से रात्रि तक वही एक भाव, हम एक घनीभूत धर्म भाव के राज्य में निवास करते थे।
1: कुमारी वॉल्डो के सजीव वर्णन से हम उन दिनों की कल्पना आसानी से कर पाते हैं। सुंदर परिवेश, चांदनी रात, शिष्य मंडली और स्वामी जी की सार गर्भित बातें, कितने सुखद होते होंगे वे दिन। वे आगे और भी लिखती हैं।
4: प्रत्येक चीज से ही वे कुछ बोलने का या उदाहरण देने का विषय पा लेते थे और एक क्षण में ही वे हमें आकर्षक हिंदू पौराणिक कथाओं से एकदम गंभीर दर्शन के बीच ले जाते थे। स्वामी पौराणिक कथाओं का अशेष भंडार थे और वास्तव में प्राचीन आर्यों से बढ़कर अन्य किसी भी जाति में इतनी अधिक पौराणिक कथाएं नहीं हैं। वे हमें उन कहानियों को सुनाकर प्रसन्न होते थे और हम भी सुनना चाहते थे, क्योंकि वे कभी उन कहानियों की आड़ में जो सत्य निहित है उसे दिखा देना तथा उनमें से मूल्यवान धर्म विषयक उपदेशों का आविष्कार करना न भूलते थे। किसी भाग्यवान छात्र मंडली ने इस प्रकार प्रतिभाशाली आचार्य को प्राप्त कर अपने को धन्य मानने का ऐसा अवसर पाया था या नहीं, इसमें संदेह है।
0: उस खूबसूरत जगह सहस्त्र दीपोद्यान के बारे में हमें कुमारी एमसी फंकी के संस्मरण भी प्राप्त हैं। उन्होंने इस प्रसंग में लिखा है,
5: मेरा यही दृढ़ संकल्प था कि किसी समय कहीं भी उनके साथ साक्षात्कार अवश्य करूंगी। यदि हमें इसके लिए सारी पृथ्वी भी लांगनी पड़े तो वो भी स्वीकार है। करीब 2 वर्ष तक हमें उनका पता नहीं लगा और हमने सोचा कि शायद वे भारत लौट गए हों, परंतु एक दिन तीसरे प्रहर एक मित्र ने हमें सूचित किया कि वे अभी इस देश में ही हैं और ग्रीष्म का अवकाश सहस्त्र दीपोद्यान में बिता रहे हैं। उन्हें ढूंढ निकालकर उनसे शिक्षा प्राप्त करने के दृढ़ संकल्प को लेकर हमने दूसरे ही दिन प्रातःकाल यात्रा प्रारंभ की।
1: कुमारी फंकी ने यात्रा का वर्णन इस तरह किया है,
5: उस दिन अंधकारमय रात्रि थी, मूसलाधार वर्षा हो रही थी, परंतु फिर भी हम उस लंबे पथ पर चले ही जा रहे थे। उनका साक्षात्कार हुए बिना हमारे मन में शांति कहाँ। क्या वे हमें शिष्य के रूप में ग्रहण कर लेंगे, और यदि ना करें तो फिर हम क्या करेंगे। हमें एकाएक ये ध्यान आया कि एक व्यक्ति जो हमारे अस्तित्व तक को नहीं जानता, उससे मिलने हमारा कई मील चले आना शायद मूर्खता का कार्य हुआ है।
1: इस प्रसंग में स्वामी ने कहा था,
3: मेरे शिष्य कई मील लांघ कर मुझसे मिलने आए थे, और इतना ही नहीं, रात की आंधी व वर्षा सिर पर उठाकर।
5: मैंने अपने मन में पहले से ही ये सोच रखा था कि मिलने पर उनसे क्या कहूंगी, परंतु जब वास्तव में उनका साक्षात्कार हुआ तो उस समय हम अपने तैयार किए हुए उस भाषण को भूल गए और हम में से एक व्यक्ति किसी तरह बोल उठा, हम डेट्रॉइट से आ रहे हैं। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, यदि इस समय भगवान इस पृथ्वी पर मौजूद होते तो हम उनके पास जिस रूप में जाते व उपदेश की शिक्षा मांगते उसी रूप में हम आपके पास आए हैं। वे हमारी ओर अत्यंत स्नेह भरी आंखों से देखते हुए मृदु स्वर में बोले,
3: काश अगर भगवान ईसा की तरह मुझ में तुम्हें इसी क्षण मुक्त कर देने की शक्ति होती।
5: एक दिन तीसरे प्रहर त्याग की महिमा के प्रसंग में ग्यारिक वस्त्रधारी साधुओं के आनंद व स्वाधीनता का वर्णन करते हुए एकाएक वे उठ गए और थोड़े ही समय के बाद त्याग व वैराग्य की चरम सीमा रूपी सन्यासी का गीत शीर्षक कविता को उन्होंने लिख डाला। मैं समझती हूँ उनकी असीम धीरता व कोमलता ने ही मुझे उस समय सबसे अधिक मुग्ध किया था। पिता अपनी संतान को जिस दृष्टि से देखते हैं वे भी हमें उसी दृष्टि से देखते थे, यद्यपि हम में से अनेक व्यक्ति उनसे उम्र में काफी बड़े थे।
3: अब थोड़ी देर के लिए इस पाठशाला की छुट्टी। आप लोगों को भूख तो लग ही गई होगी। मैं आज आप लोगों के लिए भारतीय भोजन तैयार करता हूँ। नहीं नहीं, घबराने की कोई बात नहीं, मैं ठीक ठाक रसोई कर लेता हूँ।
5: फिर कितनी धीरता के साथ वे चूल्हे के पास खड़े होकर हमारे लिए कुछ न कुछ भारतीय भोजन तैयार करते थे। डिट्रॉइट में अंतिम बार भी उन्होंने हमारे लिए बड़े ही स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए थे। विवेकानंद शिष्यों के छोटे छोटे अभावों की पूर्ति अपने हाथों से कर दिया करते थे। शिष्यों के लिए क्या ही अपूर्व उदाहरण है, उस समय वे कितने कोमल कैसे करुण स्वभाव बन जाते थे, और आज वो कोमलतामय पुण्य स्मृति ही तो हमें उत्तराधिकार के रूप में दे गए हैं।

0: बहुत दिनों के बाद स्वामी जी नगरीय कोलाहल, प्रतिद्वंदियों से संघर्ष, व्याख्यान आदि के पंजे से छुटकारा पाकर निश्चिंत होकर विश्राम कर सके। सहस्त्र दीपोद्यान आने से पहले उन्हें ग्रीन एकर कॉन्फ्रेंस में भाषण देने के लिए बुलाया गया था, परंतु उन्होंने उसे अस्वीकार किया। विद्वान दार्शनिकों के सम्मुख भाषण देने की अपेक्षा भावी वेदांत प्रचार कार्य के सहयोगी के रूप में कुछ शिष्य गठित करना ही उन्होंने अधिक आवश्यक समझा।
1: लगातार 7 सप्ताह तक उन्होंने जो अमूल्य उपदेश दिए थे उनका कुछ अंश किसी एक शिष्य ने लिपिबद्ध कर लिया था। बाद में वो इंस्पायर्ड टॉक्स नाम से पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ। देववाणी पुस्तक उसी का हिंदी अनुवाद है।
0: यहीं पर स्वामी जी ने 5 व्यक्तियों को ब्रह्मचर्य की दीक्षा दी और 2 को संन्यास प्रदान किया। अंत में वे फिर से नवीन उत्साह के साथ न्यूयॉर्क लौटकर वेदांत प्रचार के कार्य में संलग्न हुए।
1: न्यूयॉर्क लौटकर ही स्वामी जी इंग्लैंड जाने के लिए तैयार हुए। मई के महीने में वेदांत की अनुरागिणी कुमारी हेनरिएटा मुलर ने उन्हें इंग्लैंड बुलाया था। इधर श्री ईटी स्टर्डी महोदय भी स्वामी जी को लंदन आने के लिए बार बार पत्र लिखने लगे। इसी बीच स्वामी जी के एक मित्र ने, जो न्यूयॉर्क के एक धन कुबेर थे, जब उन्हें साथ लेकर फ्रांस व इंग्लैंड जाने का प्रस्ताव दिया तो स्वामी जी ने सहर्ष अपनी सम्मति दे दी। 2 वर्ष के कठोर परिश्रम से उन्हें जो शारीरिक एवं मानसिक क्लांति आई थी, समुद्र यात्रा करने पर उसमें कुछ सुधार होगा ये सोचकर उनके शिष्यों ने भी आपत्ति नहीं की। अंत में प्रचार कार्य का भार स्वामी अभयानंद, कृपानंद तथा हरिदासी पर छोड़ मध्य अगस्त में रवाना होकर वे पेरिस गए और वहां से लंदन गए।
0: अमेरिका छोड़ने से पूर्व स्वामी जी को समाचार मिला कि भारत में उनके विरुद्ध सुसंगठित रूप से निंदा प्रचार किया जा रहा है। उनके विदेशी आहार आदि के बारे में सुनकर कई हिंदू भी उनके विरोधी बन गए हैं। उनके आचार व्यवहार की आलोचना कर छोटी छोटी पुस्तकें तथा हैंडबिल बांटे जा रहे हैं। प्राचीन पंथी हिंदू संप्रदाय का मुखपत्र बंगवासी अखबार इस दुष्प्रचार का मुखिया बना हुआ है। यद्यपि मठ में रहने वालों ने इन अफवाहों को सच नहीं माना, पर मद्रास तथा अन्य स्थानों पर भारतीय शिष्यगण गुरु निंदा सुनकर विचलित हो उठे। स्वामी जी ने इंग्लैंड यात्रा के पूर्व उन लोगों के पास एक पत्र लिखने की आवश्यकता समझी। स्वामी जी ने शिष्य वृंद को सांत्वना देने के

0: ये लिखा,
1: मुझे आश्चर्य हो रहा है, तुम लोग मिशनरियों द्वारा प्रचारित बेवकूफियों को सुनकर विचलित हुए हो। यदि कोई हिंदू मुझे कट्टर हिंदू की तरह खाद्य संबंधी परामर्श देते हो तो उन्हें कहो कि वे यहां एक ब्राह्मण रसोईया भेज दें। एक पैसा देकर सहायता करने की शक्ति नहीं, परंतु विज्ञ व्यक्ति की तरह उपदेश देने की खूब योग्यता है। ये देखकर मैं हंसी नहीं रोक सकता। दूसरी ओर यदि मिशनरी गण ऐसा कहते हैं कि मैंने काम कांचन के त्याग रूपी संन्यास जीवन के इस महान व्रत का भंग किया है, तो उनसे कह दो कि वे घोर मिथ्यावादी हैं। स्मरण रखो, मैं किसी के निर्देश पर चलने को तैयार नहीं हूं। अपने जीवन का उद्देश्य मैं भली भांति जानता हूं। किसी प्रकार का हल्ला गुल्ला तथा निंदा आदि की मैं परवाह नहीं करता। क्या मैं किसी व्यक्ति विशेष या जाति विशेष का क्रीतदास हूं? क्या तुम कहना चाहते हो कि मैंने कुसंस्कार वाले निष्ठुर प्रकृति दुर्बल चित्त तथा तथाकथित शिक्षित व्यक्तियों के बीच निवास करने के लिए जन्म ग्रहण किया है? मैं सभी प्रकार की कापुरुषता से घृणा करता हूं। उन सब कापुरुषों व राजनीतिक मूर्खता के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। ईश्वर और सत्य ही मेरी एकमात्र राजनीति है। शेष जो कुछ भी है केवल कूड़ा करकट है।

0: उन दिनों भारत इंग्लैंड के अधीन था। प्रभुत्व के अहंकार से फूले हुए साम्राज्यवादी अंग्रेज पराधीन जाति के एक धर्म प्रचारक सन्यासी को किस भाव से ग्रहण करेंगे, यही सोचते सोचते स्वामी जी लंदन पहुँचे। उनके मन में अंग्रेजों के प्रति प्रतिकूल धारणा रहना स्वाभाविक था, क्योंकि अंग्रेज भारतवासियों के साथ जिस तरह का व्यवहार करते थे उससे उनके मन में शंका उपस्थित होना ही स्वाभाविक था।
1: किंतु थोड़े दिनों में ही वो धारणा दूर हो गई। इंग्लैंड के शिक्षित व उच्च वंशी मध्य श्रेणी व साधारण श्रेणी के अंग्रेजों के साथ घनिष्ठ भाव से परिचित होकर उन्होंने अंग्रेज चरित्र के महत्व का आविष्कार किया। उन्होंने कहा था,
2: अंग्रेज जाति के प्रति मुझसे अधिक घृणा के भाव लेकर और किसी व्यक्ति ने ब्रिटिश भूमि पर पदार्पण नहीं किया है, पर आज यहां कोई व्यक्ति नहीं है जो अंग्रेज जाति को मुझसे अधिक चाहता हो।
1: अंग्रेज चरित्र की क्षत्रियोचित शूरता तथा आत्मसंयम, उसका निर्भीक उद्यम, अध्यवसाय तथा गांभीर्य की स्वामी जी ने बहुत प्रशंसा की है। व्यक्ति की स्वतंत्रता को बरकरार रखते हुए इंग्लैंड की नियमानुवर्तिता, आत्मसम्मान, ज्ञान तथा साथ ही विनीत व्यवहार देखकर वे मुग्ध हुए थे। अंग्रेज सहज ही किसी भाव में प्रवाहित नहीं हो जाते, परंतु जिसे वे एक बार सत्य जान लेते हैं उस पर फिर जीवन पर्यंत डटे भी रहते हैं। इंग्लैंड ने स्वामी जी को अमेरिका से भी अधिक प्रभावित तथा आकृष्ट किया।
0: स्वामी जी जहाँ भी जाते एक आंदोलन पैदा कर देते थे, इसलिए पाश्चात्य दुनिया उन्हें आंधी पैदा करने वाला हिंदू या साइक्लोनिक हिंदू नाम से पुकारता था। उन्होंने लंदन को भी हिला दिया। न्यूयॉर्क की तरह लंदन में भी भीड़ उमड़ने लगी। वे अंग्रेजों को भाव प्रचारक मानते थे। वे किसी भी बात को सारी दुनिया में प्रचार करने की क्षमता रखते थे, ऐसा स्वामी जी मानते थे। इसलिए उन्होंने सोचा, अगर मेरा आध्यात्मिक आदर्श अंग्रेजों को समझ में आ जाए तो वो सारे संसार में फैल जाएगा। ये सोचकर उन्होंने अपनी कार्य प्रणाली की रूपरेखा तैयार की और वेदांत का प्रचार इंग्लैंड में शुरू किया।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: अभी आप सुन रहे थे रेडियो रूपक युग प्रवर्तक विवेकानंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए।
0: रात्रि के 10 बजने वाले हैं
1: और रेडियो आजाद हिंद की प्रसारण सेवा का सफर आज आपके साथ यहीं तक। कल प्रातः 7 बजे आपसे फिर होगी मुलाकात। चलते चलते कल के कार्यक्रम आपको बता दें।
0: प्रातःकालीन प्रसारण सेवा में आप सुनेंगे कार्यक्रम 7 बजे से जीवन सौरभ वास्तविक मूल्य। सुबह 7:10 पर सुनिए कार्यक्रम अक्षय निधि, जिसका पुनः प्रसारण आप 5 बजे शाम को सुनेंगे। 7:20 पर और शाम को पुनः 5:10 पर आनंद लीजिए भक्ति संगीत कार्यक्रम का। वतन का राग पेश किया जाएगा सुबह 8 बजे और शाम को 6 बजे। भारत संघ में हैदराबाद का विलय 76वां वर्ष पर आधारित है। बाल सभा का प्रसारण किया जाएगा सुबह 8:30 पर और पुनः प्रसारण 6:30 पर। नशे का साथ जिंदगी का नाश पर केंद्रित है बाल सभा। टेक गुरु पर सुनिए साइबर क्राइम पर आधारित हमारा कार्यक्रम सुबह 9 बजे और शाम को पुनः प्रसारण 7 बजे। सुबह 9:30 पर और पुनः प्रसारण 7:30 पर सुनिए हमारी सेना हमारा गर्व कार्यक्रम। सुबह 10 बजे और पुनः प्रसारण 8 बजे देश के संस्थान कार्यक्रम आप सुन सकेंगे। आजाद हिंद कार्यक्रम सुनिए सुबह 10:30 और शाम को 8:30 पुरुषोत्तम दास टंडन पर केंद्रित है। परिक्रमा आप सुनेंगे सुबह 11 बजे और रात को 9 बजे सुनेंगे रेडियो रिपोर्ट। 11:30 पर सुबह और पुनः प्रसारण 9:30 पर आप सुनिए कार्यक्रम काव्य गुंजन, रश्मि रथी भाग का 13वां भाग आप सुनेंगे। तो ये थे हमारे कल सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: और अब दीजिए अपनी रेडियो में डॉक्टर रानी रैफर भारती को अनुमति। सुनिए राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम।